सुप्रभात श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 41 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय

0: व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:05 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सुप्रभात, अभिनंदन सभी श्रोताओं का कार्यक्रम वंदना में। प्रातः मंगल बेला और दिन है गुरुवार का, और आइए इस मंगल बेला को समर्पित करें श्रद्धा साबुरी और मानवता का संदेश देने वाले साईं बाबा को। श्रोताओं, जब मन व्याकुल हो, जीवन की राह कठिन लगे, तब भक्ति हमें नई शक्ति और विश्वास देती है। शिरडी के साईं बाबा का स्मरण मन को शांति, शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, और इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए सुनते हैं मुकेश और साथियों के स्वर में वंदना कार्यक्रम का ये पहला भव्य भजन।

श्रोताओं, जीवन क्षणभंगुर है। इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। हमारे संतजन भी हमें बार बार यही संदेश देते हैं कि धन, वैभव और रिश्तों से कहीं अधिक मूल्यवान है हमारे अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और मानवता। और कार्यक्रम का ये अगला भजन भी एक गहन आध्यात्मिक प्रार्थना है जो हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराते हुए ईश्वर के प्रति सद्भावना और सत्कर्मों की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये सुंदर भक्ति रचना।

श्रोताओं, प्रभु श्री राम का स्मरण मन को निर्मल बनाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। आइए राम नाम की महिमा का गुणगान करें और सुने समूह स्वर में ये शब्द।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। और कार्यक्रम वंदना में अब पेश है अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती ये रूहानी नात।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय सवेरे के 6:30 और लीजिए प्रस्तुत है भव्य प्रस्तुति श्री रामचरित मानस कान से। आज का प्रसंग गायक कलाकार हैं अनूप जलोटा और उत्तरा केलकर। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा और उत्तरा केलकर। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय सवेरे के 6:40 मिनट और लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: कुदरत की रचना में मानव एक आदर्श और सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि उसके पास चिंतन शक्ति और विवेक शक्ति है। मानव जीवन ही अन्य सभी प्राणियों के लिए भी अनुकरणीय होता है। मानव जो कुछ सोच रहा है और जैसा सोच रहा है, उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं। मन अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इन तरंगों का प्रभाव स्थूल प्रकृति पर, अन्य मानवों और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। यदि मानव समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो पशु भी अधिक हिंसक हो जाते हैं। मानव ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मानव शांत और सुखी तो मानो पूरा संसार सुखी। यहां तक कि ऐसे में प्रकृति में शांति का साम्राज्य होता है और वो भी सुखदायी बन जाती है। मानव के विचारों का कितना महत्व है, इस सत्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को चलना है कि संतुलित सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही सफल है। मन साध है, सब कुछ सध है। संतुलित जीवन एक अभ्यास है, साधना है। इसके सधते ही जीवन में खुशी, प्रफुल्लता और सच्चे आनंद का प्रादुर्भाव होता है। सहज जीने की कला का आधार भी संतुलन में समाया है। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य आनंद दीक्षा ग्रहण करते ही उग्र तपस्या में लीन हो गया। उसे तन की भी सुध नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि तन सूखकर कांटा हो गया। एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध की दृष्टि आनंद पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुम तो वीणा बहुत अच्छी बजाते हो, तो चलो एक राग तो बजाकर दिखाओ। आनंद बोले, पर ये कैसे बजेगी, इसके तो सभी तार ढीले हैं। बुद्ध बोले, तारों को कस दिया जाए, तब बजा लेना। जब दोबारा वीणा आनंद के हाथों में आई तो उलझन में पड़ गए और बोले, अरे यदि वीणा को अब बजाया गया तो इसके सब तार टूट जाएंगे, क्योंकि इनमें तो बहुत अधिक तनाव है। बुद्ध ने कहा, आओ इसे ठीक करते हैं। तारों में तनाव संतुलित हुआ और वीणा पर धुन झंकृत हो गई। जब वादन समाप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध बोले, ये जीवन भी वीणा की तार की तरह है। जैसे वीणा की तार से धुन निकालने के लिए उसे मध्य में रखा जाता है, इसी प्रकार जीवन की वीणा से आनंद, प्रेम, सुख शांति के स्वर तभी झंकृत होते हैं जब वो मध्य में संतुलित हो। संतुलन का अर्थ बराबर बराबर नहीं, पर उतना जिस अनुपात में जो आवश्यक हो। जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में इसकी उपयोगिता है। हमारे मनोभावों को भी इस परिप्रेक्ष्य में भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन में भावुकता और व्यवहारिकता में संतुलन भी उतना ही वांछनीय है। इस भौतिक युग में वैज्ञानिक यांत्रिकता के प्रभाव से अछूता हमारा मन भी नहीं रहा है, इसलिए भूल करके भी क्षमा मांगना तो दूर, उसका पछतावा भी हम नहीं किया करते। व्यवहारिक बनो, यही आज की मांग है। भावुक होना आज की तारीख में व्यवहारिक नहीं। भावुकता कमजोरी का पर्याय है, जो स्वयं को हास्यास्पद स्थिति तक पहुंचा सकती है, यदि समय पर सचेत रहकर संतुलित सोच के दायरे में रखकर मनन न किया जाए। जीवन की लहरों के उतार चढ़ाव का सही जायजा लेकर आगे बढ़ोगे तो न सपने टूटने का दर्द होगा और न ही अपेक्षाओं के अनुरूप न पाने की तड़प। सब कुछ हमारे हाथ में है।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय सवेरे के 6:45 मिनट और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य धारा, जिसमें आज सुनिएगा अनिदीपम वर्मा से ये काव्य पाठ।
2: माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। मंदिर की महिमा बढ़ाए झंडा जगन्नाथपुरी

जगन्नाथपुरी का मंदिर की महिमा बढ़ाए। झंडा जगन्नाथपुरी का झंडे के नीचे नील चक्र लगा है। सुदर्शन में अष्ट धातु मिश्रण लगा है। झंडे के नीचे नील चक्र लगा है। सुदर्शन में अष्ट धातु मिश्रण लगा है। टेढ़ा ना कभी दिख पाए। पहिया जगन्नाथपुरी का मंदिर की महिमा बढ़ाए। झंडा जगन्नाथपुरी का विपरीत हवा के लहराए। झंडा जगन्नाथपुरी का मंदिर के भीतर तीन लठे की मूरत। बलभद्र सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सूरत। मंदिर के भीतर तीन लठे की मूरत। बलभद्र सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सूरत। मूरत में दिल धड़काए। प्यारा जगन्नाथपुरी का मंदिर की महिमा बढ़ाए। झंडा जगन्नाथपुरी का विपरीत हवा के लहराए। झंडा जगन्नाथपुरी का मंदिर के चार द्वार चारों दिशा में। मंदिर के चार द्वार चारों दिशा में। सिंह अश्व हस्ति व्याघ्र स्वागत दशा में। मेघनाथ पचेरी दीवारे। घेरा जगन्नाथपुरी का मंदिर की महिमा बढ़ाए। झंडा जगन्नाथपुरी का विपरीत हवा।

0: झंडा जगन्नाथ पुरी का, दर्शन को बाई सीढ़ी सिंह द्वार से जाती, हर एक सीढ़ी अपना मतलब दे जाती, दर्शन को बाई सीढ़ी सिंह द्वार से जाती, हर एक सीढ़ी अपना मतलब दे जाती, यमोशिला तीसरी कहलाए, कहना जगन्नाथ पुरी का, मंदिर की महिमा बढ़ाए, झंडा जगन्नाथ पुरी का विपरीत हवा के लहराए, झंडा जगन्नाथ पुरी का दुनिया की सबसे पावन बड़ी रसोई, लक्ष्मी कृपा से खाए भोग हर कोई, दुनिया की सबसे पावन बड़ी रसोई, लक्ष्मी कृपा से खाए भोग हर कोई, कम ना ज्यादा बन पाए, खाना जगन्नाथ पुरी का मंदिर की महिमा बढ़ाए, झंडा जगन्नाथ पुरी का विपरीत हवा के लहराए, झंडा जगन्नाथ पुरी का मंदिर के बाहर महासागर की लहरे, सुरक्षा में खड़े बेदी हनुमत के पहरे, मंदिर के बाहर महासागर की लहरे, सुरक्षा में खड़े बेदी हनुमत के पहरे, हानि ना सिंधु पहुँचाए, किस्सा जगन्नाथ पुरी का मंदिर की महिमा बढ़ाए, झंडा जगन्नाथ पुरी का विपरीत हवा के लहराए, झंडा जगन्नाथ पुरी का मंदिर की महिमा बढ़ाए, झंडा जगन्नाथ पुरी का।
1: मेरी दूसरी कविता है छंदमुक्त, बड़बड़ाहट। हाँ करते हैं ना भरण पोषण, हाँ करते हैं ना भरण पोषण, निर्भर है उनकी कमाई पर, हाँ करते हैं ना भरण पोषण, निर्भर है उनकी कमाई पर, एवज में एहसान भरी चार बातें भी तो सुननी पड़ती हैं, पत्नी है ना पर मानते कहाँ हैं, हाँ करते हैं ना भरण पोषण, निर्भर है उनकी कमाई पर, एवज में एहसान भरी चार बातें भी तो सुननी पड़ती हैं, पत्नी है पर मानते कहाँ हैं, इसलिए तो देहते हैं, शिक्षित होकर भी अनपढ़ कहते हैं, मर्जी कहाँ चलने देते हैं आत्मनिर्भर बन सके, कामकाजी महिलाओं को टक्कर दे सके, अनपढ़ है ना, मर्जी कहाँ चलने देते हैं आत्मनिर्भर बन सके, कामकाजी महिलाओं को टक्कर दे सके, सिसकती हैं डिग्रियां अलमारी में बंद हुनर की गठरियां, सिसकती हैं डिग्रियां अलमारी में बंद हुनर की गठरियां, तरसते हैं नोटों की झलक पाने को, कैसी होती है तनख्वाह जानने को, जिस्म में रम गई है सैंड की जगह मसालों की गंध, जिस्म में रम गई है सैंड की जगह मसालों की गंध, क्योंकि रसोई में ही तो रहती है जिंदगी बंद, अरे मौका कहाँ मिलता है ताजी हवा खाने का, घर गृहस्थी के चक्करवियों से निजात पाने का, सैंड की तरह मसालों की गंध, क्योंकि रसोई में भी तो रहती है जिंदगी बंद, अरे मौका कहाँ मिलता है ताजी हवा खाने का, घर गृहस्थी के चक्रवियों से निजात पाने का, और तो और करेला नीम पर चढ़ा, सब कुछ डिजिटल हो गया, चूल्हे चौके से बाहर निकलने का अवसर ऑनलाइन शॉपिंग ने खो दिया, वो बाजार जाना सूट साड़ियों को छू छू कर कलेजे से लगाना, खुद को बड़े से आईने से हर एंगल से निहारना, दुकानदार को कुछ और डिजाइन की मांग में उलझाना, गाढ़े फीके रंगों को पियाजी के नजरिए से देखना, बराबर से आती चाट की सुगंध, कुल्फी का ठेला हलवाई की कलाकंद, लो लग गया ना खुशियों पर प्रतिबंध, हाय क्या घर बैठे मिल पाएगा ये आनंद, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है पति की जेब से पैसे निकलवाना, यूं कहो शेर के मुंह से निवाला उगलवाना, भूमिका बांधनी पड़ती है, जेब आंकनी पड़ती है, यूं ही नहीं कि गमले में खड़ा करी पत्ता तोड़ा और डाल दिया तड़का दाल भात में, गणित के टेढ़े सवाल से कम नहीं ग्रस्त जीवन, जहां थोड़ी त्रुटि हुई नहीं कि पूरा सवाल गलत, प्यार तत्कार से भरी इस गृहस्थी की गाड़ी को जमा घटाओ के ऊंचे नीचे रास्ते से होते हुए शेष हासिल की संकरी गलियों से बिना लापरवाही किए मंजिल के आखिरी पड़ाव तक सही सलामत पहुंचाना होता है, हम गृहिणी भी क्या इंडोर प्लांट की तरह हैं, पति की स्नेह छाया में रहे तो हरी भरी खुशहाल, अन्यथा डांट फटकार की तेज धूप में हो जाती बेहाल। एक छंदमुक्त कविता और है ढाढ़स। ढाढ़स बहुत बड़ी चीज होती है जिसे तोला नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, विपत्ति में मिले तो अस्त्र शस्त्र से कम नहीं आका जा सकता। अंधकार में दिशा सूचक, झंझावात में अड़िक स्तंभ, डूबते हुए के लिए बेड़ा, मरते हुए के लिए महामृत्युंजय मंत्र, कवच से कम नहीं, आशीष से हटकर नहीं, अद्भुत सम्मोहन शक्ति से भरपूर, हर किसी के नसीब में नहीं। ढाढ़स चुनिंदा है, इसके स्वामी हर किसी के भीतर नहीं, उपहार में मिले तो बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं, उपहार में मिले तो बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं, चुनौतियां स्वीकार की जा सकती हैं, कभी कभी तो स्वतः ही मिल जाता है, मिलता सिर्फ अपनों से ही है, अपनों के लिए, ये दुर्लभ ढाढ़स। एक गीत और प्रस्तुत करने जा रही हूँ मैं। जब कभी तुम आ जाते हो, जाने क्या क्या कह जाते हो, जब कभी तुम आ जाते हो, जाने क्या क्या कह जाते हो, होठो को पंखुड़िया कहते और कभी नैनों को दरिया, होठो को पंखुड़िया कह

इसने ही आंखों में मेरी, इसने ही आंखों में मेरी, पुष्प कमल तुम बन जाते हो जब कभी तुम आ जाते हो, जाने क्या क्या कह जाते हो, पांव के नीचे जन्नत दिखती जब मैं पहनूं झांझरिया, पांव के नीचे जन्नत दिखती।

तो पर तेरी सारी पीड़ा हर जाते हो, जब कभी तुम आ जाते हो जाने क्या क्या कह जाते हो। दीवा स्वप्न टूटे जब मेरा, मैं हंसती खुद पर पगली सी। दीवा स्वप्न टूटे जब मेरा, मैं हंसती खुद पर पगली सी। तुम आंखों से ओझल होते, होती मैं मुरझाई कली सी। दिल

0: माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। मंदिर दिखती जब मैं पहनूं झांझरिया।
1: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे अनिदीपम वर्मा से ये काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
2: सुदृढ़ीकरणाय पञ्चशताधिक सप्तविंशति सहस्राधिकैक लक्ष कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन सेमिकॉन 2.0 इत्येषा योजना अनुमोदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मंत्रिमण्डल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमिकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मंत्रिमण्डलेन 565,000 करोड़ रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढ़ीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः विश्वासं व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यं अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
3: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
2: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त व्यापार सन्धिं निष्पक्षं न्यायसंगतं संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयोः सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचनायोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदातृ सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य 29 दिनांक पर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामी मासस्य 8 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तम् एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपान्त्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम् अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
5: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
4: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज जानकारी का विषय है नवजात शिशुओं की जन्मजात समस्या, कारण और उपचार।
6: हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील प्रधान जी, जो प्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन हैं और SGPGI लखनऊ में न्यूरो मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी जन्मजात न्यूरो की प्रॉब्लम होती है जो बच्चों में देखी गई है?
7: जो कॉमन कंडीशंस हैं उनमें एक तो जैसे आप ADHD आपने सुना होगा, ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होते हैं।
6: अच्छा।
7: तो ये बच्चे किसी एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
6: अच्छा।
7: इनको जनरल भाषा में लोग कहते हैं ये बच्चा बहुत हाइपर है, चीजों को तोड़ता फोड़ता ज्यादा है।
6: हाँ, हाँ।
7: तो एक जगह स्थिर नहीं बैठेगा
6: जी,
7: क्योंकि वो किसी एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो कभी एक चीज पे ध्यान आएगा, दूसरे क्षण किसी दूसरी चीज पे ध्यान आएगा, तीसरे क्षण तीसरी चीज पे ध्यान आएगा। तो ऐसे करके करते देखने में ये लगता है कि ये बहुत हाइपर है, यानी कि वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं बैठ रहा है
6: जी।
7: और जनरली ये बच्चे फिर थोड़ा इनमें तोड़ने फोड़ने की भी आदत होती है, तो जो चीज हाथ में है उसको फेंकना
6: जी,
7: कोई चीज फाड़ देना
6: जी,
7: किसी की बात न मानना।
6: हाँ।
7: तो इस तरह की कभी कभी प्रॉब्लम देखने को आती है, इसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी कि ADHD बोलते हैं। ये भी एक कॉमन कंडीशन है, काफी बच्चों में ये देखा जाता है। तो वो शैतानी जो है उसका संबंध कंसंट्रेशन से होता है।
6: हाँ।
7: एक चीज को अटेंड नहीं कर पाता, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। नॉर्मली बच्चे जैसे किसी एक चीज को कह दिया जाए कि ये करना है तो उसको थोड़ी देर तक करते हैं, फिर उनका मन उछटता है। राइटिंग स्क्रिप्ट हैं, ये भी 1-2 हज़ार साल पुरानी है, इससे पुरानी नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो लाखों सालों से चला रहा है, करोड़ों सालों से चला रहा है। तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट लिखने पढ़ने से डेवलप ही नहीं हुआ, ये तो ब्रेन को एक नई चीज मिली पिछले कुछ सालों में। तो जेनेटिकली अगर हम लोग देखें तो जेनेटिक तौर पे हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इस तरह की चीजें लिख के समझने के लिए। लेकिन ब्रेन ने इसको अडेप्ट किया है अपने को, और बहुत जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर कोई भी लिखी हुई चीज एकदम सडनली हम लोग एक ही बार में ग्रास्प कर लेते हैं उसको। अगर

0: आपको 10वीं या 12वीं में सीखने को मिली तो वो आपके डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बन पाई,
1: नहीं बन पाई,
0: तो फिर आप उसको मन में कहीं ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो सीधे सीधे दिमाग में नहीं जाती। तो इन बच्चों में वो चीज शुरू से ही अच्छा। पढ़ के वो दिमाग में नहीं जाती, लेकिन यदि उसी को आप दिखा के कुछ विजुअल्स दिखा के पढ़े तो वो उनको समझ में आती है, तो उनको सिखाया जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो है कि जिस समय बच्चा पैदा हो रहा होता है उस समय यदि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन न मिले, जो कि बहुत कॉमन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गाँव में खासतौर से डिलीवरीज घरों में होती है, तो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से लेके जब तक वो रोता है तब तक के बीच में ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसकी कॉर्ड कट जाती है और उसका बाद ऑक्सीजन लेने का साधन सिर्फ फेफड़ों से होता है, और पहली बार सांस तब आती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। तो रोने में अगर उसने 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट देर लगा दी तो उतनी देर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और उतनी देर बाकी तो ऑर्गन्स बॉडी के जो है वो सह लेते हैं उतना ऑक्सीजन की कमी को, दिमाग नहीं सह पाता। दिमाग में जब ये कमी हो जाती है उसकी वजह से उसका परमानेंटली हमेशा के लिए ब्रेन डैमेज हो जाता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर बच्चा नहीं रोया 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर तो उसको कृत्रिम रूप से सांस दे दी जाती है जिससे कि दिमाग में डैमेज ना हो, तो इसलिए ये एंकरेज किया जाता है कि हॉस्पिटल डिलीवरीज होना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, एंकरेज करती है सरकार इस बात को, केंद्रीय सरकार की भी बहुत सारी
1: योजनाएं हैं
0: कि हॉस्पिटल डिलीवरीज हो जिससे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है माँ के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी जानकारी दी और अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे नवजात शिशु की जन्मजात समस्या, कारण और उपचार विषय में जानकारी। ये आकाशवाणी का निजी बात केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। समय सवेरे के 7:10 और अब किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज जानकारी का विषय है इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें।
3: किसान भाइयों राम राम, खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। किसान भाइयों, आज से जुलाई माह का दूसरा पखवाड़ा शुरू हो रहा है और हमें इस पखवाड़े में भी बहुत सारे विशेष काम करने हैं। धान की रोपाई का काम इस समय जोर शोर से चल रहा है और हमारे किसान भाई धान की रोपाई में लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों, हमें इस पखवाड़े के रहते रहते अपने धान की रोपाई को निपटाना है। किसान भाई, रोपाई से पहले हमें खेत को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर हरी खाद वाली फसल हमने ले रखी है तो पहले हरी खाद वाली फसल की पलटाई कर दें और उसके बाद अच्छे तरीके से खेत को पलटिंग करके हमें रोपाई करनी है। रोपाई से पूर्व अधिक उपज वाली किस्मों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फेट व 40 किलोग्राम पोटाश तथा सुगंधित किस्मों के लिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फेट व 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। धान की रोपाई से पूर्व 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें, परंतु ध्यान रहे कि फास्फोरस वाले उर्वरक के साथ सल्फेट कभी ना मिलाएं। धान की रोपाई लाइनों में 20x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें तथा प्रत्येक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं। यदि रोपाई में देरी हो जाए तो रोपाई 15x10 सेंटीमीटर पर करें, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर कर लें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। साथ ही 3 से 4 पौधे हम एक स्थान पर लगा सकते हैं ताकि अगर हमारे कुछ पौधे सूखते हैं तो खाली स्थान उसमें ना रहे। और किसान भाइयों, रोपाई के लिए जो हम नर्सरी से पौध उखाड़ते हैं उसमें हमें यह करना है कि पौध उखाड़ने से पहले हमें खेत में पानी भरना है, क्योंकि खेत में पानी भरने से जड़ें ढीली हो जाती हैं और जड़ें हमारी टूटती नहीं हैं, आराम से हमारी पौध उखड़ जाती है। और पौध की रोपाई करने से पहले किसान भाइयों, हमें अच्छे तरीके से जड़ों की मिट्टी को साफ करना है, और रोपाई से पहले अच्छा रहेगा कि हमारे किसान भाई इसको शोधित कर लें। इसके अलावा किसान भाइयों, खरीफ में उड़द मूंग की खेती भी हमें करनी है और उड़द मूंग की बुआई करनी है। उड़द मूंग की बुआई के लिए किसान भाइयों, प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। बुआई से पूर्व बीज को राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित कर लें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फेट तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। उड़द और मूंग की बुआई हमें लाइनों में करनी है और उड़द में लाइनों की दूरी रखनी है 30x10 सेंटीमीटर और मूंग में रखनी है 45x10 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, जो उड़द और मूंग की अच्छी प्रजातियां हैं वो हम आपको बता दें। उड़द की अच्छी प्रजातियां हैं पंत उड़द 30, शेखर एक, शेखर दो, आजाद एक, पंत उड़द 35 और टी 9। मूंग की अच्छी प्रजातियां हैं पंत मूंग एक, पंत मूंग दो, नरेंद्र मूंग एक, पीडीएम 54 और पीडीएम 11। पूसा विशाल, मालवीय जागृति, मालवीय जनप्रिया ये अच्छी प्रजातियां हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अरहर की फसल में बुआई के 20 से 30 दिन बाद निकाय गुड़ाई करके खरपतवार तथा साथ ही सघन पौधों को निकाल देना चाहिए। बाजरे की बुआई किसान भाइयों हम पूरे माह कर सकते हैं और बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बाजरे की ICMV 155, WCC 75, संकुल राज 171 और पूसा 322 ये अच्छी प्रजातियां हैं। मूंगफली की बुआई भी किसान भाइयों हम इस माह कर सकते हैं, इस पखवाड़े आप पूरी कर लें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फेट तथा 100 किलोग्राम जिप्सम कूड़ों में बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर डालने चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों सब्जियों की अगर हम बात करें तो बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई का समय भी चल रहा है, तो इसकी रोपाई भी हमें करनी है। साथ ही जाड़े के टमाटर की फसल के लिए बीज की बुआई हमें पौधशाला में करनी है। और किसान भाइयों अगर हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने की फसल में हमें मिट्टी चढ़ाने का काम करना है, और अगर आपने मिट्टी चढ़ाने का काम गन्ने की फसल में नहीं किया है तो मिट्टी चढ़ाने का काम आप निपटा लें। और अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो पशुओं में गलघोंटू तथा BQ का टीका लगवाएं, पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाएं, पशुओं को बरसात से बचाव हेतु पूरा प्रबंध करें, फर्श तथा बिछावन को सूखा रखें। तो इस तरीके से किसान भाइयों हमें इस पखवाड़े में ये सारे काम करने हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानकारी, विषय था इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:15 और आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। श्रोताओं जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे आज सवेरे 9:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे ललितपुर और मथुरा जिले की हलचलें। इसके अलावा आज शाम 4 बजे सुनिएगा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। प्रोग्राम कंट्री वाइड इनसाइट का प्रसारण समय रहेगा आज रात्रि 9:30 पर, और ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। और अब से कुछ ही देर में सुनिएगा इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सूरज के साथ साथ लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है में। आज सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे समरपाल सिंह की इकाई रागनिया, और दिन में 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा मीनाबिस्ट के गाए कुमाऊनी लोकगीतों का। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा पूर्वाहन 11:30 पर, और दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें क्रम रहेगा आधी आबादी से भूली बिसरी यादें और साथ ही साथ गीत संगीत भी।

0: मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5 बजे जानकारी रहेगी। शिशु सुरक्षा को मजबूत करती योजनाएं, मिशन इंद्रधनुष अभियान, किलकारी मोबाइल ऐप और मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MSP कार्ड के संदर्भ में। शाम 5:15 पर युववाणी में आज का आकर्षण रहेगा बूझो तो जाने। कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, ताना बाना, बूस्टर और कहानी के उस पार में कहानी उसने कहा था का एपिसोड 4। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे चर्चा, जिसका विषय होगा पशुओं के लिए संतुलित आहार, सोलर ट्रैप कीट नियंत्रण और भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी गन्ना बंधाई का महत्व विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर संदीप चौधरी, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र शामली से, और इनसे बातचीत करेंगे अंकित कुमार। डिजिटल दौर में पुस्तकालय का बदलता स्वरूप, गीता शर्मा की ये पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर। नुसरत अली और साथियों की गई कव्वालियां पेश की जाएंगी सुगम संगीत कार्यक्रम में आज शाम 7:32 पर। और आज रात्रि 10 बजे सुनना ना भूलें चिरंजीत का लिखा नाटक एक और सावित्री, निर्देशक सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय, प्रतिभागी कलाकार रहेंगे नीरज शर्मा, श्याम अरोड़ा, मंजू सैनी, सुरेंद्र सेठी, अर्चना प्रतिभा शर्मा और वीना होरा। और श्रोताओं, आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं आज सवेरे 8:45 पर कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। इसके बाद सुबह 10 बजे कार्यक्रम गीत तुम्हारे और 11 बजे आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनवाया जाएगा आज दिन में 12:05 पर। साथ ही 12:30 पर रहेगा प्रोग्राम मिड डे मेलोडी। इसके अलावा अपराह्न 2:30 पर आप सुनेंगे आज कार्यक्रम एक ही संगीतकार। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:18 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।
1: जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू, प्रदेश के लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वर्णा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को कल मंजूरी दे दी। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,958 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
4: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए, जो बहुत पुराने शहर है, उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल 7 महत्वपूर्ण फैसलों को स्वीकृति दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
4: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
3: केंद्रीय कैबिनेट ने के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
5: कैबिनेट ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी स्वीकृति दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भव्य काशी, सुगम काशी को समर्पित ये परियोजनाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुगम बनाएंगी, यातायात को नई गति देंगी और पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही ये कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। कल देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
6: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, ये शुल्क 0 हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को, वो बढ़ेगा।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोजगार और उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को सम्मानित किया। समारोह में केंद्र सरकार के 12 वर्षों में प्रदेश में हुए कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका कौशलम का विमोचन भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
7: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक कल संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों और विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। समिति ने प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले।
8: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमिटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले

0: पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में बिजनौर जिले के 16 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एजेंसी साचीज के 3 सदस्यीय विशेष दल ने बिजनौर के 20 अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया था। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 16 अस्पतालों में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पाया गया। इनमें से 6 अस्पतालों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं और उनके भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं। बाकी 10 अस्पतालों को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज पंच सम्मेलन का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। साथ ही इस सम्मेलन के जरिए VBG रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों और उद्देश्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की समझ को भी मजबूत किया जाएगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कहीं कहीं बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, गर्मी और उमस भरी स्थितियां बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू। प्रदेश के लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान, कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सुबह के 7:31 हो रहे हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

श्रोताओं, अगर हर नई सुबह आप अपने साथ एक नया अवसर और एक नई ऊर्जा लेकर आती है, साथ ही एक नई उम्मीद भी लेकर आती है, और अगर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ हो तो पूरा दिन सुखद और सफल बन जाता है। और वैसे भी श्रोताओं, हर नई सुबह एक नया अवसर हमें देती है कि हम कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज कुछ नया और बेहतर करें। इसीलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और जीवन को खूबसूरत बनाइए। और श्रोताओं, इसी सोच के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सीएससी डे के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, एक ऐसा केंद्र जहाँ ग्रामीण नागरिकों को सरकारी और निजी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से सीएससी की शुरुआत की और आज हम मना रहे हैं साझा सेवा केंद्र दिवस यानी कॉमन सर्विस सेंटर डे। भारत सरकार ने साल 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत इसकी शुरुआत की। बाद में डिजिटल इंडिया अभियान के साथ इसे पूरे देश में और अधिक मजबूत बनाया गया। और श्रोताओं, इसकी शुरुआत का खास श्रेय भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैत्री को जाता है। सीएससी दिवस उन लाखों ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों के सम्मान में मनाया जाता है जो गांव-गांव तक सरकारी और डिजिटल सेवाएं पहुंचाते हैं। आज का ये दिन सशक्तिकरण और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य गांव और शहरों के बीच डिजिटल दूरी कम करना है, सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाना है, लोगों का समय और पैसा बचाना है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना, साथ ही डिजिटल इंडिया को मजबूती देना है, जिसके माध्यम से श्रोताओं, ग्रामीणों को बहुत सी सेवाएं मिलती हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, बिजली और पानी का बिल जमा करना, बैंकिंग और पैसे निकालने की सुविधा, बीमा योजनाएं, पेंशन सेवाएं, पासपोर्ट आवेदन, किसान पंजीकरण, ऑनलाइन सरकारी फॉर्म, रेलवे और हवाई टिकट बुकिंग, डिजिटल भुगतान और टेलीमेडिसिन जैसी अनेक सहायता, जिसके द्वारा ग्रामीणों को दूर नहीं जाना पड़ता और समय और पैसे दोनों की बचत होती है। डिजिटल शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है। अपने ही गांव के सीएससी केंद्र पर जाकर कुछ ही मिनटों में सरल और सहज तरीके से सरकारी सेवाएं आपके गांव, आपके दरवाजे तक मिल जाती हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में है अभी बहुत कुछ और आइए अब आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, अक्सर हम सुनते हैं कि साफ सफाई रखना अच्छी आदत है और स्वस्थ रहने के लिए ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन हर चीज की अति श्रोताओं कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाती है ना? जी हाँ श्रोताओं, गर्मी को देखते हुए या आजकल कई लोग दिन में 3-4 बार साबुन घिस घिस कर नहाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि हमेशा ऐसा करना सही नहीं होता। साफ सफाई रखना या रहना अच्छी हैबिट है, लेकिन जरूरत से ज्यादा साफ सफाई भी कभी कभी परेशानी का कारण बन सकती है। और श्रोताओं, कभी कभी तो कुछ लोग ओसीडी

यानी ऑब्सेसिव कॉम्पलेसिव डिसऑर्डर, जो कि एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति है, उसका भी शिकार हो जाते हैं। और श्रोताओं, हमारी स्किन यानी त्वचा पर प्राकृतिक तेल और अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमें कई बार कई प्रकार के संक्रमण से भी बचाते हैं। बार बार साबुन से नहाने और गर्म पानी से नहाने पर ये प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर हो सकती है, जिसके कारण त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, खुजली और जलन की समस्या या एलर्जी की समस्या हो जाती है, त्वचा में दरारें पड़ जाती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और त्वचा के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए श्रोताओं, सामान्य मौसम में एक बार नहाना सफिशेंट होता है। हाँ, अगर ज्यादा गर्मी है तो सुबह शाम दो बार भी हल्के बॉडी वॉश या हल्के साबुन से नहा सकते हैं। और श्रोताओं, बहुत गर्म पानी से नहाने से भी परहेज करें। नहाने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, ताकि त्वचा में नमी और स्किन तरोताजा बनी रहे, क्योंकि श्रोताओं, स्वच्छता जरूरी है लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। और श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसे सितारे होते हैं जिनकी चमक समय के साथ और भी बढ़ जाती है। आज के फिल्मी सफर में बात करेंगे एक ऐसी ही लोकप्रिय अभिनेत्री कैटरीना कैफ की, जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई। श्रोताओं, कैटरीना कैफ का जन्म आज यानी 16 जुलाई 1983 को ब्रिटिश हांगकांग में हुआ था। कैटरीना कैफ भारतीय सिनेमा में अपने शानदार डांस और सफल एक्शन फिल्मों के लिए भी जानी जाती हैं। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने हवाई में पहला ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता और वहीं से मॉडलिंग की शुरुआत की। एक फैशन शो के दौरान निर्देशक कैजात गुस्ताक की नज़र उन पर पड़ी और साल 2003 में पहली फिल्म बूम से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन कैटरीना आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने हिंदी भाषा सीखी, अभिनय में लगातार मेहनत की और खुद को बेहतर बनाया। साल 2005 में सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद सफलता का ऐसा सफर शुरू हुआ जो लगातार आगे बढ़ता गया और उन्होंने कई एक से भी बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की, जिसमें नमस्ते लंदन, पार्टनर, वेलकम, सिंग इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर और धूम 3, साथ ही भारत जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। श्रोताओं, कैटरीना कैफ को फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए स्टार्डस अवार्ड ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फीमेल मिला। फिल्म न्यूयॉर्क के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और फिल्म जीरो में जिसने अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सम्मान मिला। अपने करियर में उन्होंने स्क्रीन अवार्ड, जिसने अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्टार्टस सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए। श्रोताओं, कैटरीना केवल अभिनय ही नहीं बल्कि अपने शानदार डांस के लिए भी जानी जाती हैं। शीला की जवानी, चिकनी चमेली, कमली और काला चश्मा जैसे गीत आज भी दर्शकों की पसंद बने हुए हैं। उनकी फिटनेस, सादगी और अभिनय शैली आज के यूथ को मोटिवेट करती है और आज उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए अब आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म राजनीति का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आइए अब जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में क्या कुछ खास है आज तिथि विशेष में। 16 जुलाई 1856 को समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। इससे पहले हिंदू विधवाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था। इस दिन देश के विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। वहीं 16 जुलाई 1969 अमेरिका के फ्लोरिडा के कनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 अंतरिक्षयान चंद्रमा की यात्रा के लिए रवाना हुआ था। इसी मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। श्रोताओं, 16 जुलाई 1661 यूरोप में पहला आधुनिक बैंक नोट स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बैंक द्वारा जारी किया गया था। उस समय स्वीडन में तांबे के बहुत भारी सिक्के चला करते थे। कुछ सिक्कों का वजन कई किलो तक होता था, जिन्हें साथ लेकर चलना बेहद कठिन था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बैंक ने कागजी नोट जारी किए। वहीं 16 जुलाई वर्ष 1909 में स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का जन्म हरियाणा के कालका में हुआ था। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह आंदोलन में वे कई बार जेल गईं। उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों के जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। वे 1992 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से अलंकृत हुई। श्रोताओं, भारतीय हॉकी पूर्व कप्तान धनराज पिल्ली का जन्म आज ही के दिन यानी 16 जुलाई 1968 को महाराष्ट्र में हुआ था। धनराज पिल्ले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए 4 ओलंपिक, 4 विश्व कप, 4 चैंपियंस ट्रॉफी और 4 एशियाई खेलों में हिस्सा लिया। वर्तमान में धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर हैं। धनराज पिल्ले को भारत का सबसे बड़ा द राजीव गांधी अवार्ड साल 2000 में दिया गया। और श्रोताओं, भारतीय रंगमंच फिल्म और टेलीविजन की दमदार अभिनेत्री में से एक सुरेखा सीकरी का निधन श्रोताओं 16 जुलाई

साल 2021 को हुआ। सुरेखा सीकरी ने हिंदी रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन में 4 दशकों से अधिक समय तक उल्लेखनीय योगदान दिया। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री प्राप्त किया। 1988 में तमस और साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए आपको फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला। लोकप्रिय धारावाहिक बालिका वधू में दादी सा यानी कल्याणी देवी की भूमिका में उन्हें घर घर में प्रसिद्ध बना दिया। हर भूमिका को अपने सादगी और गंभीरता और प्रभावशाली अभिनय से आपने अमर बना दिया। और श्रोताओं, आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सत्रह जुलाई यानी कि कल बिजनौर में आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वर्तमान कॉलेज में विकास योजनाओं का लोकार्पण और जनसभा को करेंगे संबोधित। मोटे अनाज के निर्यात से बढ़ेगी किसानों की आय। बिजनौर में आत्म योजना को मिली मंजूरी। 1848 किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण। और अमर उजाला लिखता है, निर्वाचन आयोग ने पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को किया जाएगा। घर घर जाकर 29 जुलाई तक जानकारी लेने का काम अब 8 अगस्त तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। वहीं सरकार ने देश के विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी मिली। अश्रोताओं, ब्रिटेन में 16 से 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की योजना बनाई गई है। ये कदम किशोरों को ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा लत लगाने वाली एक्टिविटीज से बचाने के लिए उठाया गया है, जो कि साल 2027 तक लागू हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पीएम मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम के लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सुश्रुत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सौश्रुत्रम 2026 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद की समग्र जीवन दृष्टि मानवता के लिए एक वरदान है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्राचीन ज्ञान समय वर्तमान और समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। वहीं भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ लागू। देश के कई शहरों से यूके को निर्यात की पहली खेप रवाना की गई। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में चलते चलते ये गीत आप सभी के लिए।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अंबिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
5: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
4: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
6: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहाँ तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: उड़ीसा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देव विदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: बज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है

0: लाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन एंड मटेरियल, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएम की ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: जनाब वैष्णो ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आजादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आजादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनजर महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आजादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अलाक्वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिद अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जगन्नाथ चक्कानेन लीला चलवारे।
4: रांची के दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासी बारी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने CCTV निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
3: तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर

0: से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाताबता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम और शानदार दर्जनों अखाड़ों भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निजाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाजत होगी ताकि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90 मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले 1 मैच में इंग्लैंड को 6 से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी 1 मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज़ हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने بھارت اور برطانیہ کے درمیان ہوئے جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے کی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے اور وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ یہ بھارت برطانیہ شراکت داری میں ایک اہم لمحہ ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دو نو منتخب ارکان منصور علی خان اور رجنیش کمار اگروال کو راجیہ سبھا کی رکنیت کا حلف دلایا۔ اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ سرکار نے 62,000 کروڑ روپے کی لاگت والی موبائل مینوفیکچرنگ اسکیم کو منظوری دی ہے۔ اس خبر کو کئی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں وارانسی کے لیے 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے سطح زمین سے اوپر دو سڑک پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین کے ٹکٹ بک کرنے کے عمل کو اور زیادہ سہل اور سازگار بنانے کی خاطر IRCTC ویب سائٹ کے نئے بیٹا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ بھگوان جگنناتھ اور ان کے دو بھائی بہنوں کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا آج اڈیشہ کے شہر پوری میں شروع ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے مقصد سے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ فٹ بال میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3-1 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 366.3۔
3: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر۔ سمے صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں سدا بہار نغموں کا کارکرم گولڈن ہٹس۔ स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में।

कार्यक्रम का ये पहला गीत श्रोताओ आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम था जहरीला इंसान। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था आरटी परमन का।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। और कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म है सागर, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है आरटी परमन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में अगली पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना है राज महेंद्र अली खान की और संगीत है मदन मोहन का। फिल्म का नाम है मेरा साया।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म है मेरे जीवन साथी, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है और संगीत है आर टी बर्मन का।

और श्रोताओ लीजिए, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है सदमा, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है इलाया राजा का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 9:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से।
1: एक लंबा नेतृत्व का अनुभव है और आप व्यवसाय के
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
3: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
4: ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और समृद्ध जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को अनावश्यक रूप से दूसरे जिलों में रेफर करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि जिन बीमारियों का इलाज जिले में संभव हो उनके लिए मरीजों को बाहर भेजना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की व्यवस्था का भी जायजा लिया और निर्देश दिए कि सभी मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। यदि कोई चिकित्सक बाहर की दवा लिखता है या बिना ठोस कारण मरीज को रेफर करता है तो संबंधित चिकित्सक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्रसव कक्ष SNICU औषधि भंडार और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। ड्यूटी से अनुपस्थित मिले चिकित्सकों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा गया। साथ ही अस्पताल परिसर के सामने 2 चरणों में पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए। बरसात के मौसम को देखते हुए ललितपुर में संचालित रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान शुरू होने से पहले जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता व अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को माइक्रो प्लान के अनुसार 100% कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और जल भराव रोकने पर जोर दिया। जिला मलेरिया अधिकारी अनिल क्रिस्टोफर मैसी ने बताया कि हाई रिस्कों में लार्वानाशक दवा का छिड़काव, गड्ढों को भरने, रुके पानी की निकासी और साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 35 करोड़ वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत ललितपुर में भी मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले में एक ही दिन में करीब 94 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। गोविंद सागर बांध की तलहटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश, अपर आयुक्त प्रियंका, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। अभियान के दौरान सभी को एक पेड़ मां के नाम लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी और अपर आयुक्त ने कल्याणपुरा में विकसित मियां बाकी वन का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया। अधिकारियों ने इस महाअभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में खेत तालाब योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत किसानों को खेत तालाब निर्माण पर 50% यानी 52,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 में जिले के 180 खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खेत तालाब जल संरक्षण के साथ साथ मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और अन्य जलीय गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। ललितपुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की देवी आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम प्रधानों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए और गांव-गांव में सर्पदंश डूबने आकाशीय बिजली तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया, राहत चौपाल, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव की जानकारी दी जा रही है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी समीक्षा की गई, जिसमें 2019-20 से और 2025-26 तक 9098 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई।
3: ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
5: कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि अंतरित की गई है तथा शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सजीव संबोधन को सुना गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5,00,000 तक का कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े लगभग 12,00,000 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी उठा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र को 1200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। बाइट प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा के गांव सिंगापट्टी में मां ओणम देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही जहांगीरपुर के महालक्ष्मी मंदिर में करीब 50,00,000 रुपए, ग्राम माल के मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि में करीब 50,00,000 रुपए, वृंदावन के शोध संस्थान के भवन जीर्णोद्धार के 1,22,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा, देश और प्रदेश की सरकारें विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3,000 से ज्यादा मंदिरों में विकास कार्य कराया गया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के सभागार जनरल गंज मथुरा में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बलदेव पूरन प्रकाश द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाखों रेहड़ी पटरी एवं पथ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई है। योजना के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन, ऋण स्वीकृति, वितरण, क्रेडिट कार्ड वितरण की सुविधाएं प्रदान की गईं। परियोजना अधिकारी डूडा राजकुमार चौधरी ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, डिजिटल लेन देन पर कैशलेस, समय पर ऋण अदायगी पर ब्याज अनुदान तथा क्रमश अधि राशि के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से हजारों परिवारों की आजीविका सुदृढ़ हुई है तथा वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याण जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप शहरी गरीबी स्ट्रीट वेंडरों एवं लघु उद्यमियों को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आज देश में वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार संवर्धन का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय सुबह के 9:25 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज आप सुनिएगा समरपाल सिंह की गाई रागनियां।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं समरपाल सिंह की गाई रागनिया।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं समरपाल सिंह की गाई रागनिया।

0: लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज आपने सुनी समरपाल सिंह की गाई रागनिया। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं के अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। रिश्ते मुलाकातों से नहीं एहसासों से बनते हैं, और शब्द जब स्नेह बनकर कागज पर उतर जाते हैं तो दूर बैठे हमारे अपने भी हमारे दिल के बेहद करीब नजर आते हैं। और श्रोताओं, इन्हीं एहसासों और मुलाकातों की महक के साथ आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है हर फरमाइश आपकी, हर गीत आपके नाम, यानी कार्यक्रम गीत तुम्हारे, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपके रेडियो साथी श्वेता भट्ट और हमारे साथ हैं आप सभी के फेवरेट होस्ट
1: मनोज वर्मा। तो सभी श्रोताओं को मेरा यानी मनोज वर्मा और मेरे साथ में मेरी साथी श्वेता को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार मनोज जी, आपको भी और हमारे सभी श्रोताओं को भी। तो श्रोताओं के साथ साथ मनोज जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, और अपने श्रोताओं को बता देते हैं कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 9457078288। अपने नाम, पते और पसंद के गीत के साथ कीजिएगा हमें मैसेज और जुड़िएगा हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। और अब कार्यक्रम का ये पहला गीत सभी श्रोताओं के नाम लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सभी ने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था दर्द, शब्द रचना थी नक्श लालपुरी की और संगीत था खयाम का।
1: और श्वेता, इतना खूबसूरत गीत हमारे सभी श्रोताओं ने पसंद किया कि भाई जब भी इस गीत को आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया जाता है तो बहुत ही सुनने में मधुर लगता है और ऐसा लगता है कि कानों को सुकून दे रहा है। और श्वेता, हमारे श्रोता इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके SMS को पढ़ें।
0: बिल्कुल, SMS हमें भेजा है कार्यक्रम में से गीत के लिए भेजा था लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झाड़ावार राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कहाना श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रटलाई जिला राजस्थान से इसी गीत को सुनना चाहा था। मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फुंदीबाई बागरी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली थी कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता धीरज कुमार गुप्ता पंकज बजाज प्रिंस कुमार प्रशांत गुप्ता कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। और ये फरमाइश हमें मिली है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलंकर रतनमाला कुमकुम सुरलंकर की। जिला पांडर का कवड़ा से अनिल बुरांडे उषा बुरांडे अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे ने भी इसी गीत के लिए हमें मैसेज के माध्यम से फरमाइश की थी। और ये एक और मैसेज हमें मिला है उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशु ताशु अर्णवानंद सत्यमानंद का पश्चिम बंगाल से।
1: ग्राम गधारोना से मदन गिरी बिमला गिरी बलराम गिरी मधुगिरी सोनिया गिरी गोविंद गिरी सिमरन गिरी वंशिका गिरी रमन गिरी और दिव्या गिरी के साथ इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप सब श्रोता भी हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आसमा आसना है जी और मोहम्मद कैफ अंसारी के अलावा आप भी सुनना चाहते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार मित्रगण और उनके परिवार जन भी हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे नियमित श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। श्वेता, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव दिव्यंदु भूषण संस्कृति पौरश और रामगढ़ कैंट से इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं। ग्राम जुझेला थाना शिवाला कलां बिजनौर से राशिद अंसारी परवीन जहां निशात आयशा साइना महविश मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर के अलावा हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज रहता है हमेशा हमारे श्रोताओं का। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश गौतम डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवार नाजमा बेगम नाज और उनकी भाभी भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं सरिता गौतम के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं साहब। अब्दुल सत्तार अब्बासी मुगलपुरा बागपत से और इसके अलावा हमारे नियमित श्रोता बिल्कुल अभी जुड़े हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के अलावा एक मैसेज और हम लेना चाह रहे हैं। ये मैसेज भाई हमने ओपन तो कर लिया लेकिन क्या क्या करें कि हमारे श्रोता जो है ना इतना प्रेम करते हैं आकाशवाणी नजीब आवाज से श्वेता की दो दो बार ट्रिपल ट्रिपल बार अलग
0: मैसेज भेजते
1: रहते हैं। चलिए खैर, प्रेम आपका और हमारे सर माथे पर है ये आपका प्रेम। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद दतरंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा के अलावा हमारे श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर डॉक्टर इशिता सहानी बरकाकाना से नाजमी तबस्सुम अफजल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिम के अलावा इस गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी रियाज मोहम्मद कैफ अनवर लुबना और आलिया अंसारी के अलावा ये मैसेज मुझे मिल रहा है जी मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी हैना कौसर का मोहल्ला हलवाइयां शेरकुट बिजनौर से और एक मैसेज और लेते हैं उसके बाद आपको एक संदेश सुनवाएंगे फिर आगे की बात करेंगे। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: और गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। एक बार हम अपने श्रोताओं को एक नंबर फिर याद दिला दें, 94-570-78-288 ये हमारा नंबर है। और मैं देख रहा हूँ श्वेता कि आपके हाथ में कुछ खत हैं।
0: जी, ये पढ़ेंगे हम अगली फरमाइश के लिए। और अगली फरमाइश जो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं वो है कुमार सानू और साधना सरगम की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है दामिनी और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, आराफत चौधरी, आबिद चौधरी, कादिर चौधरी और रिहाना चौधरी। सुंदर खेड़ा राजमाता नगर बुलराड़ा महाराष्ट्र से आप हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा, आकाश कुमार और उनके परिवार के सभी सदस्य। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे स्थानीय श्रोता मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से रूपा वर्मा, मंजू वर्मा, तनु वर्मा, प्रभा वर्मा, स्वाति, आराध्या, विशाल, अगम्य और वैष्णवी चौक बाजार नजीबाबाद से फरमाइश कर रहे हैं इसे गीत के लिए राजेंद्र कुमार, तुषार कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सौरभ कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये एक और पत्र हमें मिला है ठाकुर द्वारा शिव मंदिर के पास से। लिखने वाले हैं अमित धीमान, मुकेश धीमान, अमिता, प्रिंसी, खुशबू, आनंद किशोर धीमान, भागवत प्रसाद, जयप्रकाश मिस्त्री, आरव, अव्या, अक्षत, अक्षिता और रेम्स कृष्णन। और मनोज जी, इसी गीत के लिए हमें पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारीमपुर बक्सर से आप हैं आसमा खातून, राज SD अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेहराज अंसारी। बीड़ शहर से फरमाइश की है प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पगारिया के साथ रामनिवास अग्रवाल ने। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची, अनुश्री, धनश्री, सुरजी, प्राची और एकलव्य ने पाठर कावड़ा महाराष्ट्र से। और आप हैं अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। कटरा चांद खां धैर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। पंजाब से फरमाइश की है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये पत्र हमें भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव श्राइनान और निवान शर्मा ने। फजिलिका पंजाब से ही एक और पत्र है भूषण खेड़ा, विशु, लाडी, विशाल, शालिनी और टिवांशी खेड़ा का।
1: और इसके बाद मिश्रता कुछ SMS हम ले रहे हैं
0: जी।
1: कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील, हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और देखिए अंजलि भी इनके साथ जुड़ी हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। कौन है भाई? हाँ, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमारे नियमित श्रोता हैं और हमेशा एक हमसे रुकते नहीं हैं हम ये बात कहने के लिए कि बहुत ही इनका खूबसूरत मैसेज होता है। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ हमारे नियमित श्रोता हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद वारसी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल के अलावा ये मैसेज मैं ले रहा हूँ जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए ये मैसेज मैं ले रहा हूँ भाई ले तो रहे थे, हम चाह रहे थे कि ले लें, मगर वो फिर हमें छोड़ने पड़े क्योंकि वो दो तीन नंबर से हमारे श्रोता लगातार भेज रहे हैं। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर बदलापुर मुंबई से, प्रणीता गवाणकर सिद्धांत, अर्जुन गवाणकर टुक टुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी और इनका पूरा परिवार सुनवा रहे हैं आपको आप ही की पसंद का ये गीत दामिनी फिल्म का, जिसको लिया गया है, आवाजें हैं कुमार सानू के साथ साधना सरगम की। तो सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और कार्यक्रम की अगली पेशकश है श्रोताओं यशिका सिक्का की आवाज़ में फिल्म अमर सिंह चमकीला से, और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है AR रहमान का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायर, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता सिंघड़कर, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और ये फरमाइश हमें मिली है रामगंज खांडवा जिला मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू जराटे और पेंटर बाबू। मुरादाबाद से फरमाइश की है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, उनके परिवार के सभी सदस्य, उदयनगर से मोहित रतन पारखी, स्वीटी और मनस्वी रतन पारखी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। गांधीबाग अकोला से फरमाइश की है रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर, कृतिका, सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार और नसीम बेगम, सहारनपुर से राधा नामदेव, अभिषेक रामदेव और अर्पणा नामदेव ने। और एक और फरमाइश हमें मिली है उज्जैन MP से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन और दिलीप सिंह पवार की। आगरा से फरमाइश की है इस गीत के लिए सरिता चौरसिया, सुमित, अबीर और सुजाता ने। श्रीगंगानगर से बजलंग राल शर्मा, जसपाल सिंह सिद्धू, जगमोहन सिंह अरनेजा और नरेश कुमार शर्मा। और ये पत्र है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार ने। और पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया, शुएब खान, नवेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। और ये फरमाइश है मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पनीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, एकता भारती, रचना भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और शारांस।
4: और इसी गीत के लिए श्रोता, हमारे श्रोता और भी जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। 10:26 पर यह मैसेज हमें मिला है बिल्कुल अभी। हमारे नियमित श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर के अलावा ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। भाई देखिए, खत भी हम पढ़ते ही हैं, चलिए सर हो जाता है कई बार। नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा शेख, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम के अलावा इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं गणेशपुर गंजुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से M फारूक शेख, शेख समा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। भाई कहाँ से हैं? पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर के श्रोता हैं हमारे M मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद उजैफ। और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली के हमारे नियमित श्रोता हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये मैसेज है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए ये भी हैं और ये मैसेज हमने खोला लेकिन ये हम रीड कर चुके हैं। इसके अलावा ये मैसेज पूरा का पूरा जैसे टेक्स्ट होता है ना वो लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, एक ही लाइन में, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन हसन सिद्दीकी मोहम्मद आलम सिद्दीकी मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी सलीम सिद्दीकी फहीम सिद्दीकी यासिन अंसारी और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा ये मैसेज तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख भी इनके साथ ही जुड़े हुए हैं। जिला नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं शंकर लाल जायसवाल गणेश लाल शुभम प्रसाद अर्णव दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान इनका पता है ये बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार और ये मैसेज इन्हीं के साथ है। रामदेवरा से दिनेश चौहान और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं नंद किशोर घटेश संगीता साक्षी जयश्री अंजलि और बाबा साहेब करवा राम निवास अग्रवाल धनंजय टवलू और पीबी कुलथे कहाँ से हैं बीड शहर महाराष्ट्र के श्रोता हैं हमारे। और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश के श्रोता हैं जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ के अलावा इनका पूरा परिवार। और ये मैसेज करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शुएब खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी भी जुड़े हुए हैं इनके साथ में। क्या करें भाई खत्म में भी हमारे श्रोताओं के नाम आ जाते हैं हमारे, जब हम फ्लो हमारे पास होता है जब एक बार निकल जाता है तो फिर वो निकल जाता है ना। चलिए खैर और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीम पलक लुबना और यश मंसूरी। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोता हूँ, आपने सुना फिल्म अमर सिंह चमकीला का ये गीत, जिसे गाया था यशिका सिक्का ने, गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था AR रहमान का। और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म है खिलाड़ी। गीत लिखा है अनवर सागर ने और संगीत है जतिन ललित का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ये सभी श्रोता अनारकली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सच्चा पाठक, राहुल नकरी, अमरावती से सिद्धार्थ गुरानी, अर्चना गुरानी, हिमभूषण, प्रणय प्रसिद्धि और महेश गुरानी, मजनू का टीला से कमल बालूजा, सागर बालूजा, मधु सागर, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। और इसी गीत को सुना चाहते हैं जतुका किशनपुर से, आलम दिल का, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, आलम शेख और चांदनी नाज, पाकुड़ झारखंड से श्वेता भगत, केशु भगत और उनके परिवार के सभी सदस्य, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, वीरी नाचानी और मिथिला नाचानी, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के सभी सदस्य, भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली से हमारे साथ जुड़े हैं इस गीत के लिए आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान भूमिका और कशिश चौहान, सहारनपुर से ये पत्र हमें भेजा है इसी गीत के लिए चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आंसू सोनाली, प्रतीक और कृषि, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक और इनके परिवार के सभी सदस्य, दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य, ये पत्र हमें मिला है वंदना नगर इंदौर से संतोष रेखा रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। और इसी गीत को सुना चाहा है करणवीर हाउस भटिंडा से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, विपिंदर दिविंदर, सिमरन, एकम दमन और अभिजीत। पट्टी मेहर बड़ौत से ये पत्र भेजा है रामानंद कश्यप, बिमलेश कश्यप, आर.एन. कश्यप, पालीराम भगत, आयुष, आदित्य, राजेश और इनके मम्मी पापा। श्री गंगानगर से ख्वाहिश कर रहे हैं इसी गीत के लिए बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शाइना और निवान शर्मा। कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस प्रशांत कार्तिक और इनके परिवार के सभी सदस्य। कुछ मैसेज ले लेते हैं मनोज जी अब।
1: बिल्कुल, तो मैसेज की ही बारी है श्वेता, और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ, हमारे नियमित श्रोता हैं ये, और भाई हैं कहाँ से ये ना, इन्होंने

का नाम तो लिखा है नहीं, लेकिन भाई कहाँ इनका नाम ढूंढे हम, सिर्फ यही लिखा है कि भाई ये गीत हमें सुनवा दीजिएगा। खैर चलिए, आपको नाम भी लिखना चाहिए था, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई नाम आपका मिल जाए, हमें स्क्रॉल भी कर रहे हैं लेकिन वो नाम हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये हमें कैसे मालूम चले कि भाई आप हैं कहाँ से, फ़िलहाल ये आप मुझे लिख के भेजिएगा, नाम आपका हम शामिल करेंगे। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, और हमारे श्रोता कई बार बिल्कुल आखिर में नाम लिख देते हैं तो थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करना पड़ता है और थोड़ा सा नज़रों को अपनी हमें देखना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ से लिखा हुआ है, कहाँ लिख देते हैं। बाकी एक सिस्टम होता है कि भाई जो गीत आप सुनना चाह रहे हैं उसको आप टाइप करिएगा, उसके बाद में फिल्म का नाम लिख दीजिएगा, अपने नाम लिख दीजिएगा, पाँच छः नाम लिख दीजिएगा, बहुत हैं। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता सुनते हैं। और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई खेल बाजार, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी चौक, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू भाविका और पूरा ही सिक्का परिवार। ये मैसेज है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद, मुज्जू बाबा, आयजानम और मुदस्सिर हुसैन। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद सहारनपुर से हमारे नियमित श्रोता है आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पाठक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रकाश राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सरवद, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता भी हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार अबालो छत्तीसगढ़ से हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और उनका पोता मास्टर अल कबीर। क्या बात है भाई। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं दादरी गेट भिवानी के श्रोता हैं हमारे कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनका पूरा परिवार। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: ये गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था खिलाड़ी और गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। समय है 10:49 और इस वक्त कुछ खत भी हैं हमारे हाथ में, तो सोचते हैं कि भाई खतों के ज़रिए भी अपने श्रोताओं को हम शामिल कर लें। तो ये खत मैं ले रहा हूँ ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद जिला बिजनौर से। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्षा रानी, इंशा, अरीबा, अनाबिया, आयरा और इनका पूरा परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी। तेलीपुरा रावाना शिकारपुर तलाई से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, मोहम्मद उमेर अंसारी और इनका पूरा परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और राना सिद्दीकी। मौला धर्मदास नजीबाबाद के हमारे श्रोता हैं। गुलाम हसन, निशात, बानो साबरा, विलायती शहजादी, सलमान और शराफत के अलावा इनका पूरा परिवार। सब्जी मंडी नजीबाबाद के हमारे श्रोता हैं। विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल, निकित अग्रवाल, सोनी अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल। मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद के हमारे श्रोता हैं। कुलदीप माहेश्वरी, मंजुला माहेश्वरी, दीपांशु माहेश्वरी, पलक माहेश्वरी, चिराग माहेश्वरी और रुद्र माहेश्वरी। मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर के हमारे नियमित श्रोता हैं। नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। ग्राम लुहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं हमारे। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, आराधना और इनका पूरा परिवार। सहारनपुर दाऊदसराय से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी। दूल्हापुर मुरादाबाद से आप हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और इनका पूरा परिवार। मोहल्ला बकर कसाबान शेरकोट बिजनौर से रऊफ अहमद, निजामुद्दीन, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान और इनका पूरे परिवार। और हमने कहा था अपने श्रोताओं से कि भाई एक एसएमएस ऐसा मिल रहा है कि उनका नाम हमें नजर नहीं आ रहा, तो भाई हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, ये मैसेज उन्होंने कर दिया है और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई जैसे कि हमारे श्रोता बहुत ही शिद्दत से हम सभी को सुनते हैं और हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से विशेष प्रेम रखते हैं। ये हमारे श्रोता हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के श्रोता हैं ये नियमित हमारे। उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। भाई देखिए मौसम भी थोड़ा सा बदल रहा है, गर्मी बहुत है बाहर की साइड में और कई बार क्या होता है कि भाई कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि तुरंत वो अनैच्छिक होती हैं, हम चाहें भी ना कि भाई इसको रोक सकते हैं तो शायद वो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा अपने श्रोताओं से हम कहना चाहते हैं इसका वो ख्याल रखें, है ना। मौसम तब्दील कर रहा है ना, कभी
1: मनोज
0: गर्मी हो
1: जी
0: जाती। जी बोलो।
1: कुछ लेटर ले लें?
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: ये लेटर हमें मिला है करुला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया और शेब खान का, कार्यक्रम के इसी गीत के लिए। आप हैं संगीत टाकिच शाहगंज आगरा से, महफूज अंसारी, फिरदोज अब्दुल, हुमैरा, हिफ्जा, हबीबा, हलीमा और हसन अब्बासी। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता, लोकेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीलू वैद इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे सभी श्रोता। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहनकार, नर्मदा पोहरकार, अनिल पोहरकार, महेंद्र पोहरकार, सुनील साहिल और सुजाता पोहरकार। और आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश और कुड़िया ठाकुर। एयरपोर्ट रोड वंदनगर इंदौर से हमें ये पत्र भेजा है वंदना कुमारी मराठा, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे ने। और हमारे साथ जुड़े हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से। आप हैं राजेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और बेबी आरजू जजोरिया, पटेल नगर मलोट पंजाब से। और ये अंतिम पत्र है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक।
0: इसके अलावा ये मैसेज लगातार हमें मिल रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। कुलांग निजामाबाद तेलंगाना से हमें वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल के अलावा इस गीत को मैसेज हमें कर रहे हैं। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयाण, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज और इनका पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए हमारे श्रोता आप भी हैं। नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई, देखिए आप भी हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है मौला धर्मदास नजीबाबाद से, रानी बिटिया मदीहा, अब्दुल रहमान और इनके पूरे परिवार का। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है जी। नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं हमारे, नारायण गायकवाड़, दया

आनंद ओमकार और साई गायकवाड़ के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। ये मैसेज विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन के अलावे इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। भाई देखिए हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। कवाई सालपुरा जिला 12 राजस्थान से हैं। सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता ये भी हैं। चकला बाजार समाना शहर पंजाब के श्रोता हैं। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, संगीता सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। एक मैसेज और लेते हैं, उसके बाद में आपको अंतिम गीत ही हम सुनवाएंगे साहब। और ये मैसेज है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना आशिक हुसैन अंसारी और कस्बा मीरगंज बरेली से भाई कल्लू मिस्त्री और इनका पूरा परिवार।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें हमारे साथी मनोज जी के साथ और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र। हैव अ नाइस डे।
1: धन्यवाद श्वेता।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 11 बज रहे हैं, समय है चित्रपट संगीत का। तो चित्रपट कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं आज के इस अंक में। और इस अंक में सबसे पहले हम गीत जो आप सुनवाएंगे वो अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर आधारित है, या ये कहें कि उनकी फिल्म का है जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो हमारी तरफ से और आकाशवाणी नजीबाबाद की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको सुनवाते हैं वेलकम फिल्म का ये गीत जो 2007 में बनी हुई थी। इस फिल्म के गीत की खास बात एक है कि ये गीत लिखा है, संगीतबद्ध किया है और आवाज तीनों में ही आनंद राज आनंद है। तो सुनिएगा ये गीत।

0: वेलकम फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद राज आनंद की आवाज में। इसका गीत और संगीत भी आनंद राज आनंद का ही था।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में। फिल्म का नाम है निकाह। हसन कमाल का यह गीत है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

0: ने कहा। फिल्म का यह गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। भाई साथियों के मायने हमारा ये था कि पहले तो हम बात कर ही चुके थे इस गाने के बारे में आपसे कि सलमा आगा इनके साथ थी। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लुटेरा। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: हमले की तैयारी करो,
2: जल्दी करो।

0: साथ बांधने हमला कर दिया। किले की दीवारें टूट रही।
1: दारान शाह समान
2: वजीर बहर दुश्मनों के हमले का मुंह

खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। आनंद बख्श ने लिखा था और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए एक दूजे के लिए फिल्म के इस गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से आज का अंक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित,

0: जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
1: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी।
0: जी,
1: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी।
1: जी।
0: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
1: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
0: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश। आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी।
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी।
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी।
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी।
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
4: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी।
4: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
4: जी।
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
4: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
4: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी।
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है।

0: तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
1: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
2: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
1: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: अच्छा
1: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
2: डॉक्टर नमिता
0: जी,
2: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
0: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
1: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
0: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
1: जी,
0: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
2: अच्छा,
0: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
2: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
1: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
2: बिल्कुल,
0: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
1: जी,
0: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
2: बिल्कुल,
0: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
1: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
2: जी,
1: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
2: जी,
1: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
2: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
0: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
2: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
1: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
0: बिल्कुल,
1: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
1: जी,
0: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
2: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
0: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप, इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
1: जी
2: बिल्कुल,
1: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
2: जी,
1: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
1: जी,
0: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
2: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
1: जी,
2: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो
2: जी,
1: तुम्हें भी
2: जी,
1: कह रहा हूँ। चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी।
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरु जी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: पीछे बैठो, पीछे बोलो।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
7: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
8: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
7: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
7: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
9: दीदी।
10: बोलो मालती।
9: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
10: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
9: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
10: ठीक।
9: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
10: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
9: जी।
10: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
9: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
10: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
11: नमस्ते दीदी। नमस्ते
12: दीदी।
13: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
14: दीदी ये,
13: अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण कहाँ से लाए तुम ये फूल?
8: दीदी ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
13: अच्छा
8: दीदी इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
13: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
14: गुलाब।
13: गुलाब बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
11: दीदी मैं बताऊंगी।
13: नहीं नहीं नहीं सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
14: गुलाब।
13: हम्म।
14: गेंदा।
13: हाँ
14: चमेली। और
13: हाँ
14: चमेली।
13: चमेली।
14: सूरजमुखी।
13: सूरजमुखी शाबाश।
4: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
13: देखिए मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़ तना टहनी पत्ते फूल और फल होते हैं।
4: जी जी
13: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
4: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
13: जी कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
4: बहुत अच्छे।
13: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
4: अरे इंदु जी आपने तो गणित वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
13: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
4: जी
13: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
4: हल्के नीले रंग के?
13: हाँ मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
4: अच्छा
13: मैं जिस इलाके की हूँ ना वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
4: काहे की लिस्ट?
13: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है।
13: हाँ कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
4: इंदु जी आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
13: देखिए बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
4: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से आज का अंक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स अपराह्न 4 बजे, कंट्री वाइड और इनसाइट्स आज रात 9:30 पर। इसके अलावा आज रात 8:15 पर भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज रात 10 बजे सुनिएगा, चिरंजीत का लिखा और सुदर्शन कुमार द्वारा निर्देशित नाटक एक और सावित्री।

विविधा क्रम में शाम 6:45 पर गीता शर्मा की वार्ता का विषय रहेगा डिजिटल दौर में पुस्तकालय का बदलता स्वरूप।

आज के कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र शामली डॉक्टर संदीप चौधरी से अंकित कुमार की भेंटवार्ता का विषय रहेगा गन्ना बंधाई का महत्व।

आज के युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज। नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, कहानी के उस पार, ताना बाना, बूस्टर और फिल्म संगीत के।

मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5 बजे मिशन इंद्रधनुष अभियान, किलकारी मोबाइल ऐप, मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड पर जानकारी प्रदान की जाएगी। आज दिन में 2:30 पर एक ही संगीत कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे सज्जाद हुसैन की। दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे मीना बिष्ट के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

बी प्राक की आवाज में आपने केसरी फिल्म का ये गीत सुना। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और आर्को ने इसकी धुन तैयार की थी। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है इतिहास। इस गीत को समीर ने लिखा है और दिलीप सेन के साथ समीर सेन ने इसकी धुन बनाई है।

इतिहास फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि भाई ये कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और ये कार्यक्रम ख़ास तौर पे हमारे सैनिक भाइयों के लिए ही प्रसारित किया जाता है। और सैनिक भाई वो हमारे सैनिक भाई जो हम सब की सेवा के लिए दूर दराज पहाड़ों पर अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर रहकर देश की सेवा करके हम सबको चैन की नींद सुलाते हैं, वहाँ वो अजनबी होते हैं। सभी स्थानीय लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है कि हम सब उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि वो वहाँ अनजान होते हैं।

बॉर्डर्स पे या दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे सैनिक भाई बिल्कुल अजनबी होते हैं, और जानकारी उनकी कहाँ होती है, उनके घर परिवार में होती है। और वो घर परिवार जो उनके आने की राह तकता रहता है कि अब छुट्टी मिलेगी, कई बार छुट्टी मिलती भी नहीं है, तो वो बेचैनी कैसी होती है, ज़रा इस गीत में सुनेंगे।

इज्जत फिल्म के इज्जत के साथ सैनिक भाइयों, आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हो रहे हैं। समय है मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का। तो मिड डे मेलोडी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और भाई, एक चीज़ हम बहुत महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, अपने शहर की बात हम कर रहे हैं कि गर्मी बहुत हो रही है। बादल सुबह शाम नज़र आते हैं, उनके टुकड़े नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि भाई आज बरस ही जाएंगे, थोड़ी सी गर्मी की जो शिद्दत है ना, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्या करें? बादल आते हैं, वो टुकड़े दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी जगह बरस जाते हैं और तापमान को थोड़ा सा तो तब्दील कर ही देते हैं। लेकिन हाँ, अगर लगातार बारिश हो कुछ समय के लिए, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जो बारिश होती है ना, उससे होता क्या है कि उमस बढ़ जाती है, और उमस बढ़ने से और बहुत सारी परेशानियाँ व्यक्ति के लिए शुरू हो जाती हैं। चिपचिपाहट हो जाती है, तो बहुत सारी दूसरी जो दुश्वारियाँ होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो भाई, हम भी आज ये सोच रहे हैं कि भाई बादल के जो टुकड़े हैं वो आएं और आकर आसमान में रुकें। आसमान में तो होते ही हैं वो, लेकिन आज वो अपना काम पूरा करके जाएं और इस तपती धूप में, इस उमस भरी वाली गर्मी से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम महसूस करें कि भाई तापमान में गिरावट आई है। क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है बारिश भी, है ना? मौसम होते हैं, और मौसम का होता क्या है कि भाई कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मौसम बदल जाएं, तो भाई मौसम तो मौसम ही होते हैं ना, तो हमें अपने आप को बदलना होता है ना? तो अपना ख्याल भी रखिएगा इस बदलते हुए मौसम में। कभी धूप निकलनी, कभी बारिश हो जानी, है ना? ये बीमारियों का भी मौसम होता है, संक्रमण का भी मौसम होता है ना? गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से भी कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो फिलहाल हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो बादल के टुकड़े हैं ना, ये किसी और जगह ना जाएं बस, और यहीं बरस कर रह जाएं।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में आपने सुना प्यासा सावन फिल्म का ये गीत। संतोष आनंद का ये गीत लिखा हुआ था और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिलहाल ये संदेश, उसके बाद अगला गीत।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक ही भूल से। आवाजें हैं आशा भोसले के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम की। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत आप सुन रहे थे एक ही भूल फिल्म से। आवाजें थीं आशा भोसले के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम की। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

प्रेम बंधन फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इससे पहले कि हम आपको एक अंतिम गीत सुनवाएं, जी हाँ हम कह रहे हैं आपसे अंतिम गीत है, तो कुछ कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं भी हम अपने आपको, यानी कि हमारे जो श्रोता हैं वो हमें बहुत प्रेमी हैं, है ना, बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे, तो वही चीज़ हमारी ज़बान से भी निकलती है। तो मैं बता दूं आपको कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 8:15 पर। इसके अलावा कंट्री वाइड और इंसाइट्स कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा आज रात 9:30 पर। इसके अलावा आज अपराह्न 4 संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम, ये साप्ताहिक कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, तो सुनना ना भूलिएगा आज के इन कार्यक्रमों को भी। और जैसा कि हमने कहा था कि एक गीत और है हमारे पास में, और वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ अंतिम गीत। तो वो गीत आपको सुनवा देते हैं अमित कुमार और कंचन के साथ साथ साथियों की आवाज़ों में, और फिल्म का नाम है कुर्बानी। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने इसकी धुन तैयार की है, तो सुनिएगा ये गीत।

0: अमित कुमार, कंचन और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना कुर्बानी फिल्म का ये गीत, और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत था। इसी के साथ आज का मिड डे मेलोडी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेज़ी में, और उसके बाद इलाकाई खबरें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।

0: उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वर्षा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization.

0: और जो सिफारिशात कौमी मफाद में है उन्हें पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। कबल अजीं गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी से बातचीत की। बातचीत के दौरान गवर्नर ने कमेटी के अराकन के साथ इंतखाबी निजाम, इंतखाबी असलाहत और खवातीन की सियासी शिरकत समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के तकरीबन 500 ग्राम पंचायत प्रधान आज वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पंच सम्मेलन में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। सम्मेलन का मकसद ग्राम पंचायतों को ज्यादा बाख्तियार, शफाफ और नतीजा खेज बनाना है और रामजी एक्ट 2025 के दफात और वीबीटी के साथ साथ मकासद के बारे में अवामी नुमाइंदों के समझ को मजबूत करना है। सम्मेलन के मेहमान खसूसी वजीर मुमलकत बराए देही तरक्की कमलेश पासवान, उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य होंगे। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से 350 ग्राम प्रधान, बिहार से 75, झारखंड के 50 और उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधान शिरकत करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन टिकट बुकिंग को आसान बनाने के वेबसाइट के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने इस साइट का एक नया वर्जन जारी किया है। वर्जन में चार बड़ी असलाहत की हैं। इससे पहले कोई गैर जरूरी कैप्चा, पॉपअप या दीगर खल्फिशार नहीं है। दूसरा, मुसाफिर तमाम क्लासों में सीट की दस्तयाबी दे सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने के लिए कम मराहिल दरकार हैं और वेबसाइट अब मुसाफिरों की मालूमात को महफूज करेगी जिससे दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहनों कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होंगी। बहनों, आज की महिला की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से शुरू होती है। घर की देखभाल, बच्चों की चिंता, बड़ों का ध्यान और फिर काम की जिम्मेदारियां। दिन कब शुरू होता है और कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहनों बदलते समय के साथ हम महिलाओं की भूमिका भी बदल गई है। पहले जहां अधिकतर महिलाओं की जिम्मेदारी घर और परिवार तक सीमित मानी जाती थी, वहीं आज बड़ी संख्या में महिलाएं जॉब कर रही हैं, अपना बिजनेस संभाल रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। लेकिन घर की जिम्मेदारियां आज भी उनके जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि क्या परिवार और करियर दोनों के साथ संतुलन बनाया जा सकता है? बहनों, सच तो यह है कि संतुलन का मतलब हर काम अकेले करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताएं तय करना, समय का सही उपयोग करना और जरूरत पड़ने पर परिवार का सहयोग लेना। कई बार हम महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते अपनी खुद की सेहत और आराम को नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि अगर हम खुद स्वस्थ और खुश हैं तभी परिवार और अपने काम दोनों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। इसीलिए दिन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना भी जरूरी है। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि परिवार केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं है। जब पति, बच्चे और घर के दूसरे सदस्य जिम्मेदारियां मिल बांट कर निभाते हैं तो न सिर्फ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि परिवार भी अधिक खुशहाल बनता है। याद रखिए, एक सफल महिला केवल वही नहीं जो हर काम अकेले कर ले, बल्कि वो है जो अपनी खुशियों, अपनी सेहत और अपनी परिवार तीनों का संतुलन बनाए रखना जानती हो। परिवार और करियर दो अलग अलग रास्ते नहीं है। सही सोच, आपसी सहयोग और थोड़ा सा संयम प्रबंधन हो, समय

प्रबंधन हो तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। और इसी सोच के साथ बहनों कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और कार्यक्रम में है अभी बहुत कुछ, मिलते हैं आपसे कुछ ही क्षणों में।

0: महिला जगत कार्यक्रम में बहनों आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहनों, कहते हैं जब एक महिला अपने सपनों को उड़ान देती है तो उसके साथ कई और सपनों को भी पंख मिल जाते हैं। उसकी सफलता केवल उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि वो समाज की अनेक बेटियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। ऐसी ही महिलाओं और बेटियों की सफलता की कहानी हम लेकर आते हैं अपने सेगमेंट आधी आबादी में। तो आइए बहनों, आपको मिलवाते हैं आज की अपनी आधी आबादी की नायिका से और सुनते हैं आधी आबादी से। सपनों को सच करने के लिए ऊंची उड़ान नहीं, मजबूत इरादों की जरूरत होती है। और जब एक बेटी अपने सपनों को समाज की संवेदनाओं से जोड़ देती है तो उसकी सफलता कई और बेटियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आधी आबादी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे झारखंड के धनबाद की बेटी कंचन सिंह की, जिन्होंने पेरिस फैशन वीक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। धनबाद के भूली क्षेत्र में पली बड़ी कंचन सिंह ने 9वीं कक्षा में ही फैशन डिजाइनिंग का सपना देख लिया था। एक साधारण सिलाई मशीन से शुरू हुआ उनका ये सपना आज दुनिया के सबसे बड़े फैशन मंचों में से एक है। इतने बड़े मंच पर पहुंचने की प्रेरणा कंचन को कहां से मिली, आइए कंचन से ही जानते हैं इसके बारे में।
1: फैशन डिजाइनिंग में आने की प्रेरणा मुझे तब मिली जब मैं क्लास 9th में थी। मेरी मम्मी ने बस एक सिलाई मशीन घर पे ले आई, सिलाई की मशीन, और मैंने बस कुछ सोचा समझा नहीं, और मुझे सीखना था, जानना था कि मशीन कैसे चलती है कैसे नहीं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ उठाई, काटना चालू किया और ड्रेसेस बनाना चालू किया।
0: माँ की पुरानी साड़ियों से छोटे छोटे डिजाइन बनाने वाली कंचन का शौक धीरे धीरे जुनून में बदल गया और उन्होंने धनबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के एक फैशन डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी में उनका चयन हुआ। फैशन डिजाइनिंग के अंतिम वर्ष में उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जिसने उनकी प्रतिभा को वैश्विक पहचान दिला दी। देश भर में चुने गए डिजाइनरों में झारखंड से अकेली कंचन सिंह को पेरिस फैशन वीक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला।
1: इसमें हमारे कॉलेज में ही एक अपॉर्चुनिटी आई थी विदेश से, पेरिस से, कि आप अगर चाहें तो पेरिस फैशन वीक में जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने काम किया है या फिर जो भी आपका टॉपिक है, आप उस टॉपिक को उधर भेज सकते हैं। तो फिर हमने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, मैं और मेरी बहुत सारे क्लास के दोस्त थे, सबने बनाया, सबने डॉक्यूमेंट भेजा पेरिस, और वहाँ से पेरिस से ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट हुए। उन 20 बच्चों में से एक मैं थी। और धनबाद झारखंड से अगर आप बोले तो पूरे झारखंड से मैं एक ही लड़की थी जिसने पेरिस फैशन वीक में इस बार अपने स्टेट को या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया।
0: कंचन की सफलता की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने केवल फैशन नहीं बल्कि अपने समाज की पीड़ा और संघर्ष को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने काली धरती थीम पर आधारित परिधान तैयार किया जिसमें कोयला खदानों से जुड़े विस्थापन, पर्यावरणीय चुनौतियों और श्रमिकों के संघर्ष को कलात्मक रूप दिया।
1: मेरा टॉपिक मैंने कोल माइंस लिया, कोयला का खदान, इसीलिए क्योंकि हमें जब हम टॉपिक ले रहे थे तो हमें बोला गया था कि आप टॉपिक ये समझ के ना ले कि आप कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में है या फिर आप कोई बहुत चमक धमक में नहीं जाना है। आपको ऐसे टॉपिक लेना है जो कि इम्पैक्टफुल हो, जो कि आगे जाने वाले समय में आप जिससे लोगों को एजुकेट कर सके। अगर एजुकेट नहीं कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट लोगों को कुछ बता सके अपने टॉपिक से लेकर के। चमक धमक से हटके अगर कुछ है ऐसा जो आप दुनिया को बता सके तो आप वैसा टॉपिक चूज करें। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने शहर के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया था, तो उसमें से मैंने भी सोचा कि मैं भी धनबाद से हूँ। मैंने बचपन से ही कोल माइंस का, उसका स्ट्रगल और लाइफ कैसी है उसके अराउंड, लोग किस तरह से कोयले के नीचे आके दब के मर जा रहे हैं, और किस तरह से लोगों की घर टूट रही है, किस तरह से लोग बेघर हो रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन किसी ना किसी का घर टूट रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई खदान की वजह से बेघर हो रहा है, उनको रिलोकेट होना पड़ रहा है, जो कि एक तरीके से देखे तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। अगर आपको कोई बोले कि आज से आप अपने घर पे नहीं रह सकते, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा?
0: दो महीनों की मेहनत और आधुनिक तकनीकों की मदद से तैयार इस परिधान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस परिधान को तैयार करने में उन्होंने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया और किस तकनीक से ये ड्रेस तैयार की गई, उसके बारे में कंचन बताती हैं।
1: इस डिजाइन को तैयार करने में मुझे तकरीबन 2 महीने लगे, और इस डिजाइन में मैंने जो मटेरियल यूज किया है वो PUC लेदर वायर स्ट्रिप्स है, और उसके अलावा एल्युमिनियम वायर भी है, और मैंने पूरे जो ड्रेस है वो वीविंग करके एक तकनीक होती है उससे बनाई है, अलग अलग तरीके की वीविंग किया हुआ है उसमें। उसमें ट्रक के जो टायर के मार्क्स होते हैं उसको भी मैंने दिखाने का कोशिश किया है अपने डिजाइन में, और जो टोकरी, जिस तरीके की टोकरी बनती है, बुनती है, मैंने उस तकनीक को भी इस्तेमाल करके इस ड्रेस को बनाया है। और इस ड्रेस पे सिर्फ मैंने ड्रेस नहीं बल्कि ज्वेलरी भी बनाया है, जो कि 3D प्रिंटेड है, जो कि दिखता कोयले की तरह है पर वो कोयला नहीं है, वो 3D प्रिंटेड है, जो कि एक नया इनोवेशन है।
0: कंचन सिंह का सपना है कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान मिले और यहाँ के युवा कलाकारों को भी वैश्विक मंच तक पहुँचने का अवसर मिले। अपनी सफलता के बारे में कंचन कहती हैं,
1: मैं इस सफलता को अभी कुछ इस प्रकार देखती हूँ कि ये सफलता मेरे लिए एक पहली सीढ़ी है, अभी मैंने शुरुआत ही किया है, अभी आगे जाके मुझे धनबाद, झारखंड के नाम को बहुत आगे पहुँचाना है और बहुत सारे और भी काम करने हैं।
0: कंचन, आपके सारे सपने सच हों और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। कंचन सिंह की ये यात्रा हमें बताती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े साधनों की नहीं बल्कि बड़े हौसलों की जरूरत होती है। अगर लगन, मेहनत और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण हो तो छोटे शहरों से निकलकर भी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई जा सकती है। वाकई हर सफल महिला की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अगर हौसले बुलंद हो और खुद पर विश्वास हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां न केवल हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी जगाती हैं। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और समय है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट भूली बिसरी यादों का। यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे समय के साथ और भी अनमोल हो जाती हैं। बीते दिनों की छोटी छोटी बातें, रिश्तों की गर्माहट, त्योहारों की रौनक और जीवन के अनुभव, यही यादें हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। अपने इस सेगमेंट में हम बातचीत करते हैं अपने बुजुर्गों से, जिनके जीवन के अनुभव, संघर्ष और सुनहरी यादें हमें न केवल अतीत से जोड़ती हैं बल्कि वर्तमान को भी बेहतर ढंग से जीने की सीख देती हैं। तो आइए आज मिलवाते हैं अपने इस विशेष अतिथि से और सुनते हैं उनके जीवन के अनमोल किस्से और यादें। आइए शुरू करते हैं भूली बिसरी यादें, जिसमें की भावना अरोड़ा बातचीत कर रही हैं गीता शर्मा से।
2: बहनों, भूली बिसरी यादों के क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गीता शर्मा जी, जो साहू जैन महाविद्यालय से संगीत विभाग से रिटायर्ड हैं। तो गीता जी, स्वागत है आप।

0: का हमारे कार्यक्रम भूली बिसरी यादों में
1: धन्यवाद।
0: तो गीता जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही।
1: देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुरादाबाद से हुई है और मुरादाबाद से ही, मतलब पूर्ण शिक्षा कहना चाहिए, मेरी वहीं से हुई है।
0: अच्छा।
1: इसके बाद ही मैं यहाँ नजीबाद में साहूजान कॉलेज में मेरा पहला अपॉइंटमेंट यही हुआ है।
0: किस वर्ष आपने यहाँ पर ज्वाइन किया?
1: मैंने 1971 में यहाँ अप्लाई किया था।
0: अच्छा।
1: और तभी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉलेज यही था।
0: तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ से शुरुआत की वहीं से आप रिटायर हुए।
1: हाँ।
0: ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपने अपना पूरा जीवन एक ही संस्था
1: में रहा है।
0: हाँ।
1: और काफी लंबा पीरियड मेरा रहा है यहाँ सर्विस का।
0: जब आपने यहाँ ज्वाइन किया तो क्या आपकी उम्र रही होगी?
1: तब तो देखिए मैं बिल्कुल यंग ही थी।
0: जी
1: उस समय तो मेरी मुश्किल से 20 या 21 के करीब रही होगी उम्र।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: विवाह आपका उसके बाद हुआ?
1: हाँ जी, विवाह उसके बाद हुआ है मेरा।
0: कैसा रहा अनुभव आपका यहाँ का?
1: फर्स्ट टाइम तो जब मैं यहाँ आई थी कोएड में, हालांकि मैंने वहाँ केजी के कॉलेज से एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया था कोएड में, उससे पहले मैं गोकुलदास में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ। शिक्षा जो मेरी
0: अच्छा।
1: ग्रेजुएट जो मैंने किया वो एमए में कोएड में एडमिशन लिया था, लेकिन वो भी हम जाते थे, मतलब इतना था, अपने पीरियड लिए और घर आ गए,
0: जी
1: ये रहता था। लेकिन यहाँ आके सर्विस करना और वो भी कोएड में, तो शुरू शुरू में तो मुझे बहुत थोड़ा सा लगा कि पता नहीं मैं कैसे कर
0: कर
1: पाऊंगी,
0: पाऊंगी कि नहीं।
1: लेकिन यहाँ मेरे स्टाफ का ना, सब लोगों का बहुत कॉपरेशन रहा मुझे,
0: अच्छा, मतलब आपके अच्छे अनुभव रहे यहाँ
1: मेरे
0: से।
1: तो हाँ काफी अच्छे रहे, पूरा स्टाफ मुझे सपोर्ट करता था।
0: जी, आपको कब लगा कि आपकी संगीत में रुचि है और आप इसी फील्ड में जाना है?
1: देखिए मेरे यहाँ तो परिवार से है, मेरी मदर म्यूजिक में ही है और
0: अच्छा,
1: मैंने संगीत की शिक्षा उन्हीं से ग्रहण की है।
0: अरे
1: तबले पे
0: वाह
1: हाथ रखना मेरी मदर ने ही मुझे सिखाया है।
0: जी, बिल्कुल। कहते हैं ना कि ये जो ललित कलाएं होती हैं, ये गॉड गिफ्टेड होती हैं, है ना, आपके अंदर से ही होता है, यानी आपको बाय बर्थ वो आपको मिला।
1: मेरे घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल म्यूजिक संगीत में था एक तरह से।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे यहाँ आते थे, तो इस मामले में तो मैं खैर बहुत लकी रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब म्यूजिक में प्रवीण किया था, मैं वहां गई थी इलाहाबाद परीक्षा देने के लिए। 1969 में मैंने इसमें प्रवीण किया है,
0: जी
1: तब तो परीक्षाएं भी काफी, बहुत मतलब कहना चाहिए, कठिन होती थी उस समय।
0: बिल्कुल।
1: तो बनारस घराने के तबला सम्राट पंडित किशन महाराज
0: जी
1: आए थे हमारे यहाँ, मतलब वहाँ इलाहाबाद में प्रयाग
0: इलाहाबाद।
1: संगीत समिति में
0: जी
1: एग्जाम लेने के लिए। तब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था इलाहाबाद
0: अच्छा।
1: में,
0: जी
1: तो उनकी पर्सनैलिटी आज भी मेरी आंखों के सामने, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात जैसे वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। और
0: बिल्कुल
1: उन्होंने मेरी परीक्षा ली तबले की, उन्होंने मेरे मतलब तबला वादों को अप्रिशिएट किया।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा इतना बड़ा व्यक्ति मेरे को
0: बिल्कुल। देखिए
1: एप्रिशिएट
0: गीता
1: कर रहा है,
0: जी,
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: हमारे आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है वो यही है कि भूली बिसरी यादें। इसमें हमारा यही प्रयास रहता है कि आपकी जो यादें हैं, जो आप कहीं भूल गए हैं, उनको दोबारा से आप याद करें, उन मीठी यादों को याद करें। तो आज मैं आपके चेहरे की चमक देख रही हूँ। आप अपने उस्ताद जी का नाम लेते ही आपके चेहरे पे जो एक चमक और एक जो सम्मान का भाव आया है वो मैं देख सकती हूँ। तो यही है कि हमारी जो यादें हैं हमसे छूट जाती हैं, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में कि हम पुरानी बातों को कभी शायद याद भी नहीं करते। इस बहाने कम से कम आपने अपनी पुरानी यादों को याद
1: ये तो है।
0: किया।
1: हमारी मदर ना क्या था, वो कहती थी एक चीज को इसको बजाते रहो जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गई, बिल्कुल तो आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। बल्कि हमें उस समय तो कुफ्त होती थी कि
0: जी
1: सबको, लड़कियों को तो बताती है, हमें बताती नहीं है।
0: अच्छा।
1: लेकिन वो उसका मुझे लगता है कि हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जिस चीज का हम जितना ज्यादा हम किसी चीज
0: अभ्यास
1: को
0: करते हैं।
1: मांझेंगे,
0: जी
1: अभ्यास करेंगे, हमारा
0: हाँ।
1: तबले पे हाथ रखने का तरीका अगर सही है, मेन चीज बेसिक चीज तो वही होती है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हम तबले पे हाथ ढंग से रखेंगे तो हमारे जो वर्ण हैं वो
0: वो
1: नेचुरल है कि वो
0: सही
1: अच्छे
0: निकलेंगे।
1: निकलेंगे और साफ निकलेंगे, स्पष्ट निकलेंगे। ऐसे ही यहाँ आकाशवाणी में वो थे साबिर साहब
0: जी
1: तबले में,
0: जी जी जी
1: वो तो ए हाई क्लास आर्टिस्ट थे, वही यहाँ
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल।
1: कई साल रहे हैं वो यहाँ। मुझे इस मामले में बड़ा अच्छा लगा, सब लोगों
0: हाँ
1: का बहुत प्रेम मिला मुझे, कहना
0: जी।
1: चाहिए।
0: अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने बताया कि लगभग 71-72 का ये है कि जब आपने यहाँ ज्वाइन किया,
1: ज्वाइन किया 71
0: तो उस
1: में।
0: समय थोड़ा सा मैंने, मुझे अगर याद पड़ता है तो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा शिक्षा की मतलब स्कोप नहीं था, बहुत ज्यादा चाहते नहीं थे कि महिलाएं घर के बाहर निकलें, नौकरी करें। तो क्या कभी इस तरह की भी दिक्कतें आईं कि एज ए महिला होकर आप दूसरे शहर में आकर जॉब कर रही थी, तो क्या कभी और इस तरह की
1: नहीं इस
0: दिक्कतें भी
1: मामले
0: आईं?
1: में, नहीं इस मामले में तो असल में अब मुरादाबाद से नजीबाद पास भी था।
0: जी
1: हाँ, ये जरूर था कि मैंने एक जगह और अब मथुरा में अप्लाई किया था,
0: जी
1: अब ध्यान आ रहा है, तो दो जगह केवल मैंने अप्लाई किया था, तो एक तो उसमें नजीबाबाद था और दूसरा मथुरा था।
0: जी

0: घर वालों ने इतना तो जरूर कहा कि नजीबाबाद पास में है, इसलिए इनको यहाँ भेजो। और
1: बिल्कुल
0: बाई चांस यहाँ का अपॉइंटमेंट पहले हो गया तो
1: अच्छा,
0: मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी मथुरा जाने की।
1: मथुरा जाने की, मतलब आपको घर से पूरा सपोर्ट
0: पूरा
1: मिला।
0: सपोर्ट मिला हाँ इस मामले।
1: लगभग कितने वर्ष आपने यहाँ जॉब की?
0: मैं यहाँ 71 से जॉब में लगी हूँ और अभी 2012 में रिटायर्ड हुई हूँ।
1: तो विवाह आपका फिर कौन से साल में हुआ?
0: मैं बस एक साल बाद 72 में हो गया था।
1: तो आपके हस्बैंड जॉब में थे कैसे?
0: हाँ वो जॉब में टीचिंग में ही रहे हैं
1: टीचिंग में
0: वो
1: रहे।
0: भी।
1: उनकी कहाँ ज्वाइनिंग थी?
0: उस समय तो वो मुरादाबाद में ही थे टीचर।
1: अच्छा, तो फिर कभी घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि
0: नहीं
1: हस्बैंड
0: नहीं
1: जैसे
0: नहीं
1: मुरादाबाद में और
0: नहीं
1: आप यहाँ
0: ऐसा
1: पर,
0: कुछ नहीं, ऐसा
1: आप
0: कुछ
1: यहाँ
0: नहीं
1: रहती
0: हुआ।
1: थी?
0: मैं यहाँ रहती थी, वो आते रहते थे, मैं चली जाती थी मुरादाबाद। बस ऐसे ही अप एंड
1: इसी
0: डाउन
1: तरह
0: होता
1: अप एंड डाउन होता रहा,
0: रहा।
1: जीवन इसी तरह कट
0: ऐसे ही
1: गया।
0: करता रहा
1: कुल मिला के कहा जाए तो आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा यहाँ
0: मेरा।
1: का।
0: हाँ अनुभव अच्छा रहा। एक आध तो थोड़ी सी मिस
1: जी
0: हैपनिंग होती है, वो तो कोई खास बात नहीं है।
1: गीता जी, आपकी रुचि किस किस विषय में रही ज्यादा? तो आप अपनी रुचि के बारे में बताइए कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट रहा हो ज्यादा, संगीत के अलावा।
0: संगीत के अलावा मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था।
1: अच्छा
0: खाना, क्योंकि बीए में मेरे पास होम साइंस थी। हाँ तो
1: अच्छा
0: उसमें नई नई डिशेस, आपका सब्जेक्ट है ना होम
1: अच्छा
0: साइंस।
1: जी बिल्कुल। घर के काम में भी रुचि रही, मतलब
0: घर के
1: खाना
0: काम में
1: बनाने में।
0: हाँ थोड़ा सा नई नई डिशेस बनाना थोड़ा सा
1: जी
0: अच्छा लगता था मुझे।
1: अच्छा, एक और कि जैसे आपने बताया कि शादी भी हो गई उसके बाद, एक वर्ष बाद ही, तो बच्चों की देखभाल के लिए कैसे फिर आपने मैनेज किया? क्योंकि आप बताती हैं आपके हस्बैंड वहां रहते थे, आप यहाँ रहती थी,
0: अब
1: तो
0: बच्चों में तो मेरे पास बेटी है।
1: अच्छा
0: हाँ एक बेटी है, वो भी काफी लेट
1: अच्छा देर से।
0: तो

0: अलग, और उसमें अगर आपको किसी का सपोर्ट ना हो तो फिर और दिक्कतें पड़ जाती हैं। तो आपके साथ ये बहुत अच्छा रहा कि सभी लोग आपको बहुत
1: हाँ,
0: सपोर्टिव
1: सपोर्टिव
0: मिले,
1: रहे, मिल गए।
0: बहुत सारी बातें हुई आपसे, आपके अनुभव हमने शेयर किए। अब ये जरूर जानना चाहेंगे जाने से पहले कि आप हमारी बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ करें।
1: तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को जरूर आगे आना चाहिए, जिसको जिसमें रुचि है उन्हें आगे आके, और अब तो फैसिलिटीज इतनी हो गई है ना, ऑनलाइन भी कितना सब कुछ कर बैठे महिलाएं कर सकती हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो करना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए। हम तो उस जमाने में देखिए,
0: वही
1: तब
0: कि आप तो
1: तो
0: उस
1: कम
0: जमाने में जबकि
1: तो
0: औरतों को घर से निकलने के लिए भी सोचना
1: गम मतलब
0: पड़ता था,
1: निकलते
0: कम
1: थे, और
0: निकलते थे,
1: यहाँ
0: पढ़ाई
1: नजेबंद
0: पर ज्यादा
1: का।
0: ध्यान नहीं देते थे लड़कियों
1: लेकिन
0: की।
1: हाँ, वो मेरे घर में तो खैर बराबर का ध्यान दिया गया, जितना भाइयों पे मेरी मदर ध्यान देती थी उससे ज्यादा लड़कियों पर देती थी।
0: जी
1: तो एजुकेशन में भी हम लोग सही रहे, मतलब हमें इस तरह का वो नहीं मिला घर में कि नहीं करना है, पहले घर का काम करना है और पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं।
0: देखिए, एक महिला शिक्षित होगी तो दो परिवार
1: दो
0: शिक्षित होते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल,
0: और अगर
1: बच्चे भी
0: आप
1: उसके
0: शिक्षित हैं तो आप अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकती हैं, भले ही आप
1: बिल्कुल
0: करियर के उसमें ना जाएं, अगर आप जॉब भी ना करें तो कम से कम आप अपने बच्चों को तो एक बेहतर
1: नहीं,
0: नागरिक बना ही सकती हैं।
1: बेहतर नागरिक बना सकते हैं। और वैसे भी एक शिक्षित महिला का काम करने का तरीका
0: बिल्कुल
1: और सब चीजें वो थोड़ी सी डिफर हो जाती हैं, वो अच्छे ढंग से कर पाती है हर चीज को,
0: जी
1: हर चीज को, मतलब घर की साज सज्जा है, खाना बनाना है, और भी बहुत सारी बातें हैं। सब
0: बिल्कुल
1: चीजों
0: बिल्कुल
1: में एक उसकी रुचि होना खैर जरूरी है ही, लेकिन अगर उसकी रुचि नहीं भी है तब भी वो उसको अनपढ़ लोगों की अपेक्षा मेरे ख्याल में शायद ज्यादा अच्छा करती है।
0: बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। काम करने का तरीका अलग होता है पढ़ी लिखी महिलाओं का, और साथ में मेरे ख्याल से कि आत्मनिर्भर होना भी कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, आज के
1: आज के
0: जमाने में
1: टाइम में
0: तो मैं,
1: हाँ
0: हर महिला का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। देखिए,
1: बिल्कुल
0: आप जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आप ना तो खुद की कोई सहायता कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरों की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भर तो इस समय आज के टाइम में तो बहुत जरूरी है,
0: बहुत
1: और
0: जरूरी है।
1: बोल्ड होना भी बहुत जरूरी है। महिलाओं को बोल्ड होके आगे निकलना चाहिए कि अब जैसे मेरे अंदर ये म्यूजिक का हुनर था, मैं म्यूजिक में आगे बढ़ी, लेकिन हर महिला में कोई ना कोई हुनर होता ही है,
0: जी
1: ईश्वर उसको कुछ ना कुछ वरदान देता ही है। तो
0: बिल्कुल
1: आप उस हुनर को पहचानिए और उसमें आप आगे बढ़िए, उस काम को आप अच्छे से कर पाएंगी।
0: बिल्कुल
1: इसके गॉड गिफ्ट अगर आपके पास किसी भी चीज की है तो उसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी, और आपको करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में महिलाएं आगे बढ़ें, अपने रुचि जिसमें भी है उसको दिखाएं और उसको शो करें, मतलब पब्लिक में वो चीज जानी चाहिए। पढ़ी लिखी नहीं भी है और उनको मान लीजिए अचार डालना भी आता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: घर बैठे वो एक अपना एक
0: बिल्कुल, एक लघु
1: बॉन्ड,
0: उद्योग
1: एक
0: शुरू कर सकती
1: हाँ
0: हैं।
1: लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं, और आप परिवार की मदद कर पाएंगी, आपको पैसे से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।
0: बिल्कुल
1: पहले जमाने में क्या होता था, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, हर समय पैसे की वजह से उनको तंग किया जाता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो आज के टाइम में इस तरह का नहीं हो सकता, महिलाओं को अपना कैरियर बना के किसी भी फील्ड में,
0: किसी भी
1: अगर
0: फील्ड में
1: नहीं है पढ़ी लिखी तब भी वो अपना कैरियर बना सकती हैं किसी भी चीज में,
0: जी
1: है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: मुझे बहुत अच्छा आपका ये संदेश लगा कि जरूरी नहीं है कि हर महिला पढ़ी लिखी हो या हर महिला डॉक्टर बने, हर महिला इंजीनियर ही बने, है ना। आप बहुत ज्यादा
1: किसी भी
0: नहीं,
1: चीज
0: लेकिन
1: में
0: बेसिक एजुकेशन तो जरूरी है, खैर प्रारंभिक
1: प्राथमिक
0: शिक्षा है, हमें सबको लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिनको करके भी आप आगे कुछ ना कुछ
1: बिल्कुल
0: कर
1: बिल्कुल
0: सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: कर सकते
0: और
1: हैं।
0: दूसरी बात, अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आपको आजकल प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है
1: हाँ
0: ना।
1: प्लेटफॉर्म की
0: पहले
1: कोई कमी
0: जमाने में
1: नहीं
0: तो
1: है, सही
0: बल्कि मैं ये
1: बात है।
0: कहूंगी कि प्लेटफॉर्म उतने नहीं होते थे, है ना। आजकल तो आप देखिए कितना प्लेटफॉर्म है, कितनी हर
1: बहुत
0: चीज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है,
1: फैसिलिटीज
0: फैसिलिटी
1: बहुत बढ़
0: बहुत
1: गई है
0: है।
1: ना, फैसिलिटी भी बहुत बढ़ गई है।
0: तो आप अपने हुनर को पहचाने, अपनी रुचि को देखें और उसी फील्ड में आप आगे बढ़ें। तो गीता जी, आप हमारे साथ आई, इतनी सारी बातें की, अपने इतने सारे अनुभव हमसे शेयर किए, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: अभी हमने सुनी भूली बिसरी यादें, जिसमें गीता शर्मा से बातचीत कर रही थी भावना अरोड़ा। और बहनों, आइए इस बातचीत के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के बाद बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? अपनी प्रशंसा, सुझाव और शिकायतें आप हमें बता सकती हैं, आप हमें मैसेज कर सकती हैं। मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी मीनाक्षी को दे अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मीना बिष्ट के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। पहले सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये कुमाऊनी लोकगीत।

लोकधारा कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीना बिष्ट के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत और ये है आज के कार्यक्रम का अंतिम कुमाऊनी लोकगीत आवाज मीना बिष्ट।

0: conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for their mutual benefit. He was speaking at the fifth meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today. Mr. Doval said, world is witnessing conflicts and geopolitical uncertainties, and the countries are also facing multi-domain security threats amplified by rapid technological advancements. He underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Mr. Doval highlighted that BIMSTEC brings together the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean with a combined GDP of nearly $5 trillion.
1: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions to mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
0: Mr. Doval also highlighted the importance of stronger cooperation among BIMSTEC member countries to address emerging security challenges and promote regional development.
1: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions.
0: Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are not only secured, but also the most connected. He said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
2: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development.
0: The Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in Class 5 or 6 so that students can cope with it. A bench of Justices B.V. Nagaratna and R. Mahadevan orally asked the Centre not to introduce a third language in Class 9 level. The remarks were made during the hearing of the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court directive to facilitate the establishment of Jawahar Navodaya Vidyalayas in every district of the state. The Tamil Nadu government has consistently opposed the setting up of Jawahar Navodaya Vidyalayas over concerns with regard to the three-language policy curriculum followed by the schools. The Supreme Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the directions by invoking its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution while deciding a public interest litigation plea seeking a humane and uniform framework for the release of elderly and seriously ill prisoners. The Delhi High Court today directed authorities to monitor the health of activist Sonam Wangchuk on a daily basis, stressing that life is precious. Mr. Wangchuk is on an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi. A bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia asserted that Mr. Wangchuk's condition should be checked regularly by government doctors. Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for the centre as well as the Delhi government, submitted that life of every individual is precious and there was no objection to undertaking Wangchuk's regular medical checkup. The Enforcement Directorate today conducted search operations at 13 premises in connection with a case relating to an alleged terror funding and illegal infiltration network. The case originates from an FIR registered by the Uttar Pradesh ATS against organized syndicate allegedly involved in facilitating illegal infiltration of Rohingya and Bangladeshi nationals into India, arranging forged Indian identity documents and aiding their rehabilitation in various parts of the country. The initial investigation further indicated that cash withdrawals and multiple small-value fund transfers were utilized to transfer funds to suspected beneficiaries. The central government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel, ATF, as part of its latest fortnightly review of fuel export taxes. Under the revised rates, the export duty on diesel has been increased to ₹15.50 per litre, while the duty on ATF exports has been raised to ₹14.50 per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been reduced to ₹2.50 per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from today. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said a thriving bioeconomy will strengthen the country's health and food security, boost vaccine development, create high-skilled jobs and promote the Vocal for Local initiative. Addressing the launch of the roadmap titled Building India as a Leading Bioeconomy Powerhouse by 2035 in New Delhi, Dr. Singh said the 21st century belongs to biotechnology.
3: If the 20th century was IT century, 21st century would be BT century. This transition from IT to BT is going to be very fascinating. And the global market already stands at about 1.4 to 1.8 trillion US dollars at the same level. And we are among the very few countries who have come out with a dedicated biotechnology policy called BioE3.
0: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to promote integrated farming practices among farmers to ensure sustainable agricultural growth. Addressing the 98th Foundation Day of the Indian Council of Agricultural Research in New Delhi, the minister said farmers and scientists' collective hard work is creating extraordinary results. He highlighted that during the past year, 386 new crop varieties covering 44 crops and 117 horticulture varieties have been developed. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab tomorrow. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind's railway station in Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. Mr. Modi will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. More from our correspondent.
4: The launch of first hydrogen-powered train marks a significant milestone in the country's transition towards clean and sustainable mobility in the railway sector. India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger train developed so far. It is powered by a 3,200-horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train will operate at a maximum speed of 75 km per hour on Jind-Sonipat section. The use of green hydrogen also reduces dependence on electricity generated from fossil fuel-based thermopower plants, supporting India's transition to sustainable transport. With its introduction, India will join the select group of countries such as Germany, Japan, China and the United States that are exploring the use of hydrogen for cleaner rail transportation. With Deependra Kumar, this is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
0: Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said BRICS countries will sign a Memorandum of Understanding in Bengaluru to collaborate in the area of standardization. He was speaking to media after addressing a meeting of heads of BRICS national standardization bodies. The minister said this will promote the information sharing, exchange of best practices, technical collaboration, and capacity building among the BRICS member countries.
5: One of the most significant outcomes we expect from this meeting is the finalization and signing of the BRICS MOUs on cooperation in the field of standardization. From last many years, this finalization of MOU was pending. This MOU will mutually benefit a win-win situation. Now we have finalized the MOU with all BRIC countries and today it will be signed.
0: This is the fifth BRICS Heads of National Standardization Bodies meeting being held in Bengaluru under the India chair. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defense, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held in Brussels yesterday, marking a significant step towards strengthening bilateral relations. The United States has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5, Han Yue of China, in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. P.V. Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. P.V. Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
7: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
6: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
7: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% of the world population.
6: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
8: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
6: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
8: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
6: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
9: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
10: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
6: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब ₹15.50 प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर ₹2.50 प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
11: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
6: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। तो श्रोताओं, आज के इस अंक में आपको मेरा यानी मनोज वर्मा का प्यार भरा नमस्कार, साथ ही सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार में, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे हिंदी फिल्मों के सबसे मौलिक और जटिल धुनों पर काम करने वाले संगीतकारों में से एक माने जाने वाले संगीतकार सज्जाद हुसैन साहब की, जिन्हें बेहतरीन शास्त्रीय समझ और मैंडोलिन वादन के लिए भी अमर माना गया है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि महान संगीतकार सज्जाद हुसैन का जन्म 15 जून 1917 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। आपको बचपन से ही भारतीय संगीत के अलावा अरबी और सूफी संगीत में काफी लगाव था। श्रोताओं, महान संगीतकार अनिल बिस्वास कहा करते थे कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सज्जाद हुसैन अकेले एक ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनका संगीत पूरी तरह से प्योर था, यानी संगीत में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं थी, जबकि बाकी के साथ ऐसा नहीं था। श्रोताओं, सन 1937 में वे कुंदनलाल सहगल से प्रेरित होकर मुंबई चले गए और वहां उन्होंने कुछ संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। सन 1944 में उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत फिल्म दोस्त से की। इस फिल्म के निर्देशक थे शौकत हुसैन। इस फिल्म के सभी गीत बेहद लोकप्रिय हुए और एक गीत हम भी आपको इस फिल्म का सुनवाएंगे नूर जहां की आवाज में। तो सुनिएगा ये गीत।

0: समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। तो श्रोताओं, आज के इस अंक में आपको मेरा यानी मनोज वर्मा का प्यार भरा नमस्कार, साथ ही सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार में, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे हिंदी फिल्मों के सबसे मौलिक और जटिल धुनों पर काम करने वाले संगीतकारों में से एक माने जाने वाले संगीतकार सज्जाद हुसैन साहब की, जिन्हें बेहतरीन शास्त्रीय समझ और मैंडोलिन वादन के लिए भी अमर माना गया है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि महान संगीतकार सज्जाद हुसैन का जन्म 15 जून 1917 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। आपको बचपन से ही भारतीय संगीत के अलावा अरबी और सूफी संगीत में काफी लगाव था। श्रोताओं, महान संगीतकार अनिल बिस्वास कहा करते थे कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सज्जाद हुसैन अकेले एक ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनका संगीत पूरी तरह से प्योर था, यानी संगीत में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं थी, जबकि बाकी के साथ ऐसा नहीं था। श्रोताओं, सन 1937 में वे कुंदनलाल सहगल से प्रेरित होकर मुंबई चले गए और वहां उन्होंने कुछ संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। सन 1944 में उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत फिल्म दोस्त से की। इस फिल्म के निर्देशक थे शौकत हुसैन। इस फिल्म के सभी गीत बेहद लोकप्रिय हुए और एक गीत हम भी आपको इस फिल्म का सुनवाएंगे नूर जहां की आवाज में। तो सुनिएगा ये गीत।

0: नसीम और रत्नाबाई की आवाज़ में ये गीत आपने सुना धर्म फिल्म से, जो 1945 में बनी थी और इसके संगीतकार थे सज्जाद हुसैन। एक संदेश आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, सन 1945 के बाद 46 में भी उन्होंने सन 1857 फिल्म में संगीत दिया। उसके बाद सन 1950 में सज्जाद ने खेल फिल्म में भी संगीत दिया। लता मंगेशकर के साथ ये उनकी पहली फिल्म थी। इसके गीत भी शांत गीतों की श्रेणी में आते थे। श्रोताओं, सन 1951 में सज्जाद हुसैन साहब ने एक और फिल्म सैया में गीतों को संगीत से सजा दिया। इस फिल्म के गीत भावपूर्ण और मधुर माने गए हैं। सन 1951 में ही बनी फिल्म हलचल के कुछ गीतों को भी सज्जाद हुसैन साहब ने संगीतकार मोहम्मद शफी के साथ संगीतबद्ध किया। तो हलचल फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, सन 1952 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था संग दिल। इस फिल्म के एक गीत को कहा जाता है कि तलत महमूद साहब ने 17 बार के बाद पूरा किया था, और ये गीत सज्जाद साहब की अप्रतिम रचना है। 17 बार रिटेक के बाद भी सज्जाद हुसैन इस गीत से संतुष्ट नहीं थे। इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि वे अपने काम में परफेक्शन को लेकर कितने जुनूनी थे। तो संग दिल फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

एक ही संगीतकार कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आज हम आपसे बात कर रहे हैं संगीतकार सज्जाद हुसैन की। श्रोताओं, सन 1955 में फिल्म रुखसाना का एक गीत जिसे लता जी ने गाया था, सज्जाद साहब की दिल को छू लेने वाली संगीत रचना है। श्रोताओं, सज्जाद साहब का संगीत कई तरह से अलग और विशेष माना गया है। श्रोताओं, कहा जाता है कि मैंडोलिन और सज्जाद एक दूसरे के पर्याय हैं। मैंडोलिन के अलावा सज्जाद को सितार, तबला, एकॉर्डियन, गिटार, क्लेरिनेट, वायलिन, पियानो, बेंजो सहित लगभग 20 से ज्यादा साज बनाने में महारत हासिल थी। वे अपने ऑर्केस्ट्रा का संचालन भी खुद ही किया करते थे। सुनवाते हैं आपको रुखसाना फिल्म का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में।

श्रोता हूं। सज्जाद हुसैन साहब की अंतिम फिल्म रुस्तम सोहराब थी जो 1963 में बनी थी, और हम आपको बता दें इस फिल्म के गीत और संगीत में अरेबियन संगीत का असर था, और यह असर पैदा किया था संगीत के धनी सज्जाद हुसैन ने। फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत हैं, और हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी ने इस बात को खुद कहा था कि मैं सज्जाद साहब की संगदिल के गीतों को अपने करियर में बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती हूँ। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा म्यूजिक जो सज्जाद हुसैन बनाते थे और किसी ने बनाया ही नहीं। सज्जाद हुसैन ने अपने करियर में कठिन गीतों को संगीत दिया है। ए दिलरुबा नजरे मिला लगभग ऑफ बीट संगीत का सुंदरतम उदाहरण है। आपको सुनवाते हैं रुस्तम सोहराब फिल्म का ये गीत जिसे खुद लता मंगेशकर ने गाया।

तो ये संगीतबद्ध की गई रचना थी फिल्म रुस्तम सोहराब से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, और खूबसूरत गीतों को संगीतबद्ध करने वाले इस संगीतकार यानी सज्जाद हुसैन साहब का निधन 21 जुलाई सन 1995 को हुआ। आने वाली 21 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है, उनको सादर नमन और श्रद्धांजलि। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यानी एक ही संगीत का जो केंद्रित था संगीतकार सज्जाद हुसैन पर, संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर 3 बज रहे हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। अपनी अगली प्रसारण सभा में अपराह्न 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 4 बजने को है, अब हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, नमस्कार, सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी बल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से, रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान है, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई, दो बहनें हैं और मेरी पत्नी, दो बच्चे।
0: वाह, क्या बात है। सच में आपका जीवन बहुत ज्यादा सरल है, पर यही कहूंगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म है वो सर्वोपरि है, और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूंगा, मेरे गांव में पुराने समय से ही काफी फौजी हैं। छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं। पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं मैम।
0: वाह, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम, बिल्कुल। ये जो मेरे को प्रेरणा

0: मेरे जो ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करूं।
1: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे, और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
0: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
1: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा
0: जी
1: होता था आपके साथ?
0: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियाँ सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
1: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
0: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
1: जी तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
0: जी मैम,
1: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
0: मैं जैसे किस्से कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पे जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
1: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके
0: जी
1: बाबा
0: जी
1: सब फौज में रहे, लेकिन
0: जी
1: आप चार भाई बहन, इनमें से कोई फौज में नहीं
0: जी
1: था। पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है। वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
0: जी
1: तो वो वहां मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति।
0: जी
1: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहां अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
0: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के हैं, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
1: वाह क्या
0: मेरे को
1: बात
0: देश
1: है,
0: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊंगा।
1: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, से खास बात यही है।
0: जी
1: जिस तरह से बेटियों को जो ब्याह जाता है, कहा जाता है कि जो जहां तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
0: जी
1: वापस लौट कर मत आना,
0: जी
1: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
0: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
1: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो ये जो 20 समय 20

0: सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको?
1: मैम बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर बहुत यादें जुड़ी रहती हैं और काफी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूंगा, मेरी यादें काफी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
0: वाह क्या बात है, निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना?
1: जी मैम,
0: और हमेशा जहन में ये चलता रहता हूँ कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सहस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

आप सभी का पुनः स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का जरूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है, क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना। और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने

0: मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम।
0: जी आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई, उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डीजी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम में रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया, 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे और कितना समय निकाल पाते?
1: मैम मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था, तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया, कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफर यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे जरूर जो आपके साथी होंगे और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं, बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में यानी कि सहस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले वो साथी, वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज जो खुद सेनाओं में है, कुछ खुद फौज में है, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम ज्यादातर जो है हमारे गाँव में से काफी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना

0: कि जो आज खुद सेनाओं में है, कुछ खुद फौज में है, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम, ज्यादातर जो है हमारे गांव में से काफी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना

करते हैं तो आप विजयी तो वही हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम, सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है जी।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना

0: कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत से कहानियां इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसके बाद आपकी चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपनी SSB को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का, और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पे थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो है 4-5 जो जिले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित साहा DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं
0: जी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था? उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ, कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो IG जो IPS IG संजय सर थे वो, और अपने जो है DIG सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर 2IC, नरपत सर DC, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का CHM बना दिया जाए।
0: वाह।
1: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं CHM था, एक नंबर टीम का CHM वो था।
0: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ, किसी के साथ साझा किया था उसमें?
1: नहीं मैम, ये साझा तो
0: नहीं किया जाता ऑपरेशंस के दौरान,
1: मगर जो है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल है। जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो, एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं, भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
0: बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं
1: जी, जिसमें कि मैम जो है IG जो संजय सर और DIG सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना सात सात दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी चीजें मैं बता भी नहीं पाऊंगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अंदरूनी बातें हैं। और जब हम कहते हैं जब आपकी फोर्स की बात होती है तो बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी माओवेस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी DG मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
0: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने

0: वाह क्या बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति
1: जी,
0: उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। और ये सच्चे देश प्रेम की गाथा है, शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सहस्त्र सीमा बल में रहकर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
1: जी,
0: है ना,
1: मैं।
0: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
1: जी जी।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को, कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे बताते होंगे तो जरूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए कहते हैं ना कि मजबूत एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन से ऐसी ट्रेनिंग थी जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSB में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही जब तक उम्र है, आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफर यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार सबसे पहले की सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
0: बहुत खूब बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप तो उनसे क्या कहा आपने, क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं, कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया, कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
1: मेरे को मैम समझाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफी डिफेंस में है, उनको पहले से पता था, पर फिर भी जो है एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
0: अच्छा ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली, अब बच्चों पर जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
0: वाह क्या बात है, और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे, और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो जरूर प्रेरणा प्राप्त करें।
1: बिल्कुल मैम,
0: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं, और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेम्बो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो, तो ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
0: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है, इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, संदेश हमारे पास आए हैं। यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भागिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रही, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं जय हिंद सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं, FM रेनबो को हार्दिक बधाइयां यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें, और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल बवाने का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोधका द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम जरूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है
0: जी,
1: और मैं यही कहना चाहूँगा सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं
0: जी। एक और संदेश हमारे पास आया है CT दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम, तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें, और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, प्रसन्न हूं संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सशस्त्र सीमा बल जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंट्री से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना, और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हो करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागेंद्र जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागेंद्र सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM बेनबुक के स्टूडियोज में आने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफी चाहूंगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। सीटी जीडी राजेंद्र सिंह जी 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भागेंद्र सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए जानकारी लाते हैं। हमारे देश की सरकार द्वारा विभिन्न वर्ग के नागरिकों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, उन सब के बारे में, क्योंकि जो भी हमारी सरकार अभियान चलाती है वो निश्चित तौर पर जब तक उसकी जानकारी हमारे देशवासियों को नहीं होगी तो वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अपने साथियों को जागरूक करने के लिए हम ये जानकारियां देते हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे शिशु सुरक्षा को मजबूत करती योजनाओं के विषय में। और इसी क्रम में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान की। साथियों, किसी भी देश में शिशुओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। स्वस्थ शिशु ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसी उद्देश्य से शिशु सुरक्षा को मजबूती देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। आइए बात करते हैं इसी योजना की जानकारी के विषय में। साथियों, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण स्वस्थ नागरिकों से होता है और स्वस्थ नागरिकों की नींव बचपन में ही रखी जाती है। बच्चों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाना है जो किसी कारणवश नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं या फिर जिनका टीकाकरण अधूरा है। इस अभियान का नाम साथियों मिशन इंद्रधनुष है, जो 7 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाले टीकों का प्रतीक है। समय के साथ इसमें नए टीकों को भी शामिल किया गया है जिससे यह अभियान और अधिक प्रभावी बन गया है। मिशन इंद्रधनुष अभियान के उद्देश्य हैं सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीके उपलब्ध कराना, दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत बनाना, टीकाकरण से वंचित बच्चों की पहचान कर उन्हें टीके लगाना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और टीकाकरण के प्रति समाज में जागरूकता को बढ़ाना। श्रोताओं, मिशन इंद्रधनुष का प्रमुख लक्ष्य था कि प्रत्येक वर्ष पूर्ण टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हो और सभी बच्चों तक जीवन रक्षक टीके पहुंच सके। यह अभियान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित रहा जहां टीकाकरण का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को BCG यानी क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, खसरा रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस और विटामिन ए की खुराक दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं ताकि मां और नवजात शिशु दोनों ही सुरक्षित रहें। मिशन इंद्रधनुष का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी और स्थानीय प्रशासन मिलकर कार्य करते हैं। श्रोताओं, इस तरह ये थी थोड़ी सी जानकारी मिशन इंद्रधनुष अभियान की। और अब आइए बात करते हैं किलकारी मोबाइल ऐप के विषय में। किलकारी ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल
स्तनपान, टीकाकरण, पोषण और परिवार नियोजन से संबंधित सही और समय पर जानकारी उपलब्ध कराना है। यह सेवा 15 जनवरी 2016 को डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत शुरू की गई थी। श्रोताओं, इस सेवा का नाम किलकारी ऐप क्यों है, कभी सोचा है आपने? देखिए, किलकारी का अर्थ होता है शिशु की मधुर आवाज या हंसी, और इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ जीवन की खुशहाल शुरुआत दिलाना है। यही कारण है कि इस ऐप का नाम किलकारी ऐप रखा गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की जानकारी देना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, समय पर टीकाकरण के प्रति जागरूक करना, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान को बढ़ावा देना, संतुलित पोषण और स्वच्छता की जानकारी देना, परिवार नियोजन और नवजात की उचित देखभाल के बारे में मार्गदर्शन देना। इस सेवा का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला का पंजीकरण RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल पर किया जाता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर IVR यानी इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स के माध्यम से ऑडियो संदेश भेजे जाते हैं। संदेश गर्भावस्था की अवस्था और बच्चे की आयु के अनुसार ही भेजे जाते हैं। यह सेवा निशुल्क है और संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से शुरू होकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक जारी रहते हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए RCH पोर्टल पर पंजीकृत गर्भवती महिलाएं एक वर्ष तक के बच्चे की मां और पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर उपलब्ध होना आवश्यक है। किलकारी सेवा ऐप का विस्तार समय के साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह कार्यक्रम अब 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जा रहा है और लाखों माताओं तक नियमित स्वास्थ्य संदेश पहुंचाता है। किलकारी मोबाइल ऐप भारत सरकार की एक प्रभावी डिजिटल स्वास्थ्य पहल है, जिसने मोबाइल फोन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और माताओं तक विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रोताओं, सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध होने से सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु और जागरूक परिवार के निर्माण में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथियों, अब कार्यक्रम के अंत में बात कर लेते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, और वो है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड। जी हाँ, माँ और शिशु किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर होते हैं। स्वस्थ माँ से ही स्वस्थ शिशु का जन्म होता है और स्वस्थ शिशु ही भविष्य में एक सशक्त समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करता है। गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक नियमित स्वास्थ्य देखभाल अत्यंत आवश्यक होती है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की शुरुआत की गई। यह कार्ड गर्भवती महिला और नवजात शिशु के स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक जानकारियों को एक स्थान पर सुरक्षित रखने वाला दस्तावेज है। यह केवल एक रिकॉर्ड बुक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, टीकाकरण और समय समय पर आवश्यक जांचों का मार्गदर्शक भी है। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM इस कार्ड के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों की नियमित निगरानी करती हैं। श्रोताओं, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड एक सरकारी स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान माँ की स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप, वजन, हीमोग्लोबिन, टीकाकरण, प्रसव की जानकारी और जन्म के बाद बच्चे के टीकाकरण, वजन, लंबाई, पोषण एवं विकास संबंधी सभी विवरण दर्ज किए जाते हैं। यह कार्ड गर्भावस्था के शुरुआती चरण में ही गर्भवती महिला को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक उपयोग में लाया जाता है।
यदि प्रत्येक गर्भवती महिला समय पर अपना मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड बनवाए, नियमित स्वास्थ्य जांच कराए और उसमें दर्ज सभी निर्देशों का पालन करे, तो निश्चित तौर पर भारत एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रत्येक परिवार का यह कर्तव्य है कि वह इस कार्ड का पूरा लाभ उठाए और माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इस सेवा के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, कुपोषण रोकने, पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। श्रोताओं, इसके साथ ही मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रसारित कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी आज रात 8:00 बजे। अब से कुछ ही देर में 5:15 पर प्रसारित किया जाएगा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज क्रम है कहानी के उस पार, गन्ना बंधाई का महत्व। इस विषय पर डॉक्टर संदीप चौधरी से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पशुओं के लिए संतुलित आहार और दूसरा विषय है ट्रैप कीट नियंत्रण। विविध कार्यक्रम में 6:45 पर गीता शर्मा की वार्ता का विषय होगा डिजिटल दौर में पुस्तकालय का बदलता स्वरूप। सुगम संगीत में 7:32 पर आप सुनेंगे नुसरत अली और साथियों के स्वर में कव्वाली। रात 10:00 बजे प्रसारित करेंगे हिंदी नाटक एक और सावित्री, लेखक हैं चिरंजीत और निर्देशक सुदर्शन कुमार। और फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8:15 पर कार्यक्रम गीत संध्या होगा। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे रात 8:45 पर। और श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश पेश किया जाएगा रात 10:30 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की।

और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद श्रोता सुनेंगे कल रात 9:30 बजे। भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा, ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर। वार्ताकार हैं आशीष भारती। गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान, किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मौन वंशों की देखभाल। प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा खुश रहिए स्वस्थ रहिए। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर चर्चा का विषय होगा वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7:32 पर। अनीता द्विवेदी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:25 पर कार्यक्रम धरती गाती है में। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारी केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। और मैं आपकी अपनी दोस्त और वन ऑफ द होस्ट वाणी कौशिक प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ।
1: और दोस्तों, वाणी के साथ स्टूडियो में प्रेजेंट हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट अलीना। और दोस्तों, आपकी शाम को और नायाब बनाने आ गई हूँ।
0: अलीना, तुम तो हमारे लिसनर्स की शाम को नायाब बनाने आ ही गई हो, लेकिन उसके साथ अगर म्यूजिक का तड़का लग जाए तो बात ही बन जाए ना।
1: वानी, रुको, जरा सबर करो, हमने उसका भी आज का अच्छा इंतजाम किया है।
0: तो दोस्तों, अलीना की बातों से आप समझ ही गए होंगे, आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन हमारा एक बहुत स्पेशल सेगमेंट होता है,
1: और वो है नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, जिसमें हम अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं कुछ बहुत ही स्पेशल एल्बम सॉन्ग्स
0: जो शाम से लेकर रात तक आपकी जुबान पे घर कर लेंगे। तो अलीना, जब सेगमेंट शामिल करने का सिलसिला चल ही रहा है, तो प्रोग्राम में अब सबसे पुश्तैनी सेगमेंट भी शामिल कर लिया जाए।
1: पुश्तैनी से दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि वाणी कौन से सेगमेंट की बात कर रही है।
0: तो अलीना, बता भी दो।
1: तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुझो तो जाने की, जिसके अंतर्गत हम अपने लिसनर से यानी कि आपसे करते हैं एक सवाल।
0: और दोस्तों, आज का सवाल है, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है?
1: और दोस्तों, सवाल का सही जवाब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सवाल का सही जवाब आपको करना देना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
0: तो चलो अलीना, प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं नॉन फिल्मी चार्टबस्टर का पहला गीत। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए शाम का पहला नगमा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
6: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
5: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
7: और डोज में क्या है?
6: डोज में है मजा।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
7: अच्छा सुनते हो?
8: हाँ सुनाओ।
7: ये बताओ, मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ?
8: बहुत अच्छी लगती हो।
7: ये बहुत अच्छी लगती हो क्या होता है? सही से बताओ कितनी अच्छी लगती हूँ?
8: इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊँ।
7: अच्छा
5: जी हाँ, मजा आ गया।
7: तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की छोटी सी मदद की है, या फिर कभी किसी ने आपकी ऐसी मदद की हो जिसे आप आज तक नहीं भूले?
9: दोस्तों, कई बार किसी की एक छोटी सी बात, किसी की एक एडवाइस या किसी का एक छोटा सा साथ आपकी सोच को पूरी तरह बदल देता है।
7: और वानी, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत सारे पैसे या बड़ा नाम होना जरूरी नहीं है, बस अच्छा दिल और सही इरादा होना चाहिए।
9: तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो चेंज का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद में चेंज स्टार्ट कर देते हैं।
7: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने कुछ खास आज सेगमेंट के अंतर्गत चेंज मेकर के बारे में, यानी कि ऐसे लोग जो अपने काम और सोच से दूसरों की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाते हैं।
9: तो अब सवाल आता है कि चेंज मेकर होते कौन है?
7: वानी, तुम कहो तो, या हमारे दोस्तों का भी थोड़ा मन कर रहा होगा, जैसे हम चेंज की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बदलाव हम भी कर लेते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं।
9: हाँ हाँ लीना, मैं समझ गई हूँ तुम कौन से ब्रेक की बात कर रही हो।
7: तो दोस्तों चलिए, अपने नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर का आपको दूसरा सॉन्ग हम सुनवा देते हैं।
10: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वही हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तो चलो वानी, अब इस चेंज के बाद अब दोबारा से जो हमने सवाल किया था कि दोस्तों को हम बताने वाले थे कि आखिर चेंज मेकर होती कौन है, तो दोस्तों चेंज मेकर वो होता है जो किसी प्रॉब्लम को देखकर सिर्फ कंप्लेन नहीं करता बल्कि उसे बदलने की कोशिश भी करता है।
1: जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो आप उसकी रोज थोड़ी सी पढ़ाई में मदद करके उसके लिए एक चेंज मेकर बन सकते हैं।
0: मतलब कि चेंज मेकर बनने के लिए कोई बड़ी पोजीशन या बड़ी पहचान नहीं चाहिए दोस्तों।
1: बिल्कुल, अच्छी सोच और दूसरों के लिए कुछ करने की चाहत ही काफी है।
0: अक्सर लोग वानी सोचते हैं कि बदलाव गवर्नमेंट या बड़े लोग लाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ा चेंज एक छोटे कदम से शुरू होता है।
1: अगर हम कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने घर से ही स्टार्टिंग करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ खास है आज में, बस इतना ही।
0: इसी के साथ हम सुन लेते हैं नॉन फिल्मी चार्टबस्टर का ये अगला खूबसूरत सा सॉन्ग।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशन

0: करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपको कहानियां सुनवाते हैं कहानी के उस पार सेगमेंट के अंतर्गत। तो आज है हमारे कहानी का एपिसोड 4th, उसने कहा था। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए ये कहानी का एपिसोड 4th।
2: दोस्तों, तीसरे भाग में आपने सुना लहना सिंह की समझदारी, त्याग और अपने साथियों के प्रति जिम्मेदारी। अब हम आपको सुनाते हैं कहानी का चौथा भाग। चौथे भाग में लहना सिंह को पूरा विश्वास हो जाता है कि लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आया हुआ आदमी असली अधिकारी नहीं है, बल्कि एक जर्मन सैनिक है। वो तुरंत अपने साथी वजीरा सिंह को सारी बात बताता है और उसे आदेश देता है कि जल्दी से सूबेदार हजारा सिंह के पास जाकर उन्हें वापस बुला लाए। लहना सिंह समझ जाता है कि दुश्मन ने उन्हें धोखा दिया है। अगर सूबेदार अपने सैनिक के साथ आगे बढ़ गए तो वे दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। वजीरा सिंह तुरंत अंधेरे में सूबेदार को खबर देने चला जाता है। इधर लहना सिंह अकेले खाई में रहकर नकली लप्टन साहब पर नजर रखता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि जर्मन सैनिक अपनी जेब से 3 बम निकालता है और उन्हें खाई की दीवार में छिपाकर तार से जोड़ देता है। फिर वह दिया स्लाई जलाकर उन बमों में आग लगाने की कोशिश करता है। उसी समय लहना सिंह बिजली की तरह उस पर टूट पड़ता है। वो अपनी बंदूक से उसके हाथ पर जोर से वार करता है, जिससे दिया स्लाई नीचे गिर जाती है। फिर वो दूसरा वार उसकी गर्दन पर करता है और वो जर्मन सैनिक बेहोश होकर गिर पड़ता है। लहना सिंह तुरंत बम निकाल कर खाई के बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो उसकी जेब की तलाशी लेकर कुछ कागज पत्र और एक डायरी अपने पास रख लेता है। जब जर्मन सैनिक को होश आता है, लहना सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सके। वो बताता है कि तुम्हारी साफ उर्दू, सिगरेट देना और शिकार की गलत बातें सुनकर मैं समझ गया था कि तुम असली लप्टन साहब नहीं हो। इतने में जर्मन सैनिक अपनी जेब में छिपी हुई पिस्तौल निकाल कर लहना सिंह पर गोली चला देता है। गोली ही उसकी जांग में लगती है, लेकिन लहना सिंह भी तुरंत अपनी बंदूक से 2 गोलियां चलाकर उस जर्मन सैनिक को मार देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर बाकी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। लहना सिंह उन्हें पूरी घटना बता देता है। फिर वो अपनी पगड़ी फाड़ कर अपने जांघ के घाव पर पट्टी बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। कुछ ही देर बाद 70 जर्मन सैनिक खाई पर हमला कर देते हैं। लहना सिंह और उसके केवल 8 साथी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। वे लगातार गोलियां चलाते हैं और कई जर्मन सैनिकों को मार गिराते हैं, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण स्थिति कठिन हो जाती है। उसी समय वजीरा सिंह सूबेदार हजारा सिंह को वापस लेकर आ जाता है। अब जर्मन सैनिक दोनों तरफ से घिर जाते हैं। सामने से लहना सिंह और उसके साथ ही हमला करते हैं और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के सैनिक गोलियां चलाते हैं। दोनों तरफ से हुए इस हमले में जर्मन सैनिक हार जाते हैं। 63 जर्मन सैनिक मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। इस लड़ाई में कई सिख सैनिक भी शहीद हो जाते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के कंधे में गोली लगती है। लहना सिंह की पसली में भी एक गोली लगती है, लेकिन वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता। वो घाव पर मिट्टी लगाकर कपड़े से बांध लेता है ताकि कोई उसकी गंभीर चोट न जान सके। कुछ देर बाद डॉक्टर और घायलों को ले जाने वाली गाड़ियां पहुंचती हैं। तभी घायल सैनिकों को अस्पताल भेजा जाता है। सूबेदार लहना सिंह को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो पहले बोधा सिंह और सूबेदार को सुरक्षित भेजता है। विदा लेते समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि घर जाकर सूबेदारनी को मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि उन्होंने जो काम मुझे सौंपा था मैंने उसे पूरा कर दिया। ये कहकर वो वहीं लेट जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द की चिंता किए बिना अपने साथियों की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देता है। दोस्तों, इस भाग में लहना सिंह की बहादुरी, सूझबूझ, त्याग और कर्तव्य निष्ठा, अपने साथियों के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। और आगे कहानी में क्या होता है आप सुनिएगा अगले भाग में।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे भगवान, सुनती हो, जरा इधर आओ।
2: अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो?
3: ये कैसी सब्जी बनाई है?
2: जैसी दिख रही है वैसी बनाई है।
3: पनीर की सब्जी में पनीर ही नहीं दिख रहा मुझे।
2: ऐसा है, चुपचाप से खा लो। ये बताओ, कश्मीरी पुलाव में कभी कश्मीर नजर आता है क्या?
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में भूजो तो जाने के अंतर्गत हमने, मतलब मैंने और एलिना ने आपसे किया था एक सवाल, और आज का हमारा सवाल था भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, जिसका सही जवाब क्या है एलिना?
2: तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। तो चलिए अब जान लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि है सुदर्शन शाह, नरेन नेतम, धर्मेंद्र छीपा, ताज अंसारी, जॉन डी कैस्ट्रो, पुनाजी नावकर, मोहम्मद रफीक पंवार, दिनेश वर्मा, लाडला जी, भागवत चौबे, नानक खन्ना, गंगा सिंह रावत, अनिल विनोचा, राम कुमार रेवड़, जाकिर मंसूरी, विथल सुरोशे, निसार सलमानी, और हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजकुमार डूडी, बबलेश पंवार, नदीम बाकी, महाराज कीर्तनपुरी, नजमुल होड़ा, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद दान सिद्दीकी, सत्येंद्र चंसौलिया, मिसबा शमसी, अरविंद कुमार, संजय ढिंगिया, बब्बल मल्होत्रा, फागुराम यादव, शाहरुन नूर अंसारी, आफ्ताब अंसारी, प्रवीण चौहान, नवी हसन अब्बासी, बी आई धाकड़, धीरज भाई रबाड़ी, सुरेश गगनेजा, लाल मोहम्मद अंसारी, दुगाराम साहू, नजमुल होड़ा, मुकेश कश्यप, मोहम्मद हसन पवार, अनोखे लाल जी। तो दोस्तों, चलिए अब जो जान लेते हैं, हमने तो ये गाना सुना, अब सुन लेते हैं प्रोग्राम का एक और खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युवावाणी अनुभाव द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आपसे इजाजत लें, आपको छोड़ चलते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। संध्या के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं और अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? खैर देखो भैया, हाल चाल तो हमारे किसान भाई के बढ़िया ही होंगे, और भैया जो हमारे किसान भाई की खेती बाड़ी हो वो भी ठीक ठाक चल रही होगी, और जो भैया हमारे किसान भाई ने पशु पाल रखे हैं उनका भी ध्यान जो अच्छे से रख रहे होंगे, उन भैया देखो समय पर चारा पानी दे रहे होंगे। देखो भैया, देखो बरसात का समय चल रहा, पर भैया बरसात में गर्मी अभी बहुत हो रही, ऐसा भैया भैया हमें एक बात का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान हमें जरूर रखना, और भैया साथ साथ अपने पशुओं का भी ध्यान हमें रखना जरूरी है, क्योंकि देखो इस समय मच्छर मक्खी ज़्यादा लगते हैं, तो भैया अपने पशुओं को इनसे बचाना है, और भैया देखो हो सके तो जो हमारे पशुओं की पशुशाला है उसमें पंखे की व्यवस्था भी हमारे किसान भाई को करनी चाहिए, और साथ साथ भैया हमें अपनी पशुशाला की साफ सफाई भी करनी है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और भैया देखो बातचीत तो हम तुमसे बहुत सारी करेंगे, और भैया मनोरंजन भी थारा जरूर करवाएंगे, और भैया देखो रही बात खेती बाड़ी की, तो भैया खेती बाड़ी की बातचीत भी करेंगे। किसान भाई देखो इस टाइम जुलाई का महीना चल रहा है, और जुलाई का महीना खरीफ फसलों की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस महीने में देखो अधिकांश क्षेत्रों में भैया अच्छी वर्षा होने लगती है, जिससे भैया खेतों में पर्याप्त नमी बनी रहती है, और भैया फसलों की बुआई और रोपाई का काम तेजी से किया जाता है। अगर हमारे किसान भाई ने जो हमारे किसान भाई हैं वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं, तो भैया उन्हें अधिक उत्पादन भी मिलता है, और किसान भाइयों को लाभ भी मिलता है। और देखो इस समय की बात करें तो भैया धान की खेती में यो जो समय है धान की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया जुलाई के महीने में हमारे जो किसान भाई हैं वो धान की रोपाई करते हैं, और भैया जिन क्षेत्रों में भैया अच्छी बारिश हो गई हो और पानी की सुविधा उपलब्ध हो भैया वो इस समय धान की रोपाई कर सकते हैं, जिनके भैया नर्सरी तैयार हो गई है तो भैया वो अपने खेतों में रोपाई कर सकते हैं। और भैया रोपाई से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना, एक तो भैया अपने खेतों में खाद डालकर अच्छी तरह से जुताई करनी है, फिर भैया पानी भरकर रोपाई करनी है, और अच्छे तरह से पाटा भी लगाना है उसमें। और भैया इस महीने में देखो किसान भाइयों को बहुत सारे काम होते हैं, देखो भैया हमारे किसान भाई भैया मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, भैया अरहर, मूंग, उड़द की बुआई भी कर सकते हैं, और भैया बुआई के लिए हमारे किसान भाइयों को बीज उपचारित करना जरूरी है। भैया बीज उपचारित हमारे किसान भाई करते हैं तो भैया उससे कोई भी फफूंदजनक बीमारी जो होती है वो नहीं लगती है, और भैया बीज उपचार करने के बाद हमारे किसान भाई को उसकी बुआई करनी है। और भैया देखो इस महीने में खरपतवार भी तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए भैया समय समय पर निराई गुड़ाई भी करना आवश्यक है। और भैया साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना भैया, हम संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना भी इस समय जरूरी है, और भैया मिट्टी की जांच के आधार पर अगर हमारे किसान भाई खेतों में उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो भैया लाभ मिलेगा। और भैया देखो एक बात और है, ये समय भैया अधिक बारिश का भी है, और भैया अधिक बारिश होने पर खेतों में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो गन्ना है या कोई भी फसल है उस पर प्रभाव पड़ता है, तो हम इसलिए अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी हमें रखनी है, क्योंकि भैया जल भराव से क्या होता है कि पौधे की जड़ों को नुकसान होता है, और भैया हमारे जो फसल का उत्पादन है उस पर असर पड़ता है। और भैया देखो यह समय जो बागवानी फसलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आम हो, अमरूद हो, नींबू, इन सब पौधों के लिए भैया उपयुक्त समय माना जाता है, तो हमारे किसान भाई भैया आम की, अमरूद की, नींबू की रोपाई भी कर सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं। और भैया साथ साथ यो फसल जो जो समय है भैया गन्ने की फसल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया गन्ना हमारी प्रमुख फसल हो, और भैया गन्ने में हम बहुत ऐसे काम करने होते हैं जिससे हमारा गन्ना का उत्पादन अच्छा हो, तो भैया आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं जिसका विषय है गन्ना बंधाई का महत्व, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संदीप चौधरी जो कि कार्यरत हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र शामली में, तो सुनते हैं उनसे की गई हो बातचीत। किसान भाइयों, जुलाई का महीना चल रहा है और बरसात का समय भी शुरू हो गया है, और ये समय धान की रोपाई का भी चल रहा है, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें बरसात के समय ध्यान देना जरूरी होता है, वरना कभी कभी ज्यादा बारिश होने से फसलों को काफी नुकसान होता है, तो इनमें एक मुख्य फसल है गन्ना। गन्ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो इसकी देखभाल भी जरूरी है, और अच्छा उत्पादन के लिए गन्ने की समय समय पर बंधाई जरूरी है, तो कब और कैसे हमें गन्ने की बंधाई करनी है और गन्ने की बंधाई का
1: क्या महत्व है। तो इस संबंध में जानकारी के लिए हमने बात की डॉक्टर संदीप चौधरी जी से, जो कि कार्यरत है प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र शामली में। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार साहब,
1: स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का समय है और ये समय गन्ने की फसल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी अधिक बरसात और तेज हवा चलने से गन्ना हमारा गिर जाता है और उसमें बहुत नुकसान हमें होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि गन्ना बंधाई क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: बिल्कुल, किसान भाइयों, जैसा अधिक बढ़ने वाली फसलें से सुरक्षित व अधिक उत्पादन लेने के लिए उनकी बुनाई करना आवश्यक है, जिसमें हमारी मुख्य फसल गन्ना ही है। तो गन्ने की बुनाई करने के बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें सबसे पहला लाभ तो यही है कि गन्ने की फसल को गिरने से बचाना, क्योंकि तेज हवाओं या भारी बारिश के कारण बुनाई करने से पौधे एक दूसरे को सहारा देते हैं और सीधे खड़े रहते हैं। इसके अलावा वजन और लंबाई में भी वृद्धि होती है। गन्ने के सीधे खड़े रहने के कारण उसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है, जिससे जड़ें मजबूत और गन्ने की लंबाई वजन दोनों में वृद्धि होगी। एक और लाभ है कि पैदावार और रिकवरी में सुधार होता है। जमीन पर गिरने से गन्ने में चीनी की मात्रा अर्थात गन्ने की जो रिकवरी हम बोलते हैं वो कम हो जाती है, अतः समय पर बंधाई करने से अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। एक और भी लाभ इसका है बंधाई का कि जीव जंतुओं से सुरक्षा। जो नीचे गिरे हुए गन्नों में चूहे, जंगली सुअर, सियार आदि जंतु लग जाते हैं, अतः बंधाई करने से फसल को इन जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। मुख्य कारण है कि अगर प्रकाश संश्लेषण, गन्ना जब सीधा खड़ा है तो उसके कारण पत्तियों को सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से होती है। उसमें अगर हम सहफसली खेती कर रहे हैं तो उस प्रकाश संश्लेषण के अधिक होने के कारण सहफसली खेती को भी सूर्य का पूरा प्रकाश मिलता है और उससे भी उत्पादन अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी हमारे गन्ने की फसल में होती है, जिससे हमारा जो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों अच्छी बनी रहती है। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गन्ने की बंधाई करने का सही समय और सबसे उपयुक्त समय कौन सा है।
2: बिल्कुल, गन्ने की बंधाई का सबसे उपयुक्त समय है कि बरसात से पहले पहले हमें गन्ने की बंधाई कर देनी चाहिए। जब गन्ना हमारा 10-12 फीट के आसपास होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये सारा कार्य बरसात से पहले पहले कर लेना चाहिए। मई से स्टार्ट होकर मई, जून, जुलाई तक पूर्ण हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खेत में पानी भर जाता है और कुछ किसान भाई हमारे उस पानी में भी गन्ने की बंधाई करते हैं, तो कभी कभी उससे जो हमारे गन्ने की जड़ें हैं वो हिल जाती है, तो उस समय हमें बंधाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
2: बिल्कुल, जहाँ जिस खेत में पानी भर रहा है तो निश्चित है कि अगर तेज हवाएं चलेगी वो गन्ना गिरेगा, तो इसलिए अच्छा ये है कि वो गन्ने की बंधाई को अवश्य करें। बस ध्यान ये रखें कि जो दो लाइनों को आपस में बांधते हैं उससे ज्यादा कस के ना बांधे, थोड़ा ढीला बांधे, जिससे कि उसके जड़े ज्यादा विचलित ना हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि किन परिस्थितियों में बंधाई करना सबसे अधिक आवश्यक होता है।
2: क्योंकि गन्ना हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, और अगर जिस इलाके में तेज हवाएं चलती हैं, ज्यादा बाढ़ का, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का ये होता है, वहां तो गन्ने की बंधाई करना अति आवश्यक।

0: है, क्योंकि तेज हवाओं से कोई भी फसल, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि अगर कोई फसल गिर जाती है तो उसका उत्पादन बिल्कुल बहुत कम हो जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि उस फसल के गिरने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। डॉक्टर साहब, गन्ने की बंधाई का सही और वैज्ञानिक विधि क्या है, कैसे हमें उसकी बंधाई करनी चाहिए?
0: देखो, गन्ने की बंधाई को सबसे पहली तो एक चीज है कि हम किसी भी गन्ने की को गन्ने की पत्तियों से ही बांधना चाहिए, किसी हमें रस्सी से या प्लास्टिक की रस्सी से इससे नहीं बांधना चाहिए। दूसरा है कि दोनों लाइनों को आपस में बस इतना बांध दें कि उसको ज्यादा कसके ना बांधे, जिसको कि गन्ने की बंधाई होने के बाद ही गन्ने की ग्रोथ होती है, जिससे कि अगर किसी चीज को हम ज्यादा दबा के बांध देंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी, वहीं से रुक जाएगी। तो इसलिए केवल दोनों लाइनों को आपस में जोड़ के और हल्का सा उनको बांध दे कि बस खुले ना, इतनी टाइट होना चाहिए वो। यही इसकी
1: बिल्कुल
0: वैज्ञानिक विधि भी है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या सभी जो गन्ना प्रजाति हैं उनकी बंधाई आवश्यक है, या कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बंधाई हम नहीं कर सकते और वो हमारे लिए सीधी खड़ी रहती हैं?
0: नहीं, क्योंकि गन्ना 10-12 फीट से लेकर 15-16 फीट तक या इससे ज्यादा भी होता है। आजकल जितनी भी वैरायटी आ रही है वो सारी आ रही है। बंधाई तो हर वैरायटी की, हर गन्ने की फसल की बंधाई होती है, वैरायटी से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और कुछ जमीन के भी आधारित है कि जहाँ रेतीली जमीन ज्यादा है या जहाँ ऐसी हल्की जमीन है वहां तो बंधाई आवश्यक ही आवश्यक है। वहां पर तो दो बंधाई चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलती है या मिट्टी टाइट है थोड़ी, वहां एक बंधाई से भी काम चल जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमारे किसान भाइयों को बताई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हमारे गन्ने की बंधाई नहीं करते तो उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकता है?
0: कुछ जो लाभ मैंने बताए, सबसे पहली तो चीज, अगर बंधाई नहीं कर रहे हैं और तेज हवाएं चलती हैं या तेज बरसात होती है तो गन्ना गिर जाएगा, और गिरने के बाद उसमें हमारे इस इलाके में हम देखें तो जंगली सुअर और चूहा, और अभी ये सियार भी या खरगोश भी, ये भी बहुत आ जाते हैं। तो वो हमारे, क्योंकि गन्ने में मिठास है और मीठी चीज की तरफ को हर जीव जंतु पक्षी आदमी सब जाते हैं उसकी तरफ को, तो वो उसको हमारे उत्पादन को 50-60% तक घटा भी सकते, तो इसलिए बंधाई तो आवश्यक है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भाई गन्ने की बंधाई करते हैं तो गन्ने की बंधाई करने से कीट और रोगों का प्रभाव भी कम हो जाता है?
0: बिल्कुल, प्रभाव कम होगा उसका, क्योंकि बंधाई करते हैं तो उसमें मैंने बताया कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, हवा जो है उसमें आर पार निकल जाएगी, तो उस स्थिति में उसमें कीट और पतंगे ये भी बहुत कम लगेंगे। और अगर ऐसी स्थिति में कोई विशेष आपदा आती है, मौसम ऐसा होता है कीट पतंगे के लिए लाभदायक है वो, तो जब बंधाई हुई गन्ने की है तो उसमें अगर कोई स्प्रे भी करना पड़े तो वो भी बहुत सुगमता से होता है उसमें, तो इसलिए बंधाई तो गन्ने की बेहद आवश्यक है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो भी शस्य की रहे हम करते हैं, जो बंधा हुआ गन्ना है उसमें हम आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे तेज हवा चलती है या वर्षा वाला क्षेत्र है तो उसमें बंधाई करना कितना महत्वपूर्ण है?
0: पहली बात तो ये है कि हमें ज्यादातर ध्यान देना चाहिए कि गन्ने को पूरा पश्चिम दिशा की ओर बोना चाहिए, जिससे कि हवाओं का जो वेग है उसमें गन्ने में चलते तो आर पार हो जाए। अगर ये ऐसी हमारी परिस्थितियां खेत की नहीं है कि पूरा पश्चिम नहीं बोते हैं और हम बंधाई कर रहे हैं, तो ध्यान इसमें यही रखना है कि तेज हवाओं से बचाने के लिए इसको गन्ने को बांधते रहें बस।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पूर्व से पश्चिम दिशा में हमें गन्ना बोना है जिससे हवा का प्रभाव सही रहे। जी डॉक्टर साहब, गन्ना बंधाई करते समय कौन कौन सी गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं जिससे नुकसान भी होता है और जो फसल का उत्पादन वो भी प्रभावित होता है?
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कभी कभी देखने में यह आया कि किसान भाई उसको ज्यादा टाइट बांध देते हैं गन्ने की दोनों, जैसे दोनों लाइनों को आपस में वो जोड़ के गन्ने को बांधते हैं तो ज्यादा टाइट बांध देते हैं उसमें, क्योंकि गन्ना बनने के बाद का समय ही गन्ने की बढ़ोतरी का समय है, तो जब टाइट कोई चीज हो जाती है आप तो उसमें बढ़ोतरी में बड़ी दिक्कत होती है, वहीं से ही टाइट हो गया तो उससे आगे बढ़ोतरी कम हो जाएगी इसकी, तो इसलिए ज्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। किसी प्लास्टिक की या जैसे हम लेते हैं उस रस्सी से नहीं बांधना चाहिए, वो गन्ने में वो नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए जैसा मैंने पहले बताया कि गन्ने को हमेशा गन्ने की पत्तियों से ही और इतना बांध दे कि वो खुले ना बस।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि गन्ने को ज्यादा टाइट हमें नहीं बांधना, ढीला बांधना है जिससे उसकी ग्रोथ, जो उसका विकास है वो अच्छे से हो।
0: अच्छी तरह से हो जाए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हमने गन्ना बंधाई कर दी तो गन्ना बंधाई के बाद भी हमें अपने खेतों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, तो खेत में गन्ने की बंधाई करने के बाद किन किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है?
0: देखो, गन्ना बंधाई, इसका मतलब है कि गन्ना बंधाई आपकी हो गई है तब आपकी बरसात चालू हो गई है, और बरसात का मतलब है कि जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये गन्ने के जितने भी बढ़ोतरी का ही समय है। इस समय केवल यही रखना ध्यान कि अगर कहीं गन्ने पे कोई निशान पीली पत्ती पड़ना या कोई कीट का निशान कीट के कारण कोई दिखाई देता है तो आपको उसका ध्यान रखना है कि उसका कोई स्प्रे, जो उचित स्प्रे उस समय हो सकता है अगर, क्योंकि गन्ने की हाइट उस समय बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, वो कर दें। और अगर कोई जैसे उस समय में जुलाई के आसपास में ज्यादातर आपका सफेद सुंडी या दीमक का प्रभाव ज्यादा होता है बरसात के बाद, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि

0: साई के पानी के साथ साथ क्लोरोप्लस साइपर का एक मिश्रण आता है, केमिकल आता है, वो पानी के साथ साथ 1 लीटर 1 एकड़ में पानी के साथ साथ बूंद बूंद छोड़ दें। जब तक आपका 1 एकड़ का खेत भरे, आपका वो जो 1 लीटर की बोतल है वो खाली हो जाए, तो जमीन के नीचे जो लगने वाले कीड़े हैं वो आपके बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम जो गन्ना बुनाई करते हैं तो उनके साथ साथ हमें उनके जो खरपतवार है उन पर भी ध्यान देना है, और जो उनमें कोई बीमारियां हैं या रोग कीट का प्रकोप है उसका भी हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे गन्ने बुनाई के बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य हमारे किसान भाई करते हैं, तो किसान भाई के लिए ये कार्य कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखो, मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य गन्ने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा गन्ना बंधाई का कार्य है। हम मिट्टी चढ़ाने का कार्य तो पूर्व में भी कर देते हैं, पहले करते हैं, इससे एक बंधाई कर ली फिर हम मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य कर लेते हैं जैसा हमारा समय लगता है। मिट्टी चढ़ाने से हमारे बंधाई में भी बहुत फायदा होता है कि बंध भी गया और मिट्टी भी चढ़ गई, तो इसका मतलब हमने श्योरिटी कर ली कि गन्ना हमारा ज्यादा तेज हवाओं गिरने से बच जाएगा। ये दूसरी चीज है कि जब मिट्टी चढ़ा देते हैं तो हमारा पानी का भी जो, क्योंकि आने वाले समय में खेती के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो पानी भी हमारा बहुत सीमित मात्रा में लगता है और वो सीधा पौधे को टच नहीं होता है, तो इसलिए गन्ना हमारा उससे भी नुकसान से बच जाता है और पानी भी बहुत सीमित मात्रा में लगता है, पानी की भी बचत हमारी उससे होती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पानी की बचत हमारे किसान भाई गन्ने की बंधाई और गन्ने पर मिट्टी चढ़ाकर कर सकते हैं।
0: कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते और क्या संदेश आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे जिससे उनका उत्पादन बहुत अच्छा हो?
0: बिल्कुल, मैं किसान भाइयों से ये जरूर कहना चाहूंगा, खासकर गन्ने की खेती में, कि गन्ने को जितना भी आपको राशन पानी देना है वो बरसात होने से पहले पहले, बरसात होने के बाद गन्ने को कोई भी राशन पानी की, खाद की या पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो उसका बढ़ोतरी का समय है, उस पर छोड़ दें। बस इतना ध्यान रखें कोई कीड़ा है, कोई बीमारी है, कोई रोग है तो उसका नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उस समय गन्ने को किसी भी राशन की, पानी की, उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा गन्ने का उत्पादन लेंगे और कम से कम खर्च में लेंगे, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं किसान भाइयों के लिए जो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि गन्ने में सबसे ज्यादा जो खर्च किसान भाइयों का हो रहा है वो होता है हमारा केमिकल पे, कृषि रसायनों पे। आजकल हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम गन्ने को कृषि रसायनों के प्रयोग से बचा सकते हैं। अभी सरकार के द्वारा भी गन्ने में लाइट ट्रैप, फोरोमैन ट्रैप, आपके येलो स्टीपी ट्रैप, जिसमें लाइट ट्रैप ये है कि अगर शाम के समय हम लाइट ट्रैप को खेत में लगा देते हैं, और ऑटोमेटिक लाइट ट्रैप है वो, जो ऑटोमेटिकली शाम के समय और जब सुबह दिन निकलने से पहले जलते हैं, तो जितने भी हमारे बोरर्स हैं, बोरर कीट हैं, वो उस लाइट ट्रैप की तरफ को आकर्षित होते हैं। जब वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो वो उसमें लाइट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो अगली पीढ़ी को अपने को पैदा नहीं कर पाते हैं, तो हमारा गन्ना सुरक्षित बच जाता है इससे। दूसरी चीज हमारी ये है कि हम अगर उसमें फोरोमैन ट्रैप लगाते हैं ये देखने के लिए कि कोई कीट इसमें आ रहा है, तो फोरोमैन ट्रैप में फंस जाता है, आ जाता है, तो उस समय निरीक्षण ये हो जाता है कि अब हमारा इसमें नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके अलावा गन्ने में जितने भी बोरर हैं, किसान भाइयों को चाहिए कि उसको लिए हम ट्राइकोकार्ड का जरूर इस्तेमाल करें। ये जो ट्राइकोकार्ड है ये हमारे इस पे परजीवी कीट के अंडे होते हैं, उनको हम खेत में ला के, एक ट्राइकोकार्ड को 10 भागों में बांटा जाता है और पत्ती के नीचे स्टेपलर से पंच कर दें, जहां वो कीट के अंडे लगे हुए हैं वो ऐसा नीचे रखते हुए पत्ती के नीचे पंच कर दें, तो उसमें से जो अंडा निकलता है, जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले बोरर हैं, कीट है, वो केवल उन्हीं के अंडों को खाते हैं और कुछ नहीं खाता है, तो हमारा सोते ही वो कंट्रोल उससे कीटों का हो जाता है। और क्योंकि मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, तो इसलिए जितना कम से कम रसायनों का प्रयोग कम करें हम उतना ही बढ़िया रहता है। दूसरी चीज, जितनी अभी ये वेराइटी हमारी आ रही है, इसमें अगर आप नाइट्रोजन, बेसिकली यूरिया को अगर कंट्रोल करोगे तो आधे कीट तो आप वैसे ही उनको कम कर दोगे। ये गन्ने के लिए बहुत अच्छी ये है कि आप गन्ने में लाइट ट्रैप, फोरोमैन ट्रैप, टाइकोकार्ड, इन सारी चीजों का प्रयोग एक समन्वित कृषि के रूप में करें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। हमारे किसान भाई जानकारी को सुनेंगे और जरूर लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुनी है जानकारी, और जानकारी दे थे डॉक्टर संदीप चौधरी। तो देखो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी गन्ने के संबंध में, कि कितना लाभ हमारे किसान भाई गन्ने की बुनाई करके कर सकते हैं। एक तो भैया देखो, जड़ों का विकास इससे अच्छा होता है, नई कलियां निकलती हैं, पौधा भैया मजबूत, पौधा जो मजबूत होता है उसे मजबूती का सहारा मिलता है, और भैया मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, और भैया खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है, गन्ने की बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। और देखो भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि तेज हवा और बारिश से जो फसल हमारी गिरती है तो उससे नुकसान भी कम होता है और लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलता है।

देखो जब बात लाभ की आती है तो भैया लाभ एक और चीज़ से भी मिलता है, वो है भैया मनोरंजन। तो भैया ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं प्यारा सा लोकगीत।

मेरा नौदांडे का बीज ना, अभी हमारे किसान भाइयों ने प्यारा सा लोकगीत सुना सविता साथी और साथियों की आवाज़ में। और भैया देखो, अब चलते हैं फिर से खेती बाड़ी की ओर और बात करते हैं भैया कुछ खेती किसानी की। देखो भैया, हमारे किसान भाई खेती करते हैं और भैया इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई पशुपालन भी करते हैं। और देखो भैया, पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक भी हों, क्योंकि भैया पशुओं से जो हमारे खास ख्याल हमें रखना होता है, पशुओं से जो भैया हम गोबर मिलता है और गोमूत्र मिलता है, वो कुछ कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो भैया उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हमें करना हमारी जिम्मेदारी है। और भाई वो भी भैया संतुलित आहार हमें अपने पशुओं को देना है। और संतुलित आहार की अगर हम बात करूँ तो भैया उसके लिए हमें भैया अपने पशु का वजन, उत्पादन, गर्भावस्था और कार्य क्षमता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे ऊर्जा हो गई भैया।

0: प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, विटामिन हो गई और पर्याप्त पानी उचित मात्रा में दिया जाता है। और भैया संतुलित आहार देने के समय भैया जो हमारे पशु वो तो स्वस्थ रहते हैं और दूध का जो उत्पादन है वो भी बढ़ता है और प्रजनन क्षमता भी भैया बेहतर होती है और रोगों का खतरा भी कम होता है। और भैया देखो अगर संतुलित आहार में हमें क्या क्या देना है, तो भैया हम अपने पशु को हरा चारा जैसे भैया बरसीम हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, मक्का हो गई, नेपियर घास हो गई, ये भी देना है। और भैया साथ साथ सूखा चारा भी हमें अपने पशुओं को देना है, जैसे गेहूं का भूसा हो गया, धान की पुआल हो गई और भैया सूखी घास हो गई। और भैया दाना मिश्रण की अगर बात करूँ तो भैया हमें दाना मिश्रण भी अपने पशुओं को देना है, जैसे चोकर है भैया, मक्का है, जौ है, सरसों है, सोयाबीन की खल है और भैया खनिज मिश्रण है। और भैया प्रतिदिन हमें 50 से 60 ग्राम अपने पशु को साधारण नमक भी देना है और उसके साथ साथ भैया अपने 30 से 40 ग्राम भैया नमक भैया और खनिज मिश्रण अपने पशु को देते रहना। उससे भैया क्या होगा, एक तो उनकी शारीरिक क्षमता वो मजबूत होगी और भैया जो शरीर है उनका वो भी स्वस्थ होगा और पशुओं को लाभ मिलेगा। इस सब एक तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा और भैया उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। और देखो भैया पशु के स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहता है और भैया प्रजनन क्षमता है भैया उसमें भी सुधार होता है। और एक बात और भैया, इससे साथ साथ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो भी बढ़ती है और भैया चारों ओर बेहतर उपयोग होता है और भैया पालन में जो लागत आती है वो भी कम होती है और भैया जो हमारे पशु हों उसकी कार्य जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। और देखो बस हमें कुछ सावधानी बरतने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। एक तो भैया हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो भैया पशुओं को दिन में 2-3 बार नियमित समय पर चारा और दाना हमें देना है। और भैया दूध देने वाले पशुओं को दूध उत्पादन के अनुसार हमें दाना मिश्रण देना है। और भैया एक बात और हमें खास ख्याल रखना है, वो है भैया फफूंद लगा हुआ चारा। हम किसी भी कीमत में अपने पशु को फफूंद लगा हुआ सड़ा गला चारा अपने पशुओं को नहीं देना। हरे चारे जैसे सूखे चारे या संतुलित मिश्रण को भैया हमें अपने पशुओं को खिलाना है। और भैया मौसम के अनुसार आहार में समय समय पर बदलाव करते रहना है। भैया एकदम से बदलाव हमें अपने पशुओं के लिए नहीं करना है, धीरे धीरे हमें अपने चारे में बदलाव करना है। तो हमारे किसान भाई इन सब बातों को अपना कर लाभ ले सकते हैं क्योंकि भैया संतुलित आहार पशुपालन की सफलता का आधार है। यदि हमारे किसान भाई भैया पशुओं की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पोषक तत्व और भरपूर मात्रा में आहार संतुलित आहार देंगे तो भैया उनका जो स्वास्थ्य है वो अधिक अच्छा होगा और भैया बेहतर उत्पादन वो देंगे। और देखो भैया बातचीत हम तुमसे करते ही रहेंगे पर भैया उससे पहले लेते एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: देखो संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भैया खेती किसानी की। देखो किसान भाई तुम्हारे खेती करते हैं और भैया लाभ भी लेते हैं पर भैया उनका लाभ इतना नहीं मिल पाता जितना उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि भैया हमारे किसान भाइयों कीट और रोग नियंत्रण करने के लिए ज़्यादा दवाई का उपयोग करते हैं जिससे भैया लागत बढ़ती है। और भैया लागत को कम करने के लिए और कीटों को नियंत्रण करने के लिए हमारे किसान भाई भैया सोलर ट्रैप लगवा सकते हैं। भैया सोलर ट्रैप एक पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कीट नियंत्रक तकनीक है। इसमें भैया क्या होता है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली LED लाइट का उपयोग करके रात में सक्रिय हानिकारक कीटों को आकर्षित किया जाता है। और भैया लाइट के आसपास लगे भैया जाल हो जैसे फनल हो भैया पानी के बर्तन में कीट जो फंसकर नष्ट हो जाते हैं। इससे भैया फसलों पर कीटों का प्रकोप कम हो जाता है और रासायनिक कीटनाशकों पर हमारे किसान भाइयों की निर्भरता भी घटती है। जैसे भैया धान हो, गन्ना हो, मक्का हो, कपास हो, सब्जियां हो, दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, इस पर भैया सोलर ट्रैप का उपयोग विशेष रूप से लाभदायक होता है। भैया यह तना छेदक पत्ती जैसे पत्ती लपेटक, फल और फली छेदक, कटुआ कीट और कई प्रकार के कीट पत्तियों की संख्या को कम करने में सहायक होता है। भैया सोलर ट्रैप हमारे किसान भाइयों को आराम से हम इसे लगा सकते हैं। इसे लगाने की जो विधि है भैया वो भी सरल है। एक तो भैया हम खेत में फसल की ऊंचाई से लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर ऊपर ट्रैप हमें लगाना है। सामान्य रूप से भैया एक एकड़ में एक सेट बतेरा होता है।

और अगर कीट का प्रकोप ज़्यादा है तो भैया हमारे किसान भाई इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। और भैया ट्रैप को खेतों के बीच में या भैया ऐसे स्थान पर हम लगाना जहाँ पूरे खेत में रोशनी फैल जाए। और भैया पानी वाले ट्रैप, एक भैया एक बात और का ध्यान रखना भैया, इसमें पानी वाले ट्रैप भी होते हैं, तो उसमें भैया पानी वाले ट्रैप में जहाँ हमारे जो कीटनाशक है वो गिरते हैं, जो कीट गिरते हैं, तो उसमें भैया साबुन या डिटर्जेंट जरूर मिलाते हैं, जिससे भैया कीट जो बाहर ना निकल जावे, जिससे भैया कीटों की संख्या में कमी आती है। तो इन बातों का ध्यान रखना। और इसे देखो, अगर हमारे किसान भाई फेरोमोन ट्रैप या जो सोलर ट्रैप लगाते हैं तो उस भैया उससे फ़ायदा मिलता है। एक तो भैया रासायनिक कीटों का जो कीटनाशक है उसके उपयोग में हम भैया दवाई लगाते हैं और उस पर खर्चा बढ़ता है, वो कम होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, पर्यावरण मिट्टी और जल प्रदूषण नहीं होता है, और भैया लाभकारी कीटों पर कम प्रभाव इसका पड़ता है, फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार होता है, किसान और उपभोक्ता जैसे स्वास्थ्य की सुरक्षा भी इससे होती है भैया, और सौर ऊर्जा से चलने के कारण भैया बिजली की आवश्यकता भी इसमें नहीं पड़ती और बिजली की बचत भी इससे होती है। तो भैया इसे उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानी भी बरतनी है। एक तो भैया जैसे हमारे किसान भाई शाम के समय चालू करें और सुबह के समय सोलर ट्रैप को बंद कर दें, बैटरी और सोलर पैनल की भैया नियमित साफ सफाई करें, ट्रैप को भैया पेड़ों या ऊंची बाधा जो जो होती हैं भैया उन पर उससे दूर लगामो, छाया में ट्रैप ना लगामो, और भैया समय समय पर ट्रैप को भैया साफ सफाई इसकी करते रहें। और भैया जो इसकी जो तकनीक है भैया टिकाऊ हो, और ये भैया ये कृषि पद्धति के लिए वो एक नए आधुनिक तकनीक है, सभी हमारे किसान भाई जो रासायनिक दवाई हैं उसको निर्भरता कम करके अच्छा आमदनी ले सकते हैं, और भैया अपनी जो खेतों से भैया लाभ कमा सकते हैं। और जब भैया जब बात लाभ की आती है तो भैया हमारे किसान भाइयों का मन करता है गीत संगीत का, और भैया ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं एक प्यारी सी रागनी।

लगते ही तीर गिरा धरने पे। अभिमान किसान भाई ने सेठपाल सिंगारे की आवाज़ में प्यारी सी रागनी सुनी और भैया देखो हमारे किसान भाई का मनोरंजन भी हो गया होगा और भैया जो थकान है वो भी मिट गई होगी। और भैया देखो अब समय आ गया है मौसम की चिट्ठी का और ये मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भैया चिट्ठी के अनुसार अब आने वाले एक दो दिन भैया बादल छाए रहने की संभावना है और भैया कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। तो हमारे किसान भाई इस मौसम को देखकर अपने कृषि कार्य करते रहे हैं। और देखो अगर बात करो घड़ी की तो भैया घड़ी बिल्कुल भी आपसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते अपने हमारे किसान भाई को अपना पता जरूर बता।

बता दें, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 246763 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। तो किसान भाइयों, इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रिका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भाई अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। विविध कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक वार्ता। डिजिटल दौर में पुस्तकालय का बदलता स्वरूप। वार्ताकार हैं गीता शर्मा।
1: सृष्टि के आदिकाल से ही जब मनुष्य का इस पृथ्वी पर अस्तित्व हुआ, तभी से मनुष्य को पृथ्वी का सबसे विवेकशील प्राणी माना जाता है। प्राचीन आदि मानव काल से मनुष्य ने अपने इसी विवेक और बुद्धि के बल पर विकास के आधुनिक दौर का सफर तय किया है। उसके इस सफर में लिपियों, भाषाओं, संकेतों और लेखन ने उसकी बहुत सहायता की है। मनुष्य ने अपने विवेक, चिंतन और ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए निरंतर ज्ञानार्जन किया है। ज्ञानार्जन के हजारों वर्षों के इस सफर में मनुष्य का सर्वाधिक साथ पुस्तकों, शिलालेखों और स्तंभों ने दिया है। विकास के इस क्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुस्तकों की भूमिका उल्लेखनीय है और ज्ञानार्जन में पुस्तकों के संग्रह की आवश्यकताओं की दृष्टि से पुस्तकालयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात अलग है कि इस आधुनिक डिजिटल दौर में पुस्तकालयों के स्वरूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। वास्तव में आधुनिक डिजिटल दौर में पुस्तकालयों की भूमिका को जानने एवं उसके बदलते स्वरूप को जानने से पूर्व जरूरी यह है कि ये जाना जाए कि वास्तव में पुस्तकालय क्या हैं। दरअसल पुस्तकालय पुस्तकों और पांडुलिपियों के संग्रह का भंडार या घर है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ ज्ञानार्जन हेतु पुस्तकों और पांडुलिपियों को विधि विधान के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से सृजित किया जाता है, उसे पुस्तकालय कहा जाता है। और ज्ञानार्जन या ऐतिहासिक तथ्यों के ज्ञान हेतु यहाँ बैठकर अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक आधुनिक डिजिटल दौर में पुस्तकालयों की भूमिका का प्रश्न है, तो जैसे जैसे दुनिया भर में विकास का कंप्यूटरीकरण हुआ है, वैसे वैसे पुस्तकालयों के उद्देश्यों में बिना किसी परिवर्तन के उसके स्वरूप में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। आज IIT, NIT, एम्स, मेडिकल और अन्य बड़े बड़े संस्थानों में पुस्तकालय 24 घंटे अपनी सेवा देने लगे हैं। आज आप अपने हॉस्टल, ऑफिस, घर आदि में बैठकर संबंधित पुस्तकालय में मनचाही सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। श्रोताओं, डिजिटल पुस्तकालय यदि सरल शब्दों में कहें तो ऐसा पुस्तकालय है जिसमें संग्रहों और पुस्तकों एवं पांडुलिपियों का भंडारण डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है और इन तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी समय पहुंचा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिजिटल पुस्तकालय में डाटा भंडारण व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। डिजिटल पुस्तकालय पारंपरिक पुस्तकालयों की तरह ही संग्रह का चयन, अधिग्रहण, उपलब्धता और उनका संरक्षण करता है। इनमें प्रमुख अंतर यह है कि डिजिटल पुस्तकालयों में संसाधन केवल मशीन से पठनीय रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि ये 21वीं सदी है और डिजिटल तकनीक की बदलते दौर में पुस्तकालयों को भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि किसी भी

0: शिक्षण संस्था में पुस्तकालय, खास करके उच्चतर संस्थाओं के लिए पुस्तकालय एक जरूरी अंग है। विश्वविद्यालय में तो बिना पुस्तकालय के कल्पना भी नहीं की जा सकती। बदलती तकनीक के साथ डिजिटल माध्यम से आम आदमी तक हर चीज की पहुंच बहुत आसान या ये कहें बहुत सुगम हो गई है। ऐसे में पुस्तकालयों के भी फिजिकल और डिजिटल रूप का शिक्षकों और छात्र छात्राओं के जीवन में बहुत महत्व है। देश के बहुत से पुस्तकालय डिजिटल माध्यम से आपस में जुड़े हैं, जिससे उपयोगकर्ता को एक ही जगह पर सभी जुड़े पुस्तकालयों के संग्रह को आसानी से कम समय में प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में देश के धीरे धीरे सभी पुस्तकालय आपस में जुड़ जाएंगे। इससे सभी विद्यार्थियों, पाठकों या यह कहें उपयोगकर्ता के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपने से संबंधित डाटा प्राप्त करने में। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तकालय ज्ञान के भंडार होते हैं, क्योंकि वहां पुस्तकें और ज्ञान के अन्य संसाधन प्रायः मुद्रित रूप में उपलब्ध होते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की खोज के साथ पुस्तकालयों का परिदृश्य भी लगातार तेजी से बदल रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और भौतिक रूप में सूचना सामग्री के परिणाम स्वरूप डिजिटल पुस्तकालय तैयार किए जा रहे हैं। सभी पुस्तकालयों को सॉफ्टवेयर प्रदान कर भौतिक रूप में उपलब्ध डेटा का डिजिटल पुस्तकालय में डिजिटल रूप में संरचित किया जा रहा है। डिजिटल पुस्तकालयों में सूचना और ज्ञान के अभिगम का विस्तार करने की क्षमता होती है। वे स्थान और समय के बंधन और बाधाओं को भी दूर करते हैं। अतीत में विभिन्न संस्थाओं, विभागों, संगठनों ने भौतिक रूप में उपलब्ध डेटा को डिजिटलाइज्ड संरक्षित करने के लिए प्रयास किए हैं। हालांकि ये कार्य उक्त संस्थान, संगठन या विभाग के कार्य और रुचि के क्षेत्र तक ही अधिकांशतः सीमित हैं। डिजिटल पुस्तकालय, जिसे ऑनलाइन पुस्तकालय, इंटरनेट पुस्तकालय, जो कि दीवारों के बिना पुस्तकालय या डिजिटल संग्रह भी कहा जाता है। डिजिटल पुस्तकों का एक ऑनलाइन डेटाबेस है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो वीडियो, डिजिटल दस्तावेज आदि भी शामिल हो सकते हैं, या अन्य डिजिटल मीडिया प्रारूप या इंटरनेट के माध्यम से सुलभ पुस्तकालय ऑब्जेक्ट में डिजिटल सामग्री जैसे प्रिंट या फोटोग्राफ, साथ ही मूल रूप से उत्पादित डिजिटल सामग्री जैसे वर्ड प्रोसेसर, फाइलें या सोशल मीडिया पोस्ट शामिल हो सकते हैं। सामग्री को संग्रहित करने के अलावा डिजिटल पुस्तकालय संग्रह में निहित सामग्री को व्यवस्थित करने, उसे खोजने और पुनः प्राप्त करने के साधन प्रदान करती है। हालांकि डिजिटल पुस्तकालय आकार एवं दायरे में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। डिजिटल सामग्री को स्थानीय रूप से संग्रहित किया जा सकता है या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही ये सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों, अंतर संचालनीयता और स्थिरता के माध्यम से एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम है। श्रोताओं, यदि पुस्तकालयों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम अमेरिकी लेखक माइकल स्टर्नहार्ट डिजिटल पुस्तकालय की पहली परियोजना के संस्थापक हैं। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों को एक्सेस करने योग्य बनाया था। इसी क्रम में यदि हम बात करें भारत में डिजिटल लाइब्रेरी के सर्वोत्तम उदाहरणों में से IIT खड़गपुर स्थित भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। यह डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का एक प्रमुख पुस्तकालय है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। इनमें पुस्तकें देखी जा सकती हैं और मुफ्त में पढ़ने के लिए भी उपलब्ध हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि नवीन तकनीकी विकास के समय को देखते हुए आज पुस्तकालयों का पारंपरिक स्वरूप पूर्णता बदल रहा है। दिन ब दिन नित्य नई विश्व पटल पर हो रही खोजों सूचनाओं को पुस्तकालय द्वारा बदलते दौर में तीव्र गति से दूरवर्ती स्थानों तक आसानी से भेजा या उपलब्ध कराया जा पाना संभव हो रहा है। निष्कर्षता, डिजिटल दौर में आज पुस्तकालयों का स्वरूप बदल रहा है। पूर्व समय में पुस्तकालय एक निश्चित समय सीमा में बंद कर ही पाठकों, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को ही पुस्तकालय सुविधा प्रदान करते थे, लेकिन आज डिजिटल दौर में 24 घंटे पुस्तकालय घर बैठे पाठकों को बिना किसी परेशानी के सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
1: डिजिटल दौर में पुस्तकालय का बदलता स्वरूप, गीता शर्मा की ये वार्ता भी आपने सुनी और इसके साथ ही विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:55 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है साजन बिना सुहागन फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है यशुदास और अनुराधा पोडवाल ने। गीतकार हैं इंडीवर और संगीतकार उषा खन्ना।

श्रोताओं, ये प्यारा सा मीठा सा गीत आपने सुना यशोदास और अनुराधा पोडवाल की आवाज में। और कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, हेमलता की आवाज में। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पियामन भाई। गीत रचना और संगीत निर्देशन है रविंद्र जैन की।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में फिल्म बॉम्बे का बाबू फिल्म से ये गीत। गीत रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और धुन तैयार की है एसटी बर्मन ने।

मैजिक बॉक्स। इस फिल्म में अभी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुना और इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देशगान।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी रात 8:00 बजे। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर सुनेंगे नुसरत अली और साथियों के स्वर में कव्वाली। रात 10:00 बजे प्रसारित किया जाएगा हिंदी नाटक एक और सावित्री, लेखक हैं चिरंजीत और निर्देशक सुदर्शन कुमार। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे रात 8:15 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में। रात 8:30 पर हम आपको फिल्मी गीत सुनवाएंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश पेश किया जाएगा रात 10:30 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद श्रोता सुनेंगे कल रात 9:30 बजे। भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा, ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर। वार्ताकार हैं आशीष भारती। गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान का समय रहेगा 6:05 पर, कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत। साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मौन वंशों की देखभाल। प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा खुश रहिए स्वस्थ रहिए। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर चर्चा का विषय होगा वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज। अनीता द्विवेदी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:25 पर, धरती गाती है कार्यक्रम में। जागरूक श्रोता कार्यक्रम का समय रहेगा 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:15 पर विदुषी परवीन सुल्ताना का राग शुद्ध सारंग में गायन प्रसारित किया जाएगा। घर संसार कार्यक्रम में 1:15 पर कल क्रम होगा थारी पसंद। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 हो चुके हैं, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम

0: स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन समेत 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने समेत कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रदेश के ग्राम विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा।
2: विकसित भारत जी राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनाओ, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गाँव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
3: विकसित भारत जीराम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम। अपने गाँव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं, ये आपके ऊपर।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने आज एंटी करप्शन

0: कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर आज सुबह लगभग एक घंटे दोनों से पूछताछ भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर कल ये आदेश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को नाइट सफारी का काम शुरू करने से पहले विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और अनुमतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने बताया कि नाइट सफारी राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी श्रद्धालुओं ने रथ यात्राएं निकाली। वाराणसी में तीन दिवसीय ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का आज शुभारंभ हो गया है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती में भाग लेकर सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। हापुड़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा से सुशोभित रथ को श्रद्धालुओं ने बारी बारी से खींचा। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती गई और ड्रोन कैमरे की मदद से रथ यात्रा पर निगरानी रखी गई। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया रूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है

0: लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जल स्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको जल स्तर की सूचना दे दी जाएगी।
1: मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। और आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नुसरत अली और साथियों की आवाज में कव्वाली।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नुसरत अली और साथियों की आवाज़ में कव्वाली। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं एक और कव्वाली नुसरत अली और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने नुसरत अली और साथियों की आवाज़ में ये कव्वाली सुनी और इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में फिल्म शर्मीली से। गीत के बोल हैं नीरज के और संगीत दिया है SD परमन ने।

0: श्रोताओं, फिल्म शर्मिली के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में वक्त की दीवार फिल्म का ये गीत। गीत है अनजान का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

0: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए।
1: सच

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म हीरा पन्ना से। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 होने को है। कुछ ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
1: आकाशवाणी है, अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम उड़ीसा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट।

0: फिर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: ये
0: सुनेंगे।
1: आकाशवाणी है, अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम उड़ीसा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट।

वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पूरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों

0: तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात 10 बजे प्रसारित करेंगे हिंदी नाटक एक और सावित्री। लेखक हैं चिरंजीत और निर्देशक सुदर्शन कुमार। रात 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल आवाजों में।

0: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, फिल्म दिल तो पागल है सी। और इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल।

हुए अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी।

0: संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूर

0: क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा क्योंकि पहंडी डीजे और फेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडिचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। इंडिया अचीव मेजर माइलस्टोन ब्रिंगिंग ओवर 1 बिलियन सिटीजन्स अंडर सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China, and the US. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
5: India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
4: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Civil Aviation Minister Kinjarapu Rammohan Naidu today said that the next phase of the Ude Desh Ka Aam Nagrik or Udaan scheme aims to enhance connectivity to 120 new destinations and enable 4 crore passengers to travel over the next 10 years. Mr. Naidu was addressing a workshop on the next phase of Udaan in New Delhi.
6: It is going to be worked in a very close partnership between the government of India, the state governments, all the stakeholders coming together and creating a strong foundation to increase the airport network by 100 more airports, heliport network to 200 more heliports, and we see also to encourage Atmanirbhar Bharat, we are going to purchase 2 Hindustan 228 Dornier aircraft, which we are going to give to Alliance Air, and we are also going to purchase 2 helicopters, which we are going to put with Pawan Hans.
4: In a major boost to regional connectivity, the first commercial flight between Daman and New Delhi was flagged off today from the newly built Namo Airport. Union Civil Aviation Minister Kinjarapu Rammohan Naidu and Union Territory Administrator Praful Patel jointly flagged off the maiden flight. The airport was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Our correspondent has the details.
7: The direct air connectivity between Daman and the national capital is expected to give a major boost to tourism, trade and investment in the region. Passengers will no longer have to rely on long road or rail journeys. According to the local administration, plans are already underway to expand air services from Namo Airport to other major cities across the country in the near future. Pravesh Adiyacha, Akashwani News, Ahmedabad.
4: The Ministry of Housing and Urban Affairs has approved the guidelines for the program for accelerated renewal and incentivization of vehicle assets for reducing transport, air pollution and network emissions or Parivartan scheme. The scheme is aimed at facilitating the replacement of older, highly polluting trucks and buses operating in the National Capital Region with cleaner Bharat Stage or BS6 compliant or electric vehicles. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that India has achieved a record production of 376 million tons of food grains and 377 million tons of horticulture produce this year, despite challenges posed by climate change. Mr. Chauhan was addressing a press conference in New Delhi. He said the scientists are now going directly to the fields to work alongside the farmers.
8: Our agricultural production has broken all records. Food grains production has reached 376 million tons, while horticulture production stands at 377 million tons. This is an extraordinary achievement. In a single year, 386 new varieties of 44 crops have been developed. Of these, 94 are climate resilient and 29 are bio-fortified varieties. The Khet Bachao campaign has also done commendable work.
4: Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today called for stronger collaboration between scientific institutions, industry and state governments to ensure that homegrown technologies are implemented on a much larger scale across the country. Dr. Singh said this while addressing the year-long Platinum Jubilee celebrations of CSIR, Central Road Research Institute in New Delhi. Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan today said that the government has brought rapid changes in governance since 2014, helping elevate India's global standing. The minister was speaking after inaugurating a post office passport seva kendra at Periyar Nagar in Chennai. Dr. Murugan said, the government has ensured that the benefits of its welfare schemes reach every citizen, including those in the remotest parts of the country. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicenter of the festival is the holy city of Puri in Orissa, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. More from our Bhuvneshwar correspondent.

0: Vishwanath Suresh in 50 kilograms and Ganga in 55 kilograms won gold in the under 23 men's category. Vanshaj in 65 kg settled for silver. In the under 19 men's finals, Aditya in 55 kg and Shubham Rajput in 90 kg also finished with silver medals. In men's cricket, India have set a target of 234 runs for host England in second one-day international of the three-match series at Cardiff. India were all out for 233 in 44 overs. Earlier, England skipper Harry Brooke won the toss and opted to field. India had defeated England by 6 wickets in the first one-day international in Birmingham on Tuesday. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yu of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the US to set up the title clash with European powerhouse Spain. The summit clash will be on Sunday night at New Jersey Stadium in the US. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Orissa's Puri draws lakhs of devotees. U.S. expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade. Tehran retaliates. Two Indian men boxers clinch gold while three bag silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in men's cricket, India set a target of 234 runs against host England in second ODI in Cardiff. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत ने सामाजिक तहफ्फुज़ के फ्रेमवर्क के तहत एक अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगे मील उबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमरीका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दो मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि तीन मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत में सामाजिक तहफ्फुज़ का दायरा एक अरब से तजावुज कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में सामाजिक तहफ्फुज़ की कवरेज जो साल 2015 में 19% थी, साल 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी सामाजिक तहफ्फुज़ के दायरेकार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन तैयार और इंजीनियर की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।

0: माफ कीजिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनवाएंगे। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वजीर आजम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अजसरेनौ तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़िराअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में, खासतौर पर एल नीनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन आईसीआर 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी, जिसमें नौजवान साइंसदान मसनूई जहानत, AI, रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी, जो पायदार, जदीद और आबोहवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं, जिनमें 94% आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मजाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की, ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की एक साल तवील प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बुनियादी ढांचे की भारत की गैर मुतवक्के तौसी ने साइंसी इदारों को सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट निजाम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों में ताउन करने का अहम मौका दिया है। मरकज के जिला इंतजाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर आज नए तामीर शुदा नमो हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शियल परवाज का आगाज किया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने मजकूरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ्त हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमो हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद हुई है। बराह रास्त फिजाई राबते से दमन में सियाहत, तिजारत और सरमायाकारी को नुमाया फरोग हासिल होगा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नमो हवाई अड्डे से मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए भी परवाजें शुरू करने का मंसूबा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी अकीदत से सरचार है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा पुरी मजहबी अकीदत के साथ शुरू हो गई है। नामवाफिक मौसमी हालात के बावजूद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ग्रैंड रोड पर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने की आलमी शोहरत याफ्ता रस्म बारिश के बाद दिन भर के लिए मुअत्तल रही। इससे पहले तकरीबात पर उस वक्त असर पड़ा जब मुबैना तौर पर भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: श्री गुंडीचा मंदिर के करीब भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई।

0: सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। कल उनका सामना जापान की नोजोमी ओकुहोरा से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की शिकस्त के बाद सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी रह गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाद मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि राजस्थान में इस महीने की 22 तारीख तक इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो 21 जुलाई तक जुनूब मगरबी बहिरा अरब और अगले 2 दिनों तक जुनूबी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका इलाकों में जाने से गुरेज करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने सामाजिक तहफ्फुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगी मील उबूर किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है, तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है जिसने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान देश और उन्नत कृषि के मामले में सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मांगीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो आपको जो ये लंबा सफर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और 98वां जो स्थापना दिवस मनाया है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत इससे ही करते हैं कि जो ये एक पूरा सफर रहा है, कैसे आप देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की खेती के लिहाज से इस सफर को, क्या सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं इस संस्थान का?
3: धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आज अपने श्रोताओं को, स्पेशली हमारे किसानों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था, आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है। और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है 80, उनके साथ में काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है
2: जी।
3: और काफी हमने प्रगति की है। और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले एक साल का यदि मैं करूं, तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले एक साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है एक साल में, 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 2.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो एक साल में हुआ वो है। और इस सब के पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
2: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत की कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है। और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
3: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज, और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10-11 साल का देखें तो 3000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटीज जो हमने रिलीज किए हैं, उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो, उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं, बढ़ा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मटेरियल, इम्प्रूव्ड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो, चाहे लंपी स्किन डिजीज हो। और मैं, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रो है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे वातावरण हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सेंड्यून स्टेबिलाइजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं, तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलियंट विलेजेज बना के जो काम किया है और उसका अप स्केलिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड, उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है, और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बड़ा है क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है।
2: बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें?
3: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वो है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेस के थ्रू एक्सटेंशन के थ्रू उस पे काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी पूरे देश में 730 लगभग जिलों में, और 15 दिन में हमने लगभग 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ना उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाएं, लेकिन दूसरा तथ्य उसका ये भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें, और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया। देश में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उसमें फिर जुटी, और उसमें सिर्फ ICAR की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम, और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ICAR हमारे इंस्टीट्यूशन सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज को मिला के और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उस पे जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एलनीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वैरायटी, कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप कहां पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनीनो की बात करूं तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में डिस्कशन करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
2: क्योंकि आपने एलनीनो की चर्चा की उसी से मेरे मन में सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे, हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दूध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा। तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें हों, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि

0: क्लाइमेट चेंज के कारण से जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा किए हैं। तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो। अभी मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इश्यू है।
1: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगीलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे, जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
0: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत है। और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वराइटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पर फोकस है, उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारे यहाँ जोत छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेस भी हो, सारी होगी, तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर जाएगा तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा हैं, एक तो फूड और एक हमारी लाइफस्टाइल, वो दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सॉइल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करता है और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे
1: हैं। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

0: कौशल्या कौशल्या
1: आ गए सुषमा के डैडी? आज ऑफिस में बड़ी देर कर दी, 7 बज गए हैं।
0: बहुत बुरी खबर है।
1: कैसे बुरी खबर?
0: हमारा दामाद फ्लाइंग ऑफिसर अजय सिंह।
1: क्या क्या हुआ अजय सिंह को? वो तो परसों ही गया था युद्ध के मोर्चे पर। परसों रात सुषमा ने फोन करके मुझे बताया था
0: वो कश्मीर के मोर्चे पर शहीद हो गया।
1: क्या?

0: दीपक हुआ, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरी बेटी भारी जवानी में विधवा हो गई, उसके विवाह को अभी 4 महीने भी नहीं हुए। उसकी सास पार्वती तो पहले ही विधवा थी। सुषमा के डैडी, बताओ तो मेरे बहादुर दामाद की कैसे अकाल मृत्यु हुई।
1: क्या बताऊं, क्या बताऊं कौशल्या। अरे हाँ, याद आया, किसी ने बताया था कि आज शाम 7:15 बजे रेडियो से श्रद्धांजलि का विशेष कार्यक्रम प्रसारित होगा। अरे 7:15 तो बज गए, हो सकते, चलो पहले वो सुनते हैं।
2: ये आकाशवाणी है, अब प्रस्तुत है देश के लिए शहीद होने वाले वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि का विशेष कार्यक्रम।
3: पड़ोसी दुश्मन ने फिर हमारे देश पर छल से आक्रमण कर दिया है। इधर उसकी सरकार ने मित्रता का नाटक रचा था और उधर उसकी फौज ने कबायलियों के भेस में चोरे छिपे कश्मीर के नियंत्रण रेखा को पार करके करगिल की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों पर अपने बंकर बना लिए थे। दुश्मन के उन बंकरों को नष्ट करने में हमारी वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस हवाई कार्यवाही में अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिन देशभक्त वायु सैनिकों ने अपने विलक्षण शौर्य एवं साहस बल का परिचय दिया है, उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं फ्लाइंग ऑफिसर अजय सिंह। उन्होंने कल शाम लगातार गिरती हुई घनघोर बर्फ में 3 बार उड़ाने भरकर दुश्मन के पहाड़ी बंकरों को नष्ट कर दिया था। 3री उड़ान से जब वो लौट रहे थे तो दुश्मन की तोपों ने उनके हवाई जहाज को निशाना बनाया। हवाई जहाज टूटकर एक ऊंची पहाड़ी की ढलान पर गिरा और अपने पायलट समेत बर्फ की कई परतों के नीचे दब गया। वीर फ्लाइंग ऑफिसर अजय सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय वायुसेना के इतिहास में शौर्य एवं बलिदान का एक नया अध्याय जोड़ा है। अपने पीछे वो विधवा श्रीमती पार्वती देवी, नवविवाहिता पत्नी सुषमा और छोटे भाई विक्रम को छोड़ गए हैं। अमर शहीद फ्लाइंग ऑफिसर अजय सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए दिल्ली के नेताओं, सैनिक अधिकारियों और गण्यमान्य नागरिकों का उनके घर पर तांता लग गया है। फ्लाइंग ऑफिसर अजय सिंह का शव अभी दिल्ली नहीं पहुंचा है, इसलिए सब उनके चित्र पर ही श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। जब उनकी माता श्रीमती पार्वती देवी से बात हुई तो उन्होंने एक सच्ची क्षत्राणी की तरह कहा,
4: मुझे अपने बहादुर बेटे अजय सिंह पर अभिमान है, गर्व है। उसने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की है। मेरा बेटा मरा नहीं, देश के लिए बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ है। इस तरह उसने अपने क्षत्रिय राणा वंश की गौरवशाली परंपरा को निभाया है। आज मैं प्रण करती हूं कि वंश की उसी परंपरा को मेरा ये छोटा बेटा विक्रम सिंह भी आगे बढ़ाएगा। बड़ा होकर ये भी सेना में भर्ती होगा और देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करेगा। वायु सेना के अधिकारियों से मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे शहीद बेटे का शव कश्मीर से लाकर मुझे दे दे, ताकि ताकि मैं
0: जितना बहादुर बेटा उतनी ही बहादुर उसकी माँ। सुषमा के डैडी क्या सोच रहे हैं आप?
1: अपनी भूल के बारे में सोच रहा हूँ। इस रेडियो प्रोग्राम से पता चलता है कि अजय सिंह शूर वीर ही नहीं महान देशभक्त भी था। उसी अजय सिंह से मैंने सुषमा की शादी का विरोध किया।
0: मामूली विरोध नहीं, जब सेठ लाभचंद के लड़के

0: श्रीचंद से शादी करने के आपके हुक्म को नकार कर सुषमा घर से भाग गई थी, तो आपने अजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में अपहरण का मुकदमा दायर कर दिया था।
1: वो सब अपनी अफसरी के घमंड के कारण मैंने किया था। आज आज अपनी उस भूल को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन लेकिन अब मुझे अपनी वो भविष्यवाणी भी याद आ रही है।
0: कौन सी भविष्यवाणी?
1: जब कोर्ट में सुषमा की गवाही के कारण मैं वो मुकदमा हार गया था, तो मैंने सुषमा से गुस्से में कहा था,
0: क्या
1: देखो सुषमा, पायलट की जिंदगी, विशेषकर वायु सेना के पायलट की जिंदगी बड़ी अनिश्चित होती है। अगर तू जल्दी विधवा होना चाहती है तो कर ले शादी इस फ्लाइंग ऑफिसर से।
0: आपने ऐसा कहा था सुषमा से?
1: आज मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी वो भविष्यवाणी सच निकली। शादी के 4 महीने बाद ही अजय सिंह हवाई दुर्घटना में मारा गया और मेरी बेटी विधवा हो गई। तब अगर सुषमा मेरी बात मान लेती तो
0: आज मैं कैसे आपकी बात मान लेती? जानते हैं, अजय सिंह के पिता तो उसे दिल्ली में अपने जैसा ही क्लर्क बनाना चाहते थे, लेकिन सुषमा ने ही उसे सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, एक तरह से विवश किया था।
1: अरे, मुझे इस बात का पता ही नहीं।
0: कैसे पता होता? आपका ध्यान तो हमेशा अपने दोनों बेटों के कैरियर की ओर लगा रहा, बेटी की तो आप हमेशा उपेक्षा करते रहे, और वो बेटे अपना अपना अलग घर बसाकर माँ बाप को भूल गए। खैर, छोड़िए इस बात को। इस समय तो मैं अपने दामाद की अकाल मृत्यु से बहुत संतप्त हूं। जानते हैं, सुषमा बचपन से ही अपने देशभक्त नाना से बहुत प्रभावित थी।
1: कौशल्या, तुम्हारे पिता तो स्वतंत्रता सेनानी थे, कई बार जेल भी गए थे।
0: सुषमा ने मेरे पिता की जीवनी मुझसे सुन सुनकर कंठस्थ कर ली थी।
1: मगर सुषमा ने अजय सिंह को वायु सेना में ही क्यों भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया?
0: अब मैं आपको क्या बताऊं, सुषमा और अजय एक ही पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे ना, बस दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये बात मैंने आपसे छुपा कर रखी थी। एक दिन दोपहर को मैं अपने कमरे में लेटी थी, तभी जोर जोर से बोलती हुई सुषमा की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं उठकर ड्राइंग रूम की ओर गई तो देखा कि सुषमा अजय सिंह को डांट रही थी।
2: तुम्हें शर्म आनी चाहिए अजय, महाराणा प्रताप जैसे वीर के वंशज होकर सरकारी दफ्तर में साधारण नौकरी करना चाहते हो?
3: देखो, मैं क्या करूं सुषमा, मेरे बाबूजी मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं टाइप और शॉर्ट हैंड सीखूं, सेक्रेटेरिएट की विभिन्न परीक्षाएं पास करूं और
2: नहीं, तुम्हें अपने पुरखे महाराणा प्रताप की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सेना में भर्ती होकर देश का रक्षक बनना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आज जब देश स्वतंत्र है तो पड़ोसी शत्रु से उसकी रक्षा ही असली देशभक्ति है। क्या सोच रहे हो अजय? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे सच्चे दिल से चाहते हो?
3: हाँ।
2: शादी मुझसे ही करना चाहते हो?
3: हाँ, महाराणा प्रताप के वंशज का यही प्रण है।
2: तो फिर मेरी भी ये शर्त है, मैं तुमसे तब शादी करूंगी जब तुम बाकायदा मिलिट्री ऑफिसर बनकर आओगे।
3: अच्छा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। मुझे वायुसेना पसंद है, मैं वचन देता हूँ फ्लाइंग ऑफिसर बनकर ही शादी करूंगा।
2: अजय, ओ अजय, तुम्हारा ये निर्णय सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जानते हो, स्वर्गलोक में मेरे नाना जी भी बहुत खुश हो रहे होंगे और हम दोनों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। आओ, नाना जी के स्वर्गिक आशीर्वाद से इस मंगल क्षण में हम दोनों मिलकर एक प्रण करें।
3: हाँ, बोलो।
2: हम दोनों देश के लिए एक साथ जिएंगे भी और एक साथ मरेंगे भी।
3: एक साथ जिएंगे भी और एक साथ मरेंगे भी। अच्छा, अब मैं क्या जान सकता हूं कि महान स्वतंत्रता सेनानी नाना जी की ये नातिन खुद कैसे देश की रक्षा या सेवा करेगी?
2: देखो अजय, मेरी डैडी ने तो मुझे कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही जल्द से जल्द उनके पसंद के किसी घर और वर को सौंपने का फैसला किया हुआ है, और उनका ख्याल है कि सामान्य लड़कियों की अपेक्षा मैं कुछ अधिक सुंदर हूँ।
3: हाँ वो तो है।
2: प्लीज मजाक मत करो। और इसलिए उन्हें विश्वास है कि वो किसी मालदार बड़े घराने की बहू मुझे बना सकेंगे।
3: ओहो फिर तो मेरे लिए कोई चांस नहीं है।
2: ओफो अजय प्लीज। देखो अजय मैं जानती हूँ कि मुझ में कुछ ऐसी कमियां हैं कि मैं सैनिक बनकर युद्ध के मोर्चे पर तो नहीं जा सकती, पर मैंने भी मन ही मन एक संकल्प लिया हुआ है।
3: वो क्या?
2: मैं नर्स बनूंगी।
3: सच?
2: हाँ, जब तुम फ्लाइंग ऑफिसर बनकर आओगे तो तुम मुझे भी किसी निकट के मिलिट्री हॉस्पिटल में जवानों की सेवा करते हुए पाओगे।
3: ओ सुषमा।
4: इस तरह हमारी सुषमा ने अजय को तो बनाया देश का रक्षक फ्लाइंग ऑफिसर और खुद बनी देश की सेविका एक नर्स।
1: कौशल्या, आज मुझे पहली बार पता चला है कि मेरी बेटी ही सच्ची देशभक्त है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। जानती हो अजय की माँ को भी पता है कि अजय सुषमा की प्रेरणा से ही फ्लाइंग ऑफिसर बना था।
4: पर सुषमा की शादी के बाद आप तो कभी उनके घर गए नहीं, क्या आज आप अजय की माँ पार्वती से मिले थे?
1: हाँ, अजय सिंह की शहीद होने की खबर मिलते ही मैं सीधा ऑफिस से सुषमा के ससुराल पहुंचा। घर में सिर्फ अजय के मामा मामी ही थे। मुझे देखते ही उसकी सास पार्वती चिल्लाई।
5: शिव प्रसाद, अब मेरे बेटे के खिलाफ कौन सा मुकदमा दायर करके आए हो? पहले तो तुमने मेरे अजय के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण का झूठा मुकदमा दायर किया था जिसे तुम हार भी गए थे। अरे अब तो मेरे बेटे का ही अपहरण हो गया है। अपहरण किया है यमराज के दूतों ने। अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, तुम्हें तो खुश होना ही चाहिए। सरकार अजय की विधवा को सुषमा को 10 लाख रुपए देगी। आए आए, भगवान की कैसी लीला है। जिस सुषमा ने अजय को फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए मजबूर किया था, इस तरह उसे मौत के मुंह में धकेला था, वही माला माल हो जाएगी। अरे जाओ जाओ, अपनी बेटी के पास जाओ, श्रीनगर जाओ, खुशियां मनाओ तुम। ना मेरा बेटा सुषमा से शादी करता नहीं।
1: कौशल्या, सुषमा की सास की ये फटकार सुनकर मैं सकते में आ गया। बिना कुछ बोले मैं उल्टे पांव लौटा। मैं समझ गया था कि बेटी की मौत के सदमे से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है।
4: मैं हैरान हूँ। कुछ देर पहले मैंने रेडियो प्रोग्राम में सुषमा की सास का जो स्वर सुना था वो बिल्कुल बदल गया। हे भगवान, मेरी बेटी ने जिन लोगों की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा था उनमें से एक तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर परलोक सिधर गया, और उसकी ये सास उसी को कोस रही है। मेरी अभागिन बेटी तो बिल्कुल अकेली पड़ गई। आपने सुषमा से फोन पर बात की या नहीं?
1: अजय की शहादत का समाचार मिलते ही मैंने सबसे पहले श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में फोन किया। वहां से पता चला कि सुषमा कल शाम को ही एयरफोर्स के अफसरों के साथ घटनास्थल पर चली गई थी।
4: वहां श्रीनगर में सुषमा के घर पर भी तो फोन है। हो सकता है कि अब तक सुषमा घटनास्थल से लौट आई हो। उसे फोन कीजिए ना।
1: हाँ, अभी एसटीडी में लाता हूँ।
6: बेटी, मैं दिल्ली से तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। अजय की शहादत की खबर सुनकर मैं और तुम्हारी मम्मी।
2: वो खबर गलत है।
6: क्या कहा? अजय की शहादत की खबर गलत है? लेकिन बेटी, जिस खबर को रेडियो और टेलीविजन ने प्रसारित किया है वो गलत कैसे हो सकती है?
2: हाँ, वो खबर गलत है। अगर गलत नहीं तो मैं साबित करूंगी कि वो खबर गलत है। मेरा अजय जिंदा है, उसे जिंदा होना ही चाहिए।
6: अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी वो जीवित नहीं है। मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं।
2: आप लोग मेरे लिए परेशान मत होइए। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ अजय से शादी की थी ना, आप मुझे भूल जाइए।
6: ओफो, इस हालत में मैं

0: अपनी दुखिया बेटी को कैसे भूल सकता हूँ? मैं कल तुम्हारे पास श्रीनगर आ रहा हूँ।
1: नहीं नहीं, आप अभी श्रीनगर मत आइएगा। मैं अपनी ट्रांसफर करगिल के अस्पताल में करा रही हूँ। वहाँ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर पीएन कॉल बड़े ही नेक इंसान है, मैं उनसे मिलाई हूँ। भगवान ने चाहा तो मैं परसों करगिल के अस्पताल में नर्स की अपनी ड्यूटी संभालूंगी और फिर वहां अपने अजय को ढूंढना शुरू कर दूंगी।
0: सुषमा, सुषमा मेरी बात। ये क्या, सुषमा ने फोन ही बंद कर दिया। कौशल्या, सुषमा तो श्रीनगर छोड़कर करगिल जा रही है।

0: देखो सिस्टर, करगिल के इस अस्पताल में तुम्हें नर्स की ड्यूटी ज्वाइन किए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, क्या तुम दूसरी बार छुट्टी मांग रही हो?
1: डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे छुट्टी अपने पति को ढूंढने के
0: हाँ,
1: लिए।
0: हाँ, पहले भी तुमने यही कहकर छुट्टी ली थी। अच्छा बैठो
1: जी।
0: मैं तुम्हारे केस को एक बार फिर से समझना चाहता हूँ। उस दिन तुमने बताया था कि तुम अपने पति अजय सिंह के पीछे पीछे दिल्ली से श्रीनगर और अब यहाँ करगिल तक आ पहुंची हो। तुम्हारा नाम?
1: जी सुषमा।
0: हाँ याद आया, याद आया। उस दिन तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारे पति फ्लाइंग ऑफिसर अजय सिंह ने यहाँ करगिल के युद्ध में भाग लिया था। उसने पहाड़ियों पर बने दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए 3 बार उड़ाने भी भरी थी।
1: जी, और तीसरी बार जब मेरे पति दुश्मन के बंकरों पर बम गिराकर लौट रहे थे तो दुश्मन की हवाई तोप का एक गोला उनके फाइटर प्लेन को लगा और वो ब्लास्ट होकर पहाड़ियों की ढलान पर गिर गया।
0: आई सी। मुझे याद है उस दिन अचानक मौसम बहुत खराब हो गया था, जोरदार बारिश के साथ काफी बर्फ भी गिरी थी।
1: जी,
0: जाहिर है कि बर्फ की उन मोटी परतों के नीचे वो टूटा हुआ फाइटर प्लेन दब गया होगा और उसके साथ ही उसका पायलट भी।
1: नहीं डॉक्टर कॉल, मेरे पति अजय सिंह बर्फ के नीचे नहीं दबे थे।
0: है? ये तुम कैसे कह सकती हो?
1: सर, बाद में जब बर्फ हटाई गई तो प्लेन का मलबा तो मिल गया था, लेकिन वहां मेरे पति का शव नहीं मिला था।
0: भाई, मेरा ज्यादा समय तो यहाँ करगिल के अस्पताल के अंदर ही बीतता है, बाहर क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं चलता। खैर, ये घटना 10-11 दिन पहले की है। हाँ, याद आया, उस दिन शहीद होने वाले जवानों और अफसरों की जो सूची जारी हुई थी उसमें फ्लाइंग ऑफिसर राजे सिंह का भी नाम था। और अब तुम कह रही हो कि बर्फ हटने से फाइटर प्लेन का मलबा तो मिल गया लेकिन उसमें अजय सिंह का शव नहीं मिला। वेरी स्ट्रेंज। बर्फ कब हटाई गई?
1: डॉक्टर साहब, बर्फ तो कई दिनों से हटाई जा रही थी, उसकी परतें बहुत मोटी थी ना, पर फाइटर प्लेन का मलबा कल मिला था।
0: तो कल इसीलिए तुमने छुट्टी ली थी?
1: जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर फाइटर प्लेन के मलबे में मेरे पति का शव नहीं है तो इसका मतलब साफ है।
0: वो क्या?
1: कि जब फाइटर प्लेन टूटकर नीचे गिर रहा था तो मेरे पति उसमें से कूदकर पैराशूट की सहायता से सही सलामत कहीं उतर गए होंगे।
0: मैं भी।
1: डॉक्टर कॉल, मैं बताऊं, मेरे पति बड़े ही कुशल और अनुभवी पायलट थे।
0: लेकिन बेटी, नहीं नहीं सिस्टर।
1: डॉक्टर साहब, आप मुझे बेटी ही कहिए ना, यहाँ करगिल में मुझे आपसे पिता सा प्यार मिला है।
0: बेटी, एक मिनट। हेलो, डॉक्टर पीएन कॉल है।
2: देखिए डॉक्टर साहब, मैं सुषमा का डैडी बोल रहा हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ?
0: हाँ हाँ, जरूर। सुषमा
1: जी,
0: दिल्ली से तुम्हारे डैडी का टेलीफोन है।
1: जी हेलो, मैं सुषमा बोल रही हूँ।
2: बेटी, अजय सिंह का कुछ पता चला?
1: अभी नहीं डैडी।
2: उस हवाई दुर्घटना को आज 11 दिन हो गए बेटी, इसका मतलब है कि अजय सिंह जीवित नहीं है।
1: डैडी, मेरा मन कहता है कि वो जीवित हैं।
2: बेटी, मन की बजाय अपनी बुद्धि से काम लो। खैर, इस समय मैंने एक विशेष कारण से तुम्हें फोन किया है। अजय सिंह की विधवा के रूप में सरकार तुम्हें सोमवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दे रही है। आज शुक्रवार है, फौरन छुट्टी लेकर हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचो। और हाँ, वो सेठ लाभचंद का वो बेटा श्रीचंद भी तुझसे बात।
1: डैडी,

0: ये कहकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे सच्चे पतिव्रत धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं विधवा नहीं हूँ, मेरे पति अजय सिंह जीवित हैं, वो इसलिए जीवित हैं कि मैंने उससे सच्चे हृदय से प्यार किया है और आज भी करती हूँ। प्यार को मैं परमात्मा की भक्ति मानती हूँ और भक्ति में मुर्दे को भी जिंदा करने की शक्ति होती है। और डैडी प्लीज, अब फिर कभी मुझे फोन मत कीजिएगा, समझ लीजिए आपके लिए आपकी सुषमा मर गई।
1: हे प्रभु, मेरे सामने बैठी हुई ये लड़की तो कोई देवी है, अलौकिक प्रेम की साक्षात मूर्ति।
0: I'm sorry डॉक्टर साहब, मुझे अपने स्वार्थी और लोभी पिता पर गुस्सा आ गया था।
1: I can understand।
0: वो मुझे
1: हाँ हाँ मैं सब समझ गया बेटी, मैं सब समझ गया। तुम धन्य हो, ये लो, मैंने तुम्हारी कल की छुट्टी सैंक्शन की और साथ ही आज की आधी छुट्टी भी। जाओ जाओ बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हें अपने पति की खोज में सफलता प्रदान करे।
0: थैंक्स डॉक्टर साहब।
1: अरे जाते जाते इतना तो बता दो कि तुम अपने पति को कहाँ ढूंढने जा रही हो।
0: जी बताती हूँ, वो दरअसल अब तक तो मैं उन्हें उन पहाड़ियों में ही ढूंढ रही थी। आज सोचा है कि उन्हें यहाँ करगिल नगर और आसपास की बस्तियों में ढूंढना चाहिए।
1: करगिल नगर और बस्तियों में क्यों?
0: दरअसल मुझे कल रात ख्याल आया कि अपने फाइटर प्लेन से उतरते हुए अजय ने जरूर अपनी पैराशूट खोली होगी। अगर वो पैराशूट से सही सलामत नीचे पहुंच गए होते तो फौरन यहाँ करगिल के बेस कैंप में पहुंच गए होते, लेकिन वो नहीं आए। सो लगता है कि उन्हें पैराशूट ने धोखा दिया, वो नहीं खुली और वो नीचे गिर गए। अब अगर नीचे गिरकर उन्हें कुछ हो गया होता तो उनकी बॉडी किसी न किसी को जरूर मिल गई होती।
1: That's a point।
0: क्योंकि बॉडी भी कहीं नहीं मिली है, इसलिए मेरा अनुमान है, अनुमान ही नहीं बल्कि विश्वास है, वो जरूर घायल होकर बेहोश हो गए होंगे। और इस नगर या आसपास की किसी बस्ती में कोई व्यक्ति दयावश या किसी और कारणवश उन्हें उठाकर ले गया होगा।
1: सुषमा, तुम्हारी बात में दम जान पड़ता है। जाओ बेटी जाओ और अपनी खोज में सफलता प्राप्त करो। और हाँ, तुम्हारे साथ
0: मेरे साथ अस्पताल का चौकीदार खुदा बख्श और उसका एक दोस्त जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, चौकीदार की आज छुट्टी है।
1: हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
0: थैंक्स डॉक्टर साहब।

0: आपके आशीर्वाद से मैं सफल हो गई। मेरा अजय मुझे मिल गया है।
1: क्या? सच? कहाँ है वो? कहाँ है?
0: वो देखिए, खुदा बख्श और उसका मित्र उन्हें उठाकर ला रहे हैं। वो भी होश है। खुदा बख्श, हाँ।
2: सलाम डॉक्टर साहब।
0: इन्हें यहाँ डॉक्टर साहब के केबिन में ले आओ।
1: इधर ले। इस टेबल पर लेटा दो।
0: खुदा बख्श, जाओ तुम लोग, अब जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सलाम साहब।
0: डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें जल्दी से एग्जामिन कीजिए। इनके दिल की धड़कन, सांस और नब्ज सब चल रही है, लेकिन ये होश में नहीं है।
1: हाँ हाँ, देखता हूँ देखता हूँ। पर बेटी, अजय सिंह तुम्हें मिले कहाँ?
0: सामने वाली बस्ती की एक पागल बुढ़िया के घर से। मेरा अनुमान ठीक निकला। उस बुढ़िया का बेटा इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। सदमे से वो बुढ़िया पागल हो गई। इन्हें वो घायल अवस्था में अपने घर उठाकर ले गई थी और इन्हीं को अपना बेटा समझने लगी थी।
1: लगता है उस बुढ़िया ने अपनी घरेलू दवाइयों से इनके घावों और चोटों का बहुत अच्छा उपचार किया है,
0: लेकिन वो बेचारी इन्हें होश में ना ला सके। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए।
1: लेट मी एग्जामिन बेटी, एक मिनट। सर में गहरी चोट लगने से ये बेहोश हुए हैं। सुषमा, हो सकता है इन्हें लंबे इलाज की जरूरत पड़े।
0: अजय, मैं तुम्हारे पास हूँ। अजय देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें पाकर खुशी से पागल हो जा रही हूँ।
1: सुषमा बेटी, ये तो चमत्कार हो गया।
0: ये देखिए, ये मेरा नाम ले रहे डॉक्टर साहब। अजय, I'm here। अजय, I love you। देखो,
1: my God, it's a miracle। बेटी, बेटी सुषमा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, फिर भी आज मैं तुम्हें और देश के इस वीर जवान को प्रणाम करता हूँ। सुषमा, आज तुमने सत्यवान सावित्री की कथा को सच साबित कर दिया। तुम सचमुच इस युग की एक और सावित्री हो। हाँ बेटी।
0: अजय देखो, अजय मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। अजय,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी नाटक एक और सावित्री। लेखक थे चिरंजीत, निर्देशक सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतकर्ता शोभा कांत राय। नाटक में प्रतिभाग किया था नीरज शर्मा, श्याम अरोड़ा, मंजू मैनी, सुरेंद्र सेठी, अर्चना, प्रतिभा शर्मा और बीना हुरा ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा, ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर। वार्ताकार हैं आशीष भारती। गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान, हमारे किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत। प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा खुश रहिए स्वस्थ रहिए। लोकधारा कार्यक्रम में 1:45 पर वीरेंद्र सिंह विस्ट के स्वर में जौनसारी लोकगीत सुनवाई जाएंगे। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 5:15 पर, जिसमें क्रम होगा ये शाम गजलों के नाम। सुगम संगीत में 7:32 पर इफ्तिकार अहमद और साथियों के स्वर में नात सुनवाई जाएंगे। घर संसार कार्यक्रम में 1:15 पर क्रम होगा थारी पसंद, और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल तथा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:15 पर विदुषी परवीन सुल्ताना का राग शुद्ध सारंग में गायन प्रसारित किया जाएगा। जागरूक श्रोता कार्यक्रम का समय रहेगा 10:30 और कल इस कार्यक्रम में श्रोता फोन कॉल्स पर अपने विचार साझा कर पाएंगे जल संचयन विषय पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं और अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत और आपको शामिल भी करते हैं कार्यक्रम में। अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं, कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें मैसेज कीजिएगा जिसका नंबर है 9457078288। और अब साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है काला बाजार।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म काला बाजार से। गीत सुनने की ख्वाहिशमंद थी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा, मोहल्ला अफगाना शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत। ये फरमाइश की थी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। जलालाबाद वेस्ट से ये फरमाइश की है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। धनौली तेलीवाला से सुनना चाहते थे निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से ये फरमाइश आई है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार की। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें फरमाइश की है इन श्रोताओं ने गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। ये फरमाइश की है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। ये फरमाइश की है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब। ये एक और श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं योगनगर बुढ़ाला पंजाब से नरेंद्र मेहता, सुनीता मेहता, हनी, सिमरन मेहता, प्रेम, लता मेहता। झरझर हरियाणा से अनुरोध किया है बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम हाशमी। ये फरमाइश की है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म स्वीकार किया मैंने फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में ये गीत फिल्म अनाड़ी से। इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह से है। मौला दरबारा शाह नजीबाबाद से गौरी मौली और उनके ताऊजी आलोक अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब, कहकशा और पूरा परिवार। ये फरमाइश की है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली बरेली से जीशान वारसी। ये एक और फरमाइश हमें मिली है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर की। वर्ली मुंबई से फरमाइश की है नवाब खान इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और आजिम खान ने। मास्टर ब्रजेश कुमार ने फरमाइश की है मोहम्मदपुर राजौरी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर से फरमाइश की है मोहम्मद कैफ सैफ, ओवैस उबेद, मोंटी भाई, डॉक्टर विजय और कासिम पेंटर। ये फरमाइश की है गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज। और ये एक और फरमाइश हमारे साथी कर रहे हैं, ये है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और अनम यशफ अब्बासी। ये फरमाइश की है नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट ने। एकता कॉलोनी रोहतक से फरमाइश की है सीताराम कांगड़ा, एक बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनाड़ी से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म आम्रपाली में लता मंगेशकर को, और इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है। नमस्कार,

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर

0: जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और फेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडिचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Renuka. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026. Bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
3: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi today held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the Father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicenter of the festival is the holy city of Puri in Odisha, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. In men's cricket, chasing a target of 234 runs set by India, England were 68 for 3 in 15 overs in second one-day international of three-match series at Sophia Gardens, Cardiff, when reports last came in. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yui of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं और अब हमारी इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

और अब हमारी इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।